नमस्कार, हम विविध भारती से बोल रहे हैं। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 20वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 11 सितंबर सन 2026। हम अपने श्रोताओं का स्वागत करते हैं।

0: हम आपको बता दें कि हमारे कार्यक्रम डीटीएच और इंटरनेट स्ट्रीमिंग पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा न्यूज ऑन एआईआर ऐप के माध्यम से आप हमारे कार्यक्रम दुनिया के किसी भी कोने में दिन की किसी भी समय पे सुन सकते हैं। इस समय सुबह के 6 बजने को है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। अठारवां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कल से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। 2 दिन के इस सम्मेलन के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ब्रिक्स में 11 प्रमुख विकासशील देश शामिल हैं। इनमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। इस वर्ष ब्रिक्स सम्मेलन का विषय लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण है। शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फताह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोबो सुबियांतो और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान हिस्सा लेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश, विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस और न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष डिल्मा रूसेफ समेत कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख भी सम्मेलन में शामिल होंगे। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वेइरा कल रात नई दिल्ली पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता होने की संभावना है। श्री मोदी शिखर सम्मेलन से अलग कई अन्य देशों के नेताओं के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें कर सकते हैं। इस सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में आज दोपहर 2 बजे से रात 8:30 बजे तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और आवाजाही नियंत्रित रहेगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार सरदार पटेल मार्ग, 3 मूर्ति मार्ग, 30 जनवरी मार्ग, राजेश पायलट मार्ग, मथुरा रोड, जनपथ, अशोका रोड, 12 खंबा रोड, नीति मार्ग, पंचशील मार्ग और प्रेस एनक्लेव रोड समेत कई

प्रमुख मार्ग प्रभावित रहेंगे। पुलिस ने यात्रियों से अपील की है कि वे अनावश्यक यात्रा से बचें। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे और सामान्य रूप से चलेंगी। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान रविवार तक राष्ट्रपति भवन संग्रहालय और अमृत उद्यान बंद रहेंगे। राष्ट्रपति सचिवालय ने बताया कि शनिवार को होने वाला चेंज ऑफ गार्ड समारोह भी आयोजित नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण से जुड़े अभियानों को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और टिकाऊ बनाए रखने के पक्ष में है। श्री मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून, संवाद और बहुपक्षीय सहयोग पर आधारित होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने फ्रांस के पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए ये बात कही। गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में समाज सेवी प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की। दोनों के बीच सामाजिक विकास, सिंचाई, सहकारिता, प्राकृतिक खेती, मोटे अनाज और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा हुई। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने क्षेत्रीय स्वास्थ्य साझेदारी को मजबूत करने और बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था बनाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। श्री नड्डा ने तिमोर लेस्ते में विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय समिति के 79वें सत्र को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने और लोगों तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने पर लगातार काम कर रहा है। सत्र में भारत को संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तीसरे चरण के संचालन दिशा निर्देश जारी किए हैं। श्री चौहान ने कहा कि इस कार्यक्रम से ग्रामीण नागरिकों, किसानों और संपत्ति मालिकों के लिए जीवन आसान होगा। उन्होंने कहा कि भूमि से जुड़े दस्तावेज सही और आसानी से उपलब्ध होना आवश्यक है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने यूजीसी नेट जून 2026 की अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र की दोबारा हुई परीक्षाओं की प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी कर दी है। परीक्षार्थी 13 सितंबर तक यूजीसी नेट की आधिकारिक वेबसाइट पर उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। नई दिल्ली नगर निगम ने अनधिकृत निर्माण के मामले में लापरवाही बरतने पर भवन विभाग के 3 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबित अधिकारियों में 1 सहायक अभियंता और 2 कनिष्ठ अभियंता शामिल हैं। भारत एशिया कप महिला क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गया है। सेमीफाइनल में कल भारत ने बांग्लादेश को 40 रन से हराया। शेफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दूसरे सेमीफाइनल में आज पाकिस्तान का सामना श्रीलंका से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

郡等。हम जितने चाहें उतने लोगों से प्रेम कर सकते हैं। इसका ये अर्थ नहीं है कि एक दिन हम प्रेम के मामले में दिवालिया हो जाएंगे। जहां तक प्रेम का सवाल है, हम कभी दिवालिया नहीं हो सकते। ये विचार ओशो का है। ये था आज का चिंतन और अब भक्ति संगीत।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए अब आपको देते हैं जानकारी आज दिन भर प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। आप सुन रहे हैं झरोखा। इस झरोखा के तुरंत बाद आज आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस का भाग 308, 6:35 पर।

संगीत सरिता इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना का भाग 11। कलाकार गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे, प्रस्तुति अनुश्री पाठक। कार्यक्रम का समय होगा सुबह और शाम 6:45। भूले बिसरे गीत ये कार्यक्रम होगा सुबह 7:07:30 पर। युगल गीतों का कार्यक्रम हम हैराही प्यार के। सुबह 8:00 सुनिए समाचार प्रभात और 8:15 पर वंदे मातरम एक जय घोष। लेखक मिलिंद सबनीस, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज आप सुनेंगे भाग 45 और यही कार्यक्रम दिन में 2:00 पुनः सुना जा सकता है। चित्रलोक में आप सुनेंगे नए गीत सुबह 8:30 पर और 9:30 पर सुनिए आज के फनकार। केंद्रित होगा अभिनेता आयुष्मान खुराना पर। आलेख

और स्वर नेहा शर्मा का, प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। पुनः प्रसारण इस कार्यक्रम का होगा रात्रि 9:30 पर। रंग तरंग ये कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन में 11 बजे और दिन में 12 बजे हिंदी में समाचार। 12:05 पर यादों की महफिल कार्यक्रम। 1 ये कार्यक्रम आप सुनेंगे विविध भारती से दिन में 1 बजे और श्रोता हमसे फेसबुक कमेंट्स द्वारा इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। दोपहर समाचार का समय होगा 2:15। 2:30 यानी कि 2:30 पर सुनिए सदाबहार नगमे। दिन में 3 बजे सुनिए कार्यक्रम हेलो सहेली, संवादक दीपा माहेश्वरी, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। दोपहर बाद 4 बजे सुनिए पिटारा गीतों भरी कहानी, कहानी आवाज ही पहचान है, लेखन और वाचन अरुण शेखर का, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। तराने नए पुराने ये कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 5:30 से लेकर 6:30 तक और इसी बीच 6 बजे सुनिए हिंदी में समाचार। झरोखा सुनेंगे आप शाम 6:30 पर, जिसमें आपको शाम में होने वाले कार्यक्रम और कल दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दी जाएगी। संध्या रंजन ये कार्यक्रम होगा शाम 6:35 पर और जयमाला कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 7 बजे। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत सुनिए अनमोल यादें, फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर से जयंत पात्रिकर की बातचीत का भाग 10, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। हवा महल में सुनिए नाटिका शकुन का शीनू, मूल कन्नड़ लेखक बी आर गुदगुदी, हिंदी रूपांतर एस ए हुनगुंद, निर्देशक पुरुषोत्तम दार्भेकर। रात्रि का चित्रलोक कार्यक्रम होगा 8:15 पर, समाचार संध्या रात्रि 8:45 पर। आपके लिए ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 9 बजे। इसी के बाद आप सुनेंगे छाया गीत कार्यक्रम रात्रि 10 बजे, आलेख और स्वर नेहा शर्मा का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। रात्रि 10:30 पर सुनिए ढलती जाए रात और रात 11 बजे रंग तरंग। ये थी जानकारी आज दिन भर प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की और ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए अब आपको सुनवाते हैं श्री रामचरितमानस का भाग 308। आज आप सुनेंगे लंका कांड।

मैं जानता हूं कि तुम परम चतुर हो। शत्रु से ऐसी बात करना जिससे हमारा उद्देश्य पूरा और उसका कल्याण हो। श्री राम का ये वचन हृदय में धारण कर अंगद लंका में प्रवेश करते हैं। राह में रावण के एक पुत्र से भेंट होती है जो इनके समान ही अतुलनीय बलशाली है। बातों बातों में दोनों में झगड़ा हो जाता है। रावण पुत्र ने क्रोध में इन्हें मारने को जो लात उठाई तो अंगद ने वही लात पकड़ उसे मार गिराया। पूरी लंका में भय और आतंक छा गया। बालीपुत्र अंगद तब रावण की सभा में उपस्थित होते हैं। परिचय पूछे जाने पर अंगद कहते हैं, मैं श्री राम का दूत हूं। मेरे पिता बाली तुम्हारे मित्र थे, अतः मैं तुम्हारे कल्याण की बात करने आया हूं। पुलस्त ऋषि के पौत्र होने के नाते तुम उत्तम कुल के वंशज हो। सभी लोकपालों तथा राजाओं को तुमने जीता है, लेकिन मदांधतावश तुम जगत जननी सी

पिता को हर लाए हो। अब अपने करनी के पश्चाताप स्वरूप मेरी सलाह मानकर श्री राम की शरण जाकर उनसे क्षमा प्रार्थना करो।

0: श्रोताओं नमस्कार। इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे। इनसे बातचीत की जयंत पात्रीकर ने। आइए अब सुनते हैं आज इस श्रृंखला की 11वीं कड़ी।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है श्रृंखला की इस कड़ी में। डॉक्टर शकुंतला भरणे हमारे साथ हैं और किराना घराने की गायकी पर चर्चा हो रही है इन कड़ियों में। शकुंतला जी, पिछली दो कड़ियों में हमने आलाप के बारे में बात की, आज किराने घराने की जो गायकी है उसमें जो तान की विशेषता होती है, इसकी तान कुछ अलग ही होती है। हाँ। क्या अलग होती है, तो कैसे अलग होती है, जरा बताइए।
2: बहुत ही प्यारा सा सवाल आपने पूछा, क्योंकि तान को ज्यादातर लोग इतना महत्व नहीं देते हैं, लेकिन तान जहाँ ली जाती है
1: जी,
2: उस पे तो हम हमारा भाव दिखा नहीं सकते, लेकिन

0: हम देखते हैं कि तान में हर एक स्वर पक्का उसकी जगह पर लगना है,
1: अच्छा
0: झटकेदार नहीं तान। तो मींड और स्वर के संबंध में जो इसके साथ सहज रूप से
1: जी।
0: जो आगे जाती है, और ये तान बहुत मधुरता से आती है। तानों का उद्देश्य केवल कौशल दिखाना इतना ही नहीं है, तो राग का स्वरूप जारी रखना,
1: हाँ
0: राग का भाव को बनाए
1: जी
0: रखना,
1: जी जी जी
0: और प्रत्येक तान राग के एक व्याकरण के अनुरूप होने चाहिए।
1: बराबर
0: इसका कटाक्ष यहाँ पे हम रखते हैं। किराना घराने की और एक तान के बारे में मैं बोलूंगी कि केवल गति ही नहीं बल्कि भाव ये तान में होता है, भाव भी होता है।
1: जी जी
0: ताने का राग और भावाभिव्यक्ति, इसके लिए ही ये गायकी ज्यादा प्रभावशाली बनी है।
1: जी
0: अभी देखो सरगम तानों का एक सुंदर प्रयोग
1: हाँ जी
0: हमारे उस्ताद अब्दुल करीम खान साहब ने किया है।
1: जी जी
0: विशेष रूप को विकसित किया है उन्होंने, और तानों में भी प्रत्येक स्वर स्पष्टता और
1: हाँ
0: संतुलित रूप से प्रस्तुत किया जाता है।
1: जी
0: उसके बाद सरगम डालने की प्रथा हमारी विदुषी प्रभा अत्रे ने बहुत ही अच्छी तरह से किया है। यहाँ तानों की गति नियंत्रित रहती है, और अनावश्यक तेजी के बजाय स्पष्टता, मधुरता, संतुलन, इन
1: का
0: सब बातों का अधिक महत्व यहाँ रहता है।
1: जी।
0: श्रोता के लिए सहज श्रवणीय गाना अगर बनना है तो स्पष्ट उच्चारण और स्वच्छ प्रयोग के साथ श्रोता तानों के प्रत्येक स्वर को
1: जी
0: एकदम अच्छी तरह से सुन सकेंगे,
1: उसका आनंद
0: समझ
1: ले सकेंगे।
0: सकेंगे। क्योंकि क्या होता है, कोई कोई श्रोता जो रहता है ना,
1: हाँ
0: वो गायक से भी ज्यादा उसका ज्ञान होता है संगीत
1: अच्छा
0: के बारे में। वो गा नहीं सकता लेकिन समझ सकता है, ऐसा जो जानकार कहते हैं हमारी भाषा में,
1: हाँ
0: जानकार श्रोता है ना, उनके लिए तान का एक हर एक सुर,
1: हाँ
0: कभी भी इधर भी तान का सुर गया, अलग लिया,
1: हाँ
0: तो तुरंत पकड़े जाते हैं।
1: अच्छा
0: तान सुननी है तो आप एकदम बढ़िया तान हीराबाई बड़ोदे करके,
1: ओहो हम
0: स्वच्छ, दानेदार,
1: हाँ
0: बहुत माधुर्य सब है उसमें,
1: जी
0: क्या
1: जी
0: नहीं है। और राग प्रधान, एकदम राग को बिना छोड़े, एकदम सिंपल और बहुत ही बड़ी ध्यान।
1: शकुंतला जी, ये तान के बारे में जो बातें आपने बताई, इसे स्पष्ट करने के लिए उदाहरण स्वरूप जो हम रिकॉर्डिंग सुनने वाले हैं हीराबाई बड़ोदेकर जी, क्या उसकी क्या खासियत है जरा बताइए।
0: हीराबाई का सुर एकदम मुलायम, एकदम गोड़वा जो उसमें है,
1: मिठास उसमें जो है
0: मिठास जो है,
1: जी।
0: और बहुत ही प्यारा सुर के बारे में पक्का हर एक जगह पर, और उसका जो लय है वो
1: जी
0: भी बहुत अच्छी तरह से जाती है। तान सुननी है और तान सीखनी है
1: हाँ
0: तो हीराबाई को ही सुनना है।
1: आइए सुनते हैं।

0: जयन जी,
1: जी
0: कोई कोई बातें हम बोल के नहीं कह सकते हैं, इतना डेप्थ उनकी आवाज में रहता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तान के बारे में और सुरेलता के बारे में जो हीराबाई के पास था
1: जी जी जी
0: वो एकदम अपार था, बहुत ही अच्छा था।
1: जी जी और इसे सुनते हुए जो गाना याद आ रहा था, तो उस गीत की झलक सुनते चलें। चित्रलेखा फिल्म का गाना है,
0: वाह वाह
1: मन रे
0: वाह
1: तू काहे न धीर धरे।
0: वाह, बराबर हमारे घराने का, धीर धरने का
1: हाँ
0: जो
1: हाँ
0: ये है, ये गाना बहुत ही उसके लिए फिट है।
1: जी चलिए सुनते हैं।

स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना। अभी आपने सुनी इस श्रृंखला की 11वीं कड़ी। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे, इनसे बातचीत की जयंत पात्रीकर ने, तबला संगत रोहिदास परब, हारमोनियम पर संगत दी ऋषित होनावरकर ने। श्रोताओं, इस श्रृंखला के लिए तकनीकी सहयोगी भावना सिंदल, संपादन सहयोगी झरना सोलंकी और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में होगा कार्यक्रम भूले बिसरे गीत, कीजिए इंतजार।

विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। स्वीकार कीजिए नेहा आगरकर देसाई का नमस्कार। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं दिल है नादान इस फिल्म के गीत के साथ, जिसे गाया है सुधा मल्होत्रा ने। शकील बदायूनी की रचना है, गुलाम मोहम्मद का संगीत।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। आइए अब आपको सुनवाते हैं ज्वार भाटा फिल्म का गीत, जिसे स्वर दिए हैं अरुण कुमार और साथियों ने। नरेंद्र शर्मा ने इसके बोल लिखे हैं और धुन बनाई है अनिल बिस्वास ने।

अंतराल के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में। आपने ट्यून किया है विविध भारती। आइए अब आपको सुनवाते हैं हमदर्द, इस फिल्म का गीत मन्ना डे की आवाज में। इस गीत को रचा है प्रेम धवन ने और इसकी तर्ज बनाई है अनिल बिस्वास ने।

0: आमंत्रित कलाकार हैं
1: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
0: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
1: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।
2: अनिल विश्वास का संगीतबद्ध किया ये गीत सुनिए जिसे लिखा है सरदार जाफरी ने। मीना कपूर ने इसे गाया है और परदेसी फिल्म का ये गीत है।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: चित्रलेखा इस फिल्म का गीत अब आप सुनेंगे मोहम्मद रफी की आवाज में। साहिर लुधियानवी ने लिखा है इसे और रोशन का संगीत।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। सुबह के 7:30 हो रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के।

विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। आइए कार्यक्रम का आगाज करते हैं धर्मा फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे आवाजें दी है मोहम्मद रफी और आशा भोसले ने। वर्मा मलिक ने इस गीत को रचा है, सुरों में ढाला है सोनिक ओमी ने।

0: चंदन
1: मैं चंदन
0: मैं चंदन मैं चंदन हूँ बहू हूँ इशारों को।

आइए अब आपको सुनवाते हैं मदहोश। इस फिल्म का गीत आशा भोसले और किशोर कुमार ने इसे गाया है। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत।

0: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
0: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
0: बिल्कुल। वो हैं मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

शरीफ बदमाश इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में, आनंद बख्शी की रचना और राहुल देव बर्मन का संगीत था। इस कार्यक्रम में अब वक्त है एक छोटे से अंतराल का।

यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम है राही प्यार के। टैक्सी ड्राइवर इस फिल्म का गीत अब आपको सुनवाएंगे आशा भोसले और मोहम्मद रफी के आवाजों में। फारूक कैसर ने इसे लिखा है और ओपी नैयर का संगीत।

आइए अब आपको सुनवाते हैं जंजीर फिल्म का गीत। आवाजें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की। गुलशन बावरा ने इस गीत को रचा है, कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी का जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी, बंदिनी वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में सिर्फ विविध भारती पर।
2: सचिन देव बर्मन के संगीत निर्देशन में सुनिए आनंद बख्शी का लिखा ये गीत। स्वर दिया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने। फिल्म का नाम जुगनू।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार के गाए इस गीत के साथ ही आज का हम है राही प्यार के ये कार्यक्रम संपन्न करने की नेहा अगरकर देसाई को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

0: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात।
1: नमस्कार, समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंचे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत को वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख इंजन बताया। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश की अर्थव्यवस्था में 7.8% की वृद्धि। अमेरिकी ट्रंप प्रशासन ने नौकरी जाने के बाद H-1B कर्मचारियों के लिए 60 दिन की छूट अवधि को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने UGC नेट जून 2026 के अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों की दोबारा हुई परीक्षा की प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी की। और भारत एशिया कप महिला क्रिकेट के फाइनल में पहुंचा। सेमीफाइनल में कल भारत ने बांग्लादेश को 40 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कल से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। 2 दिवसीय इस सम्मेलन के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ब्रिक्स में 11 प्रमुख विकासशील देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। इस वर्ष ब्रिक्स सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अस्सीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो और ईरान के राष्ट्रपति मसूद फिजिस्कियन हिस्सा लेंगे। अबुधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और इथियोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली और सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद सम्मेलन में शामिल होंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतरश, विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉ टेड्रोस अधानोम घेब्रियसिस और न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष डिल्मा रूसेफ समेत कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख भी सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नई दिल्ली पहुंच गए हैं। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पहुंचने पर उनका स्वागत किया। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और रूस के बीच लंबे समय से विशेष रणनीतिक साझेदारी पर आधारित मजबूत और बहुआयामी संबंध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता होने की भी संभावना है। श्री मोदी शिखर सम्मेलन से अलग कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: ब्रिक्स समूह का गठन सितंबर 2006 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान हुई ब्रिक विदेश मंत्रियों की बैठक के अवसर पर हुआ था। पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 16 जून 2009 को रूस के येकातरिनबर्ग में आयोजित किया गया। वहीं सितंबर 2010 में न्यूयॉर्क में आयोजित ब्रिक विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के साथ ब्रिक का विस्तार हुआ और इसे ब्रिक्स के नाम से जाना जाने लगा। दक्षिण अफ्रीका ने अप्रैल 2011 में चीन के सान्या में आयोजित तीसरे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पहली बार भाग लिया। जनवरी 2024 में मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के पूर्ण सदस्य बनने के साथ ब्रिक्स का और विस्तार हुआ।

0: हुआ। भारत ने इस वर्ष 1 जनवरी को ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली। यह चौथी बार है जब भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। इससे पहले भारत ने 2012, 2016 और 2021 में ब्रिक्स की अध्यक्षता की थी। सुपर्णा सेकिया के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ब्रिक्स व्यापार मंच 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। एक दिन चलने वाले इस कार्यक्रम में ब्रिक्स देशों के 1000 से अधिक कारोबारी, व्यापार मंत्री, वित्तीय क्षेत्र के नेता, वैश्विक निवेशक और उद्योग जगत के विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे। इसका आयोजन ब्रिक्स व्यापार परिषद द्वारा फिक्की, CII और एसोचैम के सहयोग से किया जा रहा है। ये सम्मेलन 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले आयोजित होने वाला प्रमुख कारोबारी कार्यक्रम है। इस सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में आज दोपहर 2 बजे से रात 8:30 बजे तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और आवाजाही नियंत्रित रहेगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार सरदार पटेल मार्ग, 3 मूर्ति मार्ग, 30 जनवरी मार्ग, राजेश पायलट मार्ग, मथुरा रोड, जनपथ अशोका रोड, बाराखंबा रोड, नीति मार्ग, पंचशील मार्ग और प्रेस इन्क्लेव रोड समेत कई प्रमुख मार्ग प्रभावित रहेंगे। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे और सामान्य रूप से चलती रहेंगी। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान रविवार तक राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन संग्रहालय और अमृत उद्यान लोगों के लिए बंद रहेंगे। राष्ट्रपति सचिवालय ने बताया है कि इस शनिवार को राष्ट्रपति भवन के फोरकोर्ट में होने वाला चेंज ऑफ गार्ड समारोह भी आयोजित नहीं किया जाएगा। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज से दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। उपराष्ट्रपति सिलवासा में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम राजकीय महाविद्यालय में सार्वजनिक समारोह में भाग लेंगे। वे सिलवासा में स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर और नमो आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान सहित प्रमुख संस्थानों का भी दौरा करेंगे। उपराष्ट्रपति दमन में नमो अस्पताल भी जाएंगे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तीसरे चरण के संचालन दिशा निर्देश जारी किए। श्री चौहान ने कहा कि इस कार्यक्रम से ग्रामीण नागरिकों, किसानों और संपत्ति मालिकों के लिए जीवन आसान होगा। उन्होंने कहा कि भूमि से जुड़े दस्तावेज सही और आसानी से उपलब्ध होना बेहद जरूरी है।
2: अब सभी भूमि के रिकॉर्ड डिजिटाइज किए जा रहे हैं और अब ऑनलाइन और पारदर्शी प्रक्रिया से कोई भी उनको आसानी से प्राप्त कर सकता है। रजिस्ट्रार जो ऑफिस थे उनको भी पासपोर्ट सेवा केंद्र की तर्ज पर सेवा केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां नागरिकों को बैठने का स्थान होगा, लाइन नहीं लगानी पड़ेगी, आसानी से पारदर्शी प्रक्रिया के द्वारा वो कहीं से भी अपने रिकॉर्ड्स को प्राप्त कर सकेंगे।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सूखा प्रभावित इलाकों में खेती को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान, बेहतर नीतियों और बाजार सहयोग के साथ मिलकर काम करने की जरूरत पर बल दिया है। नई दिल्ली में ड्राईलैंड कांग्रेस 2026 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि उचित वैज्ञानिक उपायों, नीतियों और बाजार सहयोग से सूखे क्षेत्रों को भारत के लिए ताकत का स्रोत बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कृषि व्यवस्था में बदलाव का मुख्य उद्देश्य केवल उत्पादन बढ़ाना नहीं बल्कि किसानों की आजीविका और समृद्धि में सुधार होना चाहिए।
2: हमें यह तय करना होगा कि 2047 तक ड्राई लैंड में पानी की उत्पादकता कितनी बढ़ानी है, मिट्टी का स्वास्थ्य कितना सुधारना है, दलहन और तिलहन का उत्पादन कैसे बढ़े, आयात निर्भरता भी घटाना है, किसान की आय बढ़ाना है और जलवायु सहनशीलता को भी बढ़ाने की आवश्यकता है।
1: ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का 7वां संस्करण आज मुंबई में संपन्न हो रहा है और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: 4 दिवसीय ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में नीति निर्माताओं, नियामकों, केंद्रीय बैंकों, वित्तीय संस्थानों, फिनटेक और प्रौद्योगिकी कंपनियों, निवेशकों, शिक्षाविदों और अन्य वैश्विक हितधारकों ने भाग लिया। सम्मेलन में फिनटेक के भविष्य पर व्यापक चर्चा हो रही है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमन और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज ग्लोबल फिनटेक फेस्ट को संबोधित करेंगे। कल केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा, SEBI के अध्यक्ष तुहिनकांत पांडे, UIDAI के पूर्व अध्यक्ष नंदन निलेकणी और SBI के अध्यक्ष CS शेट्टी ने एजेंटिक AI, टोकनाइजेशन और क्वांटम टेक्नोलॉजी पर आयोजित सत्रों को संबोधित किया था। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की

0: जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें। Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत को दुनिया की आर्थिक वृद्धि का एक प्रमुख आधार बताया है। यह बयान चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था की 7.8% की वृद्धि के बाद आया है। मुद्रा कोष के संचार विभाग के निदेशक जूली कोजेक ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। इसकी मुख्य वजह सेवाओं और निर्यात में हुई बढ़ोतरी है। ट्रंप प्रशासन ने H-1B कर्मचारियों और कई अन्य रोजगार आधारित वीजा धारकों को नौकरी जाने के बाद भी अमेरिका में 60 दिन रहने की छूट अवधि को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा है। गृह सुरक्षा विभाग का ये प्रस्ताव आज फेडरल रजिस्टर में प्रकाशित होगा। एक रिपोर्ट।
2: इस बदलाव के बाद नौकरी जाने पर नई नौकरी तलाशने या वीजा की दूसरी व्यवस्था करने के लिए मिलने वाला समय काफी कम हो सकता है। ये प्रस्ताव E1, E2, E3, H1B, H1B1, L1, O1 और TN जैसी वीजा श्रेणियों और उनके आश्रितों पर लागू होगा। अगर ये प्रस्ताव अंतिम रूप लेता है तो लोगों की नौकरी या वीजा से जुड़ी पात्र गतिविधि समाप्त होने के बाद उन्हें तुरंत अमेरिका छोड़ना होगा या उन्हें वहां रहने के लिए कोई दूसरी कानूनी अनुमति लेनी होगी। विभाग के अनुसार प्रस्ताव का उद्देश्य पहले की व्यवस्था को बहाल करना है। इसके तहत प्रायोजक नियोक्ता की नौकरी खत्म होते ही कर्मचारी को अमेरिका छोड़ना होता था। समाचार कक्ष से वीरेंद्र कौशिक।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने UGC नेट जून 2026 की अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र की दोबारा हुई परीक्षाओं की प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी करती है। परीक्षार्थी 13 सितंबर तक UGC नेट की आधिकारिक वेबसाइट पर उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। अंग्रेजी और वाणिज्य की परीक्षा 9 सितंबर को जबकि समाजशास्त्र की परीक्षा कल आयोजित की गई थी। भारत एशिया कप महिला क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गया है। सेमीफाइनल में कल भारत ने बांग्लादेश को 40 रन से हराया। भारत के 150 रन के लक्ष्य के जवाब में बांग्लादेश 109 रन ही बना सकी। शेफाली वर्मा को 64 रन की पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दूसरे सेमीफाइनल में आज पाकिस्तान का सामना श्रीलंका से होगा। केरलम के कई हिस्सों में आज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने पथनम थिट्टा, कोट्टयम, एर्नाकुलम और इडुक्की जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। पथनम थिट्टा, एर्नाकुलम, इडुक्की और पलक्कड़ जिलों में कल भी येलो अलर्ट जारी रहेगा। इस बीच कल रात 11 बजे से केरलम तट पर ऊंची लहरों के कारण तटीय कटाव की आशंका को लेकर चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, झारखंड, केरलम, माहे, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी दिन के दौरान भारी वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कल तक उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में बिजली गिरने, तेज हवाएं चलने, बिजली कड़कने और तूफान का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत जमीनी स्तर पर प्रशिक्षण सहायता शुरू करने को मंजूरी दी है। इसके तहत दिल्ली सरकार के खेल केंद्रों और स्टेडियम में नियमित प्रशिक्षण लेने वाले पात्र खिलाड़ियों को हर महीने 2000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर्ट एट AIR न्यूज हिंदी और पब्लिक पर एट AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
4: धन्यवाद फरहत। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए विदेशी मेहमानों का राजधानी दिल्ली में आगमन और रोशनी से जगमगाता भारत मंडपम आज सभी समाचार पत्रों में है। हिंदुस्तान लिखता है ब्रिक्स के लिए आज से दिल्ली किले में तब्दील, पुतिन मोदी की मुलाकात आज। राजस्थान पत्रिका ने प्रधानमंत्री मोदी का चित्र साझा करते हुए लिखा है बढ़ता दायरा, बदलता विश्व, अक्षर से महाशक्ति बनने का सफर, ग्लोबल पावर का नया ध्रुव ब्रिक्स। अंतरिक्ष

0: शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत सुरक्षित और सतत अंतरिक्ष क्षेत्र का समर्थन करता है। जनसत्ता की खबर है, लोकसत्य लिखता है, प्रधानमंत्री मोदी का अंतरिक्ष में सहयोग को प्राथमिकता देने का आह्वान। अगस्त में बाजार 2% गिरा, फिर भी रिकॉर्ड 32,000 करोड़ SIP। दैनिक भास्कर ने यह खबर आंकड़ों सहित प्रकाशित की है। शहरों से ज्यादा गांवों में बिक रहे दोपहिया, 55% पहुंची हिस्सेदारी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में छोटी बाइक पहली पसंद, वहीं महाराष्ट्र और बिहार में बड़े इंजन पर जोर, दैनिक भास्कर के बिजनेस पन्ने की खबर है। दैनिक जागरण ने श्रीनगर में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कश्मीरी कलाकारों द्वारा प्रस्तुतियां देने का समाचार सचित्र प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, जन्नते कश्मीर में 4 दिन तक चला बॉलीवुड के दिग्गजों का मेला, बॉलीवुड का वादा, कश्मीर को फिर बनाएंगे फिल्मों की जन्नत।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंचे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश की अर्थव्यवस्था में 7.8% की वृद्धि के बाद भारत को वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख इंजन बताया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने UGC नेट जून 2026 के अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों की दोबारा हुई परीक्षा की प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। वंदे मातरम इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनिस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रिकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए इस श्रृंखला की 45वीं कड़ी।

0: वंदे मातरम और उसकी राजनीतिक पृष्ठभूमि को लेकर जब विवाद खड़ा हो रहा था, उसी समय वंदे मातरम के संदर्भ में एक असाधारण घटना भारत के बाहर घटी। वो ऐतिहासिक घटना आज भी इतिहास की दृष्टि से बहुत कम लोगों को पता है, और इस घटना के शिल्पकार थे महाराष्ट्र के कुछ देशभक्त खिलाड़ी। ये घटना राजनीतिक क्षेत्र में नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय खेल जगत में घटी। ১৯৩৬ में जर्मनी के बर्लिन में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था।
1: Like a modern Caesar, he stands on the balcony to receive the salutes of the athletes of 50 nations.
0: उस प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में प्रदर्शन के लिए अमरावती के हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल नामक संस्था के कसरतबाजों को आमंत्रित किया गया था। उस कार्यक्रम में उन्होंने भारतीय व्यायाम पद्धति, योग तथा शारीरिक शिक्षा के प्रदर्शन प्रस्तुत किए। इस अवसर पर ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह के समय हुए मार्च पास्ट में भारतीय दल ने अपना ध्वज फहराते समय यूनियन जैक के बजाय तिरंगा ध्वज फहराया था। इतना ही नहीं बल्कि ओलंपिक खेलों के निमित्त हुए कार्यक्रम में भारत के राष्ट्र गीत के रूप में वंदे मातरम गीत गाया था। इस दल का नेतृत्व प्रखर राष्ट्रभक्त डॉक्टर सिद्धनाथ काणे ने किया था।
2: हमारा देश पराधीनता में था, तब विदेश में इन खिलाड़ियों ने अपने तिरंगे झंडे और वंदे मातरम के माध्यम से भारतीयों के स्वतंत्रता आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबके सामने उजागर किया। वंदे मातरम के कारण देशभक्ति की भावना

सामान्य नागरिकों की तरह ही कलाकारों और खिलाड़ियों में भी पैदा हुई थी। स्वतंत्रता आंदोलन में अप्रत्यक्ष रूप से योगदान देने वाले और आज भी व्यायाम के प्रसार का काम निष्ठा से चला रहे 110 साल पुराने हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल ने आज भी वंदे मातरम गायन की परंपरा को आदर के साथ आगे जारी रखा है। ये है हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के संगीत शिक्षक श्री इंगले द्वारा संगीतबद्ध किया हुआ वंदे मातरम।

0: वंदे मातरम गीत के बाद के अंतरों पर आपत्ति जताई गई थी। फिर भी वंदे मातरम शब्द या उसके उद्घोष का किसी ने भी विरोध नहीं किया था। 1941 में मुंबई से गुजराती भाषा में वंदे मातरम नाम का अखबार निकलने लगा तो 1942 के चले जाओ या भारत छोड़ो आंदोलन में तो इस नारे ने आंदोलनकारियों के मन में सबसे सम्मानित स्थान प्राप्त कर लिया।
1: दूसरे विश्व युद्ध के बादल छाए हुए थे, तब भी आर्थिक मंदी में फंसे अंग्रेजों को भारतीय सेना की मदद तो चाहिए थी, पर उसके बदले स्वतंत्रता देने के लिए वे अनुकूल नहीं थे। चर्चिल जैसा ब्रिटिश प्रधानमंत्री समय समय पर भारत और यहाँ के पूजनीय नेताओं का उल्लेख अपमानजनक तरीके से करता था। इस आंदोलन के दौरान होने वाली हर सभा में वंदे मातरम के नारे सागर की लहरों की तरह उमड़ते थे। अंग्रेजों की गोलीबारी, आंदोलनकारियों की बड़े पैमाने पर धरपकड़, लाठीचार्ज जैसे अंग्रेजों के आतंक के हथकंडे जारी थे। चौथी मद्रास कोस्टल डिफेंस इन्फेंट्री की एक टुकड़ी, जो ब्रिटिश शासित भारतीय सेना की एक टुकड़ी थी, इस टुकड़ी के अंग्रेजों के खिलाफ तोड़फोड़ की योजना में शामिल होने की गुप्त रिपोर्ट वरिष्ठ अधिकारियों के हाथ लगी। उस समय दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। सैन्य पुलिस ने लगभग 10-12 विद्रोहियों को दिनांक 18 अप्रैल 1943 को पकड़कर सैन्य अदालत के सामने खड़ा किया। 6 जुलाई और 5 अगस्त 1943 को बेंगलोर के सेंट एंड्रयूज चर्च में इन आरोपियों की जांच हुई और 9 बंगाली युवा सैनिकों को फांसी दे दी गई। मद्रास की जेल में फांसी के फंदे में गर्दन डालने से पहले उन्होंने वंदे मातरम कहते हुए मातृभूमि का जय जयकार किया। 27 सितंबर को 21 से 25 वर्ष की आयु के ये 9 युवा शहीद हो गए।

0: 1942 के इस काल में महात्मा जी के नेतृत्व में सारा भारत इस अंतिम लड़ाई को मन ही मन निश्चय कर करेंगे या मरेंगे की भावना से स्वतंत्रता संग्राम में उतर पड़ा था। इसी दौरान अंग्रेजों की नजरबंदी में रह रहे सुभाष चंद्र बोस भेष बदलकर भारत से बाहर निकल गए। 1937 में वंदे मातरम के संबंध में कांग्रेस ने एक समिति स्थापित की थी। मुसलमानों की आपत्तियों के कारण वंदे मातरम की काट छांट को इस समिति ने मान्यता दी। बाद के समय में सुभाष चंद्र मन से भी कांग्रेस से दूर चले गए।
1: भारत से बाहर निकलने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की धुरा संभाली। सुभाष चंद्र और आजाद हिंद फौज

0: के कारनामों ने अंग्रेजी सत्ता को हिला कर रख दिया। आजाद हिंद फौज का कदम कदम बढ़ाए जा गीत बहुत प्रसिद्ध हुआ, लेकिन वंदे मातरम का स्थान कायम रहा। इससे पहले हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, अनुशीलन समिति और गदर पार्टी जैसी क्रांतिकारियों की संस्थाओं ने वंदे मातरम शब्द का ही समर्थन किया था। नेताजी सुभाष चंद्र की भी वंदे मातरम पर अपार श्रद्धा थी।
1: आजाद हिंद फौज की स्थापना के बाद सिंगापुर रेडियो से सुभाष चंद्र द्वारा किए गए भाषण के बाद वंदे मातरम की ध्वनि मुद्रिका प्रसारित की गई। आगे चलकर यही संगीत रचना आजाद हिंद फौज में मार्चिंग सॉन्ग के रूप में इस्तेमाल की गई। इस संगीत रचना के रचनाकार थे तिमिर बरन भट्टाचार्य।

0: भारतीय बोलती फिल्मों के शुरुआती दौर में शास्त्रीय संगीत के कई बुजुर्ग फिल्मों की ओर मुड़े। न्यू थिएटर्स के प्रसिद्ध संगीतकारों में से एक तिमिर बरन भट्टाचार्य थे। तिमिर बरन भारत के पहले गिने चुने शास्त्रीय वादन करने वाले सरोद वादकों में से थे। शास्त्रीय वाद्य संगीत में उस्ताद अलाउद्दीन खां साहब से उन्होंने सरोद वादन की शिक्षा ली थी।
1: देवदास इस कुंदन लाल सहगल अभिनीत फिल्म के उनके द्वारा दिए गए संगीत को लोकप्रियता मिलने के बावजूद वे फिल्मी दुनिया में नहीं रमे। बैले जैसे समूह नृत्य के लिए, नृत्य नाटिकाओं के लिए उन्होंने अलग अलग प्रयोग किए। सिंफनी और पॉलीफोनी जैसे प्रकार हमारे शास्त्रीय संगीत में तो नहीं है। वे स्वयं शास्त्रीय संगीत के ज्ञाता होने के कारण भारतीय राग रागिनियों को सिंफनी की तरह कैसे संयोजित किया जा सकता है, इस दिशा में उन्होंने प्रयोग शुरू किए।

वंदे मातरम की उनके द्वारा बनाई गई रचना को उनकी सर्वोत्कृष्ट रचना माना जा सकता है, क्योंकि उनके द्वारा किए गए सभी संगीत प्रयोगों का उत्कर्ष बिंदु इस रचना में साधा गया है। दुर्गा राग में बंधी ये संगीत रचना बंगाल के प्रसिद्ध रविंद्र संगीत से अलग है। वंदे मातरम को संगीत देने वाले शुरुआती दौर के संगीतकारों में से अधिकांश बंगाल या महाराष्ट्र के ही संगीत विशेषज्ञ थे। रविंद्रनाथ की संगीत रचना बंगाल में लोकप्रिय थी ही, फिर भी उससे अलग अधिक जोशीली और मार्चिंग सॉन्ग के लायक तालबद्ध संगीत रचना तिमिर बरन ने की। वंदे मातरम की उपलब्ध संगीत रचनाओं में से सर्वोत्तम संगीत रचनाओं में एक ये रचना है।

0: नेताजी सुभाष चंद्र ने आजाद हिंद फौज के रूप में अंग्रेजों के विरुद्ध व्यापक सशस्त्र लड़ाई खड़ी की। अंग्रेजों को दी गई वो सबसे बड़ी सशस्त्र चुनौती थी। दुर्भाग्य से नेताजी की विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई। प्राकृतिक आपदा के कारण चलो दिल्ली का नारा देते हुए दिल्ली की ओर कूच करने वाली आजाद हिंद फौज को भारत की पूर्वी सीमा के पास पीछे हटना पड़ा। आजाद हिंद फौज को मिले जनता के अपार समर्थन के कारण अंग्रेजों को इन सैनिकों को दी गई सजाएं रद्द करनी पड़ी।
1: सेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भरम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम।
2: आप सुन रहे थे वंदे मातरम एक जय घोष, इस लघु रूपक श्रृंखला की 45वीं कड़ी। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, अनुवाद संकलन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रिकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचक स्वर जयंत पात्रिकर।

0: और ममता सिंह, तकनीकी सहयोग किरण बंग और अनुश्री गुप्ता, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: ये है विविध भारती।
1: मेरी दुनिया मेरे सपने मिलेंगे शायद ही। आए हाय
2: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। सुबह के 8:30 हो रहे हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम चित्रलोक, कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। स्वीकार कीजिए नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार। नए गीतों के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए कार्यक्रम का आगाज करते हैं फाइटर फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे गाया है विशाल ददलानी, शेखर राव जियानी ने, कुमार ने इसे लिखा है और विशाल शेखर का संगीत।

साथियों, आज हिंदी साहित्य की महान कवयित्री, लेखिका और स्वतंत्रता सेनानी महादेवी वर्मा की पुण्यतिथि है। आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध महादेवी जी ने अपनी भावपूर्ण कविताओं से हिंदी साहित्य को नई संवेदना दी। उनकी प्रमुख कृतियों में यामा, नीरजा और दीपशिखा शामिल हैं। साहित्य और समाज के प्रति उनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। आइए अब आपको सुनवाते हैं स्पेशल 26 इस फिल्म का गीत एमएम क्रीम और के की आवाजों में। इरशाद कामिल ने इसे लिखा है, संगीत से सजाया है एमएम क्रीम ने।

रांझना इस फिल्म का गीत अब आपको सुनवा रहे हैं जावेद अली, कीर्ति सगाठिया और पूजा की आवाजों में। इरशाद कामिल ने इसे लिखा है, ए आर रहमान का संगीत।

चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। आइए अब आपको सुनवाते हैं श्रेया घोषाल और सोनू निगम का गाया ये गीत, जिसे लिखा है निखत खान ने, ललित पंडित ने इसकी धुन बनाई है। फिल्म का नाम बेशरम।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली।

धड़कन विविध भारती पर। फटा पोस्टर निकला हीरो, इस फिल्म का गीत अरिजीत सिंह की आवाज में सुनिए। अमिताभ भट्टाचार्य और इरशाद कामिल ने इसे लिखा है, प्रीतम का संगीत।

0: आमंत्रित कलाकार हैं
1: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
0: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
1: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर
2: सिर्फ विविध भारती पर।
3: चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से और इस समय वक्त है एक अंतराल का।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक, और आइए अब आपको सुनवाते हैं अरिजीत सिंह का गाया ये गीत फिल्म मिकी वायरस से, गीत और संगीत हनीफ शेख का।

लुटेरा फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं मोहन खन्ना और अमिताभ भट्टाचार्य की आवाजों में। लिखा है इसे अमिताभ भट्टाचार्य ने, अमित त्रिवेदी का संगीत।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। आज महान स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक, विचारक और भूदान आंदोलन के प्रणेता आचार्य विनोबा भावे की जयंती है। 11 सितंबर 1895 को महाराष्ट्र के गागोड़े गांव में जन्मे विनोबा भावे महात्मा गांधी के विचारों से बेहद प्रभावित थे। उन्होंने अपना जीवन सत्य, अहिंसा, सर्वोदय और समाज के सेवा के लिए समर्पित कर दिया। भूदान आंदोलन के माध्यम से उन्होंने भूमिहीन लोगों के लिए भूमि उपलब्ध कराने का अनूठा प्रयास किया। सादगी, त्याग और मानव कल्याण पर आधारित उनके विचार आज भी समाज को नई दिशा और प्रेरणा देते हैं।

टेबल नंबर 21। इस फिल्म का गीत आपने सुना गजेंद्र वर्मा की आवाज में। असीम अहमद अब्बासी ने इसे लिखा था, गजेंद्र वर्मा का संगीत। और अब चित्रलोक कार्यक्रम में वक्त है एक छोटे से अंतराल का।

चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। आइए अब आपको सुनवाते हैं नौटंकी साला। इस फिल्म का गीत आयुष्मान खुराना और नीति मोहन की आवाजों में, रोचक कोहली, गुरप्रीत सैनी और आयुष्मान खुराना ने इसे लिखा है। संगीत है रोचक कोहली और आयुष्मान खुराना का।

0: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
0: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
0: बिल्कुल। वो हैं मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। काय पोचे इस फिल्म का गीत सुनिए अमित त्रिवेदी की आवाज में। स्वानंद किरकिरे ने इसे लिखा है, अमित त्रिवेदी का संगीत।

चित्रलोक कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवाते हैं ये जवानी है दीवानी। इस फिल्म का गीत तोची रैना और रेखा भारद्वाज की आवाजों में, अमिताभ भट्टाचार्य ने इसके बोल लिखे हैं, प्रीतम का संगीत।

ये जवानी है दीवानी इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना। इस गीत के साथ ही चित्रलोक कार्यक्रम संपन्न करने की दीजिए नेहा अगरकर देसाई को आज्ञा। नमस्कार। I want full newspaper coverage. I want magazine stories. I want books. I want films. I want TV. I want radio. I want

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।

पांच बातें उनकी जो दिल की उड़ान को आंखों में भरकर जीते हैं, जिन्हें प्यार है अपनी कला से और जो फिल्मों में अलाकारी नहीं करते बल्कि उन्हें जीते हैं।

आयुष्मान खुराना को राष्ट्रीय पुरस्कार तो अभी मिला है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्हें जो यात्रा तय करनी पड़ी उसकी बात करना बहुत जरूरी है। चंडीगढ़ में 14 सितंबर 1984 के दिन सुरीली किलकारी गूंजी निशांत खुराना की, और बाद में माता पिता ने उन्हें नया नाम दिया आयुष्मान।

छोटी उम्र से ही आयुष्मान ने अपना हुनर दिखाना शुरू कर दिया था। उन्हें गाना बहुत पसंद था। अपनी गिटार के साथ वो कहीं खो जाया करते और सुनने वाले उनके कायल हो जाते। वो अपने गाने भी खुद ही लिखा करते। ऐसे में कई बार आसपास के लोगों को लगता कि आयुष्मान गायक या गीतकार ही बनेंगे, लेकिन कॉलेज पहुंचते ही उन्हें एक नई राह दिखी। वो जुड़ गए थिएटर से।

उन्होंने कई नाटकों में मुख्य भूमिका निभाई है। धर्मवीर भारती के प्रसिद्ध नाटक अंधायुग के मंचन में उन्होंने अभिमन्यु का किरदार निभाया था। 5 साल थिएटर को देने वाले आयुष्मान चंडीगढ़ के मशहूर थिएटर ग्रुप आगाज और मंचन तंत्र की नींव रखने वालों में से एक माने जाते हैं, लेकिन थिएटर उनकी मंजिल नहीं थी, ये तो बस एक रास्ता था।

साल की उम्र में उन्होंने एक पॉप रियलिटी शो में हिस्सा लिया। इसके बाद उन्होंने काफी काम किया, जैसे वो एक चर्चित एफएम में आरजे का काम करने लगे। उनका शो मान न मान मैं तेरा आयुष्मान काफी पसंद किया जाता। देखते ही देखते वो एक बहुचर्चित टीवी रियलिटी शो में आ गए और उन्होंने उस शो को जीत भी लिया। इसी चैनल में उन्हें काम मिल गया वीडियो जॉकी का। आयुष्मान आवाज की दुनिया से निकलकर सबके सामने आ चुके थे और उन्हें लोग काफी पसंद करते थे।

0: सजदा फेरा।
1: एक पहचान तो मिल गई थी और साथ ही मिल गया था कई टीवी शोज को होस्ट करने का काम भी, लेकिन एक सपना था जो अब भी अधूरा था। इस सपने की कहानी बड़ी दिलचस्प है। एक रोज यूं ही रोड से जाते हुए आयुष्मान ने देखा किनारे बड़ी सी होर्डिंग में उनके फेवरेट स्टार शाहरुख खान की आने वाली फिल्म ओम शांति ओम का पोस्टर लगा है। यूं ही उनके मन में ख्याल आया कि एक रोज मेरी फिल्म की होर्डिंग भी यही लगेगी। ये खुली आंखों का सपना था और ये सपना सच

0: ये गीत फिल्म के लिए सिलेक्ट होते ही पहले ही मीटिंग में आयुष्मान ने विकी डोनर फिल्म से पहली बार प्रोड्यूसर बने जॉन अब्राहम को गाकर सुनाया और जॉन ने इस गाने को फिल्म में आयुष्मान की आवाज में ही रखने का फैसला किया। इस फिल्म और गीत दोनों के लिए ही आयुष्मान को बहुचर्चित फिल्म पुरस्कार मिला। विकी डोनर लीक से हटकर फिल्म थी जिसमें एक सामाजिक मुद्दे को सरल तरीके से लोगों के सामने रखने की कोशिश की गई थी। इसी तरह चुप्पी रखे जाने वाले एक और विषय पर आयुष्मान ने बेहतरीन किरदार निभाया। ये फिल्म थी शुभ मंगल सावधान।
1: हनी हनी कर सया मून पे पहुंच गए जनवरी का सोचो सया।

0: ना पलट दूंगा तू ना लेना टेंशन, तेरे ही लिए है मेरी सगली अटेंशन। अरे दुनिया पलट दूंगा तू ना लेना टेंशन, तेरे ही लिए है मेरी सगली अटेंशन। देखो ना बेबी दिल के वायर की लेंथ को, छूकर देखो प्यार वाले करंट को।
1: गुलाब हमारी सैया, ऐसे भी लौट के जनाब हमारी सैया, रॉकेट हमारे सैया, रॉकेट हमारे सैया, सैया सैया सैया सैया, रॉकेट हमारे सैया।
2: आयुष्मान की फिल्मों की संख्या दहाई में है, लेकिन उनके किरदार शतक जमाते हैं। ऐसे चुन चुन के किरदार उन्होंने लिए हैं कि अलग ही रंग नजर आता है, उनका थिएटर का अनुभव नजर आता है, एक थिएटर कलाकार की भूमिका में। ये फिल्म थी नौटंकी साला।

किताब को किसी और के नाम से छपवाने वाले और उस किताब के लेखक से प्यार करती बिट्टी को ये बात बताने को बेताब चिराग दुबे के किरदार में जान भर देते हैं आयुष्मान फिल्म बरेली की बर्फी में।

0: ऐसा ही जरा अलग किरदार उन्होंने निभाया। फिल्म थी बधाई हो।
1: कैटवॉक वाली बेबी है तेरी चाल, बैकलेस सूट

लेकिन सबसे ज्यादा लोगों के दिलों को जीता उनके किरदार प्रेम प्रकाश तिवारी ने, जो अरेंज मैरिज से पत्नी बनी संध्या को स्वीकारने में बहुत देर लगाते हैं। ये कहानी तो मानो हर आम इंसान को छू गई। आयुष्मान का ये किरदार जिस फिल्म में नजर आया वो फिल्म थी दम लगा के हईशा।

0: रहा ये सुलझे।
1: आयुष्मान खुराना की बात हो तो उनके बिल्कुल अलग किरदारों की बात न की जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। अपनी तीसरी ही फिल्म में उन्होंने किरदार निभाया शिवकर बापूजी तलपड़े का, जो भारत के एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने भारत का पहला विमान बनाया था, लेकिन वो गुमनाम ही रहे। इस किरदार को निभाने के लिए आयुष्मान ने अपना वजन गिराया और मराठी भी सीखी। ये फिल्म थी हवाई ज्यादा।

हिंदी दिवस के दिन जन्मे आयुष्मान को हिंदी से बड़ा लगाव है और उसका कारण है उनकी माँ जो हिंदी में एमए है। बचपन से ही आयुष्मान को भाषा से लगाव रहा। वो न सिर्फ अच्छा साहित्य पढ़ा करते बल्कि वो बहुत ही छोटी उम्र से ही लेखन की ओर भी मुड़ गए थे। यही नहीं, उनका एक ब्लॉग भी है जिसे वो हिंदी में लिखते हैं और आज भी जब भी उन्हें समय मिलता है कोई ना कोई कविता शेर वगैरह उसमें जोड़ते रहते हैं। भाषा से लगाव का आलम तो ये है कि आर्टिकल 15 के शूट के दौरान जब वो कुछ समय के लिए लखनऊ में थे तो उन्होंने उर्दू सीखना शुरू कर दिया था। दरअसल उन्हें लगता है कि इससे उनके लेखन में उन्हें काफी मदद मिल सकती है। जहां बात हो रही है आयुष्मान के शौक की, तो यहां कुछ बातें बताने से हम खुद को रोक ही नहीं पा रहे। जैसा कि आपको पता ही है कि आयुष्मान को गाने का शौक है, लेकिन कई बार उन्होंने गाने के जरिए अपनी छुट्टियों का खर्च भी निकाला है। अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि कॉलेज के दिनों में वो दिल्ली से मुंबई के लिए चलने वाली पश्चिम एक्सप्रेस में अपने दोस्तों के साथ चढ़ जाया करते और हर कोच में जाकर गाने गाकर परफॉर्म करते। खुश होकर यात्री उन्हें पैसे दे देते और इतने पैसे इकट्ठा हो जाते कि वो सभी दोस्त मिलकर गोवा की ट्रिप के खर्चे निकाल लेते।

की है। पढ़ाई के कारण ही तो उन्हें अपनी पत्नी ताहिरा मिली। जी हाँ, ताहिरा आयुष्मान के बचपन के साथी रही हैं। दोनों फिजिक्स के ट्यूशन में साथ पढ़ा करते थे। यहाँ दोस्ती हुई, फिर प्यार और शादी। ताहिरा आयुष्मान के करियर के उतार चढ़ाव में उनकी साथी रही और हमेशा उन्हें आगे बढ़ने को प्रोत्साहित

गाने थिएटर जैसी चीजों में आयुष्मान का मन लगता था, वहीं वो पढ़ाई में भी काफी अच्छे थे। आयुष्मान ने इंग्लिश लिटरेचर में बैचलर डिग्री और मास कम्युनिकेशन में मास्टर डिग्री हासिल की हुई।

आयुष्मान की फिल्म आर्टिकल 15 उनकी एक बहुचर्चित फिल्म रही। इस फिल्म में उन्होंने एक पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई और इस किरदार के लिए उन्हें काफी सराहना मिली। ये फिल्म सामाजिक मुद्दों से सरोकार रखती है। इस किरदार के जरिए उन्हें गंभीर भूमिका निभाने में माहिर मान लिया गया है। यूं तो हर भूमिका में आयुष्मान ऐसे ढल जाते हैं कि लोग उन्हें देखते ही रह जाते हैं, लेकिन 2018 में आई एक ऐसी फिल्म जिसने लोगों के मन को जीत लिया। आयुष्मान ने इस फिल्म के लिए पियानो बजाना सीखा और ब्लाइंड पियानिस्ट से मुलाकातें भी की। उनकी इस तैयारी ने उनके किरदार में जान फूंक दी। उन्होंने इस फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार अपने नाम कर लिया। जी हाँ, बात हो रही है फिल्म अंधाधुन की।

आयुष्मान इसी तरह अलग अलग किरदारों में ढलकर सभी के दिलों में अपनी जगह बनाते रहे, इस कामना के साथ विविध भारती परिवार की ओर से हम उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हैं।

0: आज के फनकार। यह कार्यक्रम आज केंद्रित था युवा अभिनेता आयुष्मान खुराना पर। शोध, आलेख और स्वर नेहा शर्मा का, संपादन आकांक्षा सिंह का और विविध भारती की ओर से कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।
1: आज के फनकार।

0: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं,
1: हाँ जी।
0: अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं,
2: हाँ जी, हाँ।
0: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
2: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है, तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
1: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।

0: नमस्कार दोस्तों, हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। इस कार्यक्रम में आप ही की बातें हैं, आपकी ही पसंद है, आप ही की यादें हैं और आप ही की फरमाइश भी है। तो आइए कुछ बातें करें, जुड़े आप सब से आपके अपने खूबसूरत सफर से। मैं हूं आपकी अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। देखते हैं हमारे पहले कॉलर कौन है। हेलो
1: जी, हेलो फरमाइश।
0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: जी नमस्कार मंदाकिनी जी।
0: नमस्कार, अरे कौन बोल रहे हैं आप।
1: जी मैम, सुनील कुमार बोल रहा हूँ, जिला महाबोध उत्तर प्रदेश से।
0: कैसे हैं।
1: जी मैम मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हो।
0: हम भी अच्छे हैं। और बताइए क्या चल रहा है इन दिनों।
1: जी मैम अभी तो खाली है बस, आपका सीजन चल रहा है।
0: अच्छा
1: जी, अभी गाँव में थोड़ा बहुत काम लगता है तो कर लेते हैं।
0: जैसे क्या काम कर रहे हैं गाँव में, कौन सा गाँव है आपका।
1: जी मेरे गाँव का नाम कीरतपुरा।
0: कीरतपुरा
1: जी।
0: अच्छा, कैसा है आपका गांव, अपने गांव के बारे में थोड़ा बताइए हमें, क्या क्या सुविधाएं हैं या क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है आपको।
1: जी मैम यहाँ पे ज्यादा सुविधाएं तो नहीं है, वैसे ही तो देखते हैं कि यहाँ पे ज्यादा कीचड़ हो जाता है बरसात के सीजन में। हाँ तो हमारे गांव के पास में एक दूसरा गांव, वहाँ पर एक प्राचीन मंदिर है हनुमान जी का, तो वहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं।
0: अच्छा,
1: वहाँ पे हनुमान जी को कहते हैं कि पसीना भी आता है उनकी मूर्ति से।
0: अच्छा, ऐसी मान्यता है, ऐसा लोग कहते हैं।
1: जी मैम वहाँ पर उनको एसी लगाना पड़ता है उनके कमरे पे, गर्मी के सीजन पर उनको इतना पसीना निकलता है।
0: अच्छा अच्छा,
1: मेरी आपसे 2 महीने पहले बातचीत हुई थी।
0: अच्छा, कब हुई थी।
1: जी मैम मेरी 22 जून को हुई थी आपसे।
0: अच्छा, आपने तारीख को नोट कर लिया या आपको याद है ये तारीख।
1: नहीं मैम तारीख याद है, आपसे बात हुई है, कैसे भूल सकते हैं हम लोग।
0: बहुत सुंदर। किस तरह के कार्यक्रम सुनते हो, विविध भारती में कौन से कार्यक्रम पसंद आते हैं आपको।
1: जी आपका इस सखी सहेली कार्यक्रम और आपका जिज्ञासा कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है मैम।
0: अरे वाह, जिज्ञासा पसंद है, यानी आपको साइंस पसंद है।
1: जी मैम।
0: बड़ा गंभीर कार्यक्रम है वो तो, और उसमें जानकारी मिलती है ना, ज्ञान विज्ञान को लेकर।
1: जी मैम।
0: और सखी सहेली में
1: मैं।
0: आप सखाओं को क्या पसंद आता होगा।
1: जी मैम हम तो बचपन से ही सुन रहे हैं विविध भारती पर, तो हम तो बचपन से ही सखी सहेली सुन रहे हैं। और ऐसा है कि जानकारी तो कहीं से ही मिले लेनी चाहिए।
0: हाँ ये बात अलग है कि जानकारी आपको कहीं से भी मिल सकती है ना।
1: जी
0: तो कभी रसोई में घुसकर खाना बनाया है आपने। जब सखी सहेली कार्यक्रम सुनते हैं तो उसमें तो हम व्यंजनों की बात भी करते हैं, सखी सहेलियों की बात भी करते हैं।
1: जी मैम खाना बनाना तो नहीं आता लेकिन सुन लेते हैं।
0: खाना खाना आता है बस, है ना।
1: जी मैम।
0: हाँ, और खाने में नुक्स निकालना आता है कि आज नमक नहीं डाला, आज पानी ज्यादा डाल दिया, तेल ज्यादा डाल दिया, मिर्च कम डाल दी, ऐसा।
1: नहीं मैम ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए।
0: तो आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं, कौन सा गीत आपके दिल के सबसे करीब है।
1: जी मैम फिल्म का नाम है कुदरत का कानून, उसमें एक गीत है तुझे कितना प्यार करें।
0: चलिए तो सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो
1: हेलो फरमाई,
0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से। हाँ
1: आप मंदाकिनी दीदी बोल रहे हो?
0: जी, बिल्कुल, आप बताइए अपना नाम।
1: मैं बडनेरा जिला अमरावती पद्मा सिंगारे बात कर रही हूँ दीदी। 3 महीने हो गए दीदी मेरे कॉल को। 3 महीने से आपके आपके साथ ही बात हुई हुई थी दीदी मेरी।
0: अरे वाह, क्या नाम बताया आपने अपना? पद्मा।
1: पद्मा सिंगारे
0: क्या बात है, बहुत सुंदर नाम है आपका तो।
1: ये गाना सुनना है दीदी। आप कैसे हो दीदी?
0: मैं अच्छी हूँ, बहुत अच्छी हूँ, और आपसे बात करके और भी अच्छी हो गई हूँ।
1: मेरे को गाना सुनना है दीदी।
0: गाना तो हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन ये बताइए आज आप क्या कर रही हैं, कितनी बिजी हैं, आज दिन भर आपने क्या काम किया, कुछ तो बताइए।
1: आज तो दिन भर में इतना काम करे दीदी का। मेरी बेटी आई थी कल, तो उन राखी बांधने के लिए तो मेहमान का खाना बनाया दीदी। जो आए थे अपनी मेरी मम्मी पन आई थी। हाँ
0: अरे वाह,
1: बहुत सारा काम करी दीदी आज मैंने। थक
0: थक गई फिर।
1: गई, आज मेरा भैया पन आए थे।
0: अच्छा, जब बहुत ज्यादा काम करके थक जाती हो तो क्या करती हो, विविध भारती सुनने लगती हो?
1: नहीं तो दीदी हम तो रेडियो सुनते ना दीदी। हेलो फरमाइश पर सुनते हो दीदी?
0: अच्छा,
1: हाँ चालू रहता है दीदी मेरे यहाँ,
0: अरे वाह, सुबह से शाम तक चालू रहता है विविध भारती।
1: चालू रहता है। सुबह हमारे अमरावती केंद्र के कार्यक्रम सुनती हूँ
0: हाँ
1: और 11 बजे से हमारा विविध भारती चालू रहती है।
0: अच्छा, तो एक बात बताइए, आपने इतना सारा खाना बनाया त्योहार के लिए, क्या क्या बनाया था खाने में?
1: मैंने दीदी रोटी बनाई, चावल बनाई, दाल बनाई, पूरन पोली बनाई दीदी मेहमान के लिए।
0: आ
1: आओ
0: पूरन पोली तो मुझे भी बहुत पसंद है।
1: दीदी खाने को। आओ
0: हाँ, अब मुझे लगता है आना पड़ेगा आपके घर ना, पूरन पोली खाने मुझे।
1: ना आओ ना, अभी अमरावती आएगी ना हमारे घर आना दीदी।
0: पक्का पक्का, बिल्कुल आऊंगी।
1: हाँ दीदी
0: आपसे बातचीत करके हमें बहुत अच्छा लगा, आज आप बहुत खुश भी लग रही हैं, इतनी व्यस्त होते हुए भी थकान भी नहीं लग रही है आपकी बातों में, है ना?
1: नहीं, मेरे को तो थकान रोज इतनी रखती दीदी। रोज मैं काम करती हूँ, घर का काम करती हूँ, और मेरे जो पोता पोती है
0: हाँ,
1: उनको स्कूल ले जाना, छोड़ना, लाना, ये सब मैं करती हूँ दीदी।
0: अरे ऐसे तो आधी थकान दूर हो जाती है बच्चों के साथ तो।
1: दूर हो जाती दीदी। हाँ
0: हाँ, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी आप?
1: डॉन फिल्म का चित्रपट है दीदी,
0: डॉन फिल्म का कौन सा गाना?
1: अरे दीवानो मुझे पहचानो।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
2: अरे

0: हेलो
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: न मांगी कोई दुआ, न कोई गुजारिश की, ना कोई फरियाद, ना कोई नुमाइश की। जब झुका सर सजदे में खुदा के, तो हलो फरमाइश में जिनसे मेरी बात हो रही है उनकी खुशी की ख्वाहिश थी।
0: अरे किनसे बात हो रही है आपकी हेलो फरमाइश में?
1: मंदाकिनी जी से।
0: अरे शुक्रिया शुक्रिया, मेहरबानी, आपने हमारी खुशहाली की दुआएं की है। बताइए अपना नाम, बताइए कहाँ से बोल रहे हैं ये तो बताइए।
1: पालदा नाका इंदौर से मोहम्मद रफी मंसूरी।
0: कैसे हैं आप बताइए मोहम्मद रफी साहब?
1: बहुत अच्छे मैडम, आप कैसे हैं? जी
0: हम भी अच्छे हैं।
1: जी
0: क्या कर रहे हैं इन दिनों?
1: इन दिनों मैडम सिलाई का काम करते हैं हम लोग, धनी
0: अच्छा, क्या सिल रहे हैं?
1: बैग का काम है। हाँ
0: बैग का।
1: जी,
0: अच्छा, आपका नाम इतना खूबसूरत है, क्या याद आता है आपको अपने नाम के साथ?
1: मेरे को मैडम रफी साहब याद आते हैं और उनके गाने याद आते हैं। जी
0: रफी साहब का कौन सा गाना आपके दिल के सबसे करीब है?
1: ये उम्मीद का है ना, एक मुझे इसके तुझे से, फिर राजा और रंक का, फिरकी वाली, बहुत सारे गाने हैं मैडम उनके तो।
0: पसंद आते हैं। अच्छा, आपको घर में किस नाम से पुकारते हैं? आपका घर का नाम क्या है?
1: घर का नाम बबलू है मैडम। जी मैम। जी
0: बबलू। बड़ा प्यारा नाम है ये बबलू, है
1: जी
0: ना? तो बताइए, जब आप छोटे थे आपको बबलू कहा जाता था, यानी आप बचपन में ऐसी कौन सी चीज थी जो आपको तुरंत खुश कर देती थी?
1: मुझे तो मैडम खिलौने मिल जाते थे तो बहुत खुशी हो जाती थी मैडम।
0: अच्छा, खिलौने मिलते थे बचपन में? आपके माता पिता खिलौने लाके देते थे आपको?
1: हाँ, मेरी मम्मी ने बहुत ध्यान रखा मेरा और खिलौने भी मुझे ला ला के दिए थे, तो मुझे बहुत खुशी मिलती थी।
0: क्या क्या खिलौने थे आपके पास बताइए।
1: वो गाड़ी आती थी 4 पहिए की प्लास्टिक की मैडम, वो और बंदूक आती थी वो।
0: लड़के लोगों के पास बंदूक
1: हाँ
0: नहीं हो ऐसा हो नहीं सकता है, जभी तो हमने जानना
1: और
0: चाहा।
1: चाबी की मोटर आती थी ना, जो उसको चलाते थे अपन,
0: हाँ।
1: चाबी की मोटर, उसको चाबी भर दो तो छोड़ दो तो वो बहुत दूर तक जाती थी मैडम।
0: उसको देखकर तो मजा
1: वो
0: आता
1: बचपन की
0: था।
1: यादें में कभी बोला नहीं सकता मैडम।
0: लेकिन अगर अब आप अपने बच्चों के बचपन की बात करें तो क्या कहेंगे? आपके बच्चे हैं क्या? लाके देते हैं उनको खिलौने?
1: अभी
0: लाके
1: अभी
0: देते हैं?
1: मैं शादी नहीं मैडम मेरी। जी
0: अरे आपकी तो शादी नहीं हुई। चलिए, तो आप
1: जी
0: भी अपने बच्चों के बचपन का जो है ख्याल रखिएगा, जब आपकी शादी हो जाए, बच्चे हो जाएं, तो उनका जो बचपना है उसे कभी दूर
1: जी
0: मत होने दीजिएगा, क्योंकि बचपन से सुंदर जो है समय कभी नहीं मिल पाता।
1: जी सही है। फिल्म
0: कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आज आप बताइए।
1: का नाम है हम पांच, मिथुन चक्रवर्ती और सुष्मिता पाटिल पर फिल्माया गया है, और गाने के बोले का जानू मैं सजनिया चमके ही कब चंदनिया गर्मा गरी।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
2: का जानू मैं सजनिया, का जानू, का जानू मैं सजनिया, चमकेगी कब चंदनिया घर में गरीब के,

0: हेलो,
1: हाँ जी नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: हाँ जी लोकेंद्र वर्मा बोल रहा हूँ मैडम, नानाखेड़ा बस स्टैंड उज्जैन मध्य प्रदेश से मैडम। बस
0: कैसे हैं लोकेंद्र जी?
1: बिल्कुल मैडम जी, मस्त रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं और विविध भारती को, प्रसार भारती मोबाइल ऐप और जो डीटीएच पर भी सुन लेते हैं। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहते हैं विविध भारती के।
0: आपसे तो पहले भी बात हो चुकी है मेरी, बहुत पहले।
1: हाँ आज से करीब 6 महीने पहले हुई थी मेरी बात आपसे।
0: कैसे हैं बताइए। इन 6 महीनों में क्या कुछ खास किया आपने?
1: खास तो मैडम जी मेरा तो हेयर कटिंग सैलून का बिजनेस है और मैं हेयर कटिंग सैलून पर काम करता रहता हूँ और आपका प्रोग्राम सुनता रहता हूँ। आपके अलग जो भी विविध भारती के सारे प्रोग्राम आते हैं, जैसे मन चाहे गीत है, हेलो फरमाइश है, सखी सहेली है। सखी सहेली में वो प्रोग्राम अच्छे लगते हैं, जैसे कि वो खाना बनाने की टिप्स बताते हैं ना अलग अलग, कि खाना अलग अलग दो किस प्रकार के भोजन व्यंजन बनाते हैं, वो अच्छा लगता है। और सभी प्रोग्रामों की मुझे जो अपडेट है वो अपडेट तो फेसबुक पेज के माध्यम से मिल जाती है।
0: इसका मतलब आप खाने के शौकीन है तभी आपको वो पसंद है।
1: बिल्कुल अच्छा लगता है मैडम जी खाना, और मैं खाना घर में बना भी लेता हूँ, वाइफ के साथ में उनको हाथ बटा देता हूँ। सिर्फ मुझे रोटी बनाना नहीं आती, बाकी सभी व्यंजन बना लेता हूँ
0: अरे क्या क्या व्यंजन बनाते हैं बताइए, पत्नी का हाथ
1: मैडम।
0: कैसे
1: जैसे कि
0: बटाते
1: हमारे
0: हैं?
1: यहाँ उज्जैन का सबसे प्रसिद्ध भोजन रहता है दाल बाफला और लड्डू। ये मालवा अंचल का मतलब सबसे प्रसिद्ध भोजन है, ये भी बनाने में उनका साथ में सहयोग कर देता हूँ। और जैसे दाल चावल फ्राई है, दाल फ्राई है और मटर पनीर की सब्जी है, ये सब प्रकार के व्यंजन मैं खुद बनाता हूँ
0: अरे क्या बात है, कहाँ से सीखा आपने?
1: मैडम जी। ये तो सब मैंने आपके यहाँ से जो टिप्स मिलते हैं उसको देखते हैं, और बाकी जो घर में कभी कभी महिलाएं भी बनाती है तो उनको देखकर हम भी सीख जाते हैं।
0: हाँ, सही बात है ना। और जिनको खाने का शौक होता है ना तो वो कहीं ना कहीं से रेसिपी देख ही लेते हैं कि किस तरह से कौन सा व्यंजन बनाया जा सकता है ना?
1: और खास करके मेरी एक खासियत है कि मैं सिर्फ घर का बना भोजन ही खाता हूँ। मैं बाहर मतलब डिनर पे या कहीं बाहर जाता हूँ ना,
0: हाँ
1: तो मैं बाहर का व्यंजन इतना ज्यादा अवॉइड करता हूँ सभी चीजों को, क्योंकि बाहर के जो व्यंजन रहते हैं खैर लगते तो लुभावने हैं, जैसे पिज्जा है, बर्गर है, ये चीजें, पर ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक रहते हैं। क्योंकि घर का जो शुद्ध शाकाहारी भोजन आप खाएंगे तो उससे आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। आज मेरी 52 साल की उम्र है पर किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है, ना थायराइड है, बीपी है, सो

0: अरे कुछ भी नहीं है।
1: क्या बात है, बहुत अच्छी बात। आपने बहुत बड़ा संदेश दिया है कि पिज्जा बर्गर खाने के हम जितने शौकीन हैं उतनी ही बीमारियां हम पाल भी ले रहे हैं ना। खासतौर से हमारे बच्चे जो फास्ट फूड के शौकीन है, आए दिन उनको फास्ट फूड चाहिए है ना, स्ट्रीट फूड चाहिए। तो माता पिता को चाहिए कि घर में ही बना के वो खिलाएं, ताकि बच्चों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ नहीं हो। आप 52 ईयर्स ओल्ड हैं, आपने कहा कि आपको कोई बीमारी नहीं है, बहुत अच्छी बात है।
0: आज उज्जैन में महाकालेश्वर जी की सवारी निकल जाती है, शाही सवारी।
1: अच्छा, हाँ
0: और आज शाही सवारी उज्जैन में निकल रही है, बाबा महाकालेश्वर जी खुद दर्शन देने के लिए पालकी में सवार होकर जनता का हालचाल जानने के लिए निकल रहे हैं, और वो सवारी निकल रही है आज।
1: वाह, बहुत सुंदर दृश्य होगा और काफी लोगों की तादाद होगी, भीड़ होगी, काफी लोग आजू बाजू चलेंगे।
0: बिल्कुल मैडम जी। और ये उज्जैन महाकालेश्वर के जो स्थान है, ये तो ज्योतिर्लिंग प्रसिद्ध है ही सही, पर आज जो शाही सवारी निकली है इसमें करीब नहीं 5 लाख से यात्री जो उज्जैन में दर्शन करने के लिए आए हैं।
1: बहुत बड़ी बात। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे जानकर कि कितना खास दिन हम मना रहे हैं और उज्जैन में खास तौर से इतने श्रद्धालुओं की भीड़ है।
0: जी जी मैडम।
1: जी, तो बताइए आपकी पसंद का कौन सा गीत हम आपको सुनवाएं?
0: गाना सुनना है मुझे लता मंगेशकर जी की आवाज में, फिल्म का नाम है सत्यम शिवम सुंदरम, और इसमें एक गाना है ईश्वर सत्य है सत्य ही शिव है।
1: अरे बहुत सुंदर गाना है लता जी की आवाज में।
0: जी
1: चलिए,
0: मैडम।
1: आप सुनना चाहते हैं ये टाइटल सॉन्ग सत्यम शिवम सुंदरम।

0: हेलो,
1: हाँ नमस्कार।
0: नमस्कार। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: हाँ धन्यवाद दीदी। मैं यहाँ राजाराम नगर देवास मध्य प्रदेश से राजेश अग्रवाल बोल रही हूँ। धन्यवाद।
0: राजेश जी, स्वागत है आपका। कैसे हैं?
1: बढ़िया दीदी, यहाँ प्रिंटिंग प्रेस पे बैठा हुआ, पानी भी गिर रहा है अभी,
0: अच्छा, प्रिंटिंग प्रेस।
1: बारिश जोरदार हो रही है।

0: घंटा हो गया है।
1: अरे वाह, अच्छी बात है ना।
0: मतलब हाँ, मतलब एक महीने से पानी नहीं आ रहा था यहाँ पर। हाँ, और हमारे परिवार के लोग है जो करीब 40 वर्षों से कार्यक्रम सुनता हूँ मैं।
1: अच्छा, कौन से कार्यक्रम सुनते हैं आप विविध भारती के?
0: भारती के जैसे तो मनचाहे गीत अभी चालू कर दिया आपने।
1: आपने पत्र लिखा है मनचाहे गीत में?
0: बिल्कुल, छुट्टियाँ बहुत जारी है, लेकिन इसका समय कम से डेली किया जाए, और हेलो फरमाइश का समय भी जैसे आपने एक ही दिन कर दिया, ये आप 2 दिन ही किया जाए।
1: चलिए, तो आप प्रिंटिंग प्रेस में काम करके समय निकाल लेते हैं हमसे फोन करने का?
0: बिल्कुल बिल्कुल, वो तो हमारे कारीगर काम करते हैं ना, हम तो क्या है डायरेक्शन देते हैं, जैसे मतलब हमारे पास 2-3 कारीगर है, और बाकी के समय हम जैसे सुनते रहते हैं, समय रहता है तो। फरमाइश कार्यक्रम हमारा खास है, जैसे मनचाहे गीत है, इसके बाद ये हेलो फरमाइश है,
1: हाँ, ये सभी कार्यक्रम आपको पसंद है बिल्कुल। तो बताइए, आज
0: ये
1: कौन सा
0: मेरा
1: गीत
0: गीत
1: सुनवाएं?
0: आज गीत है ये उजाला पिक्चर का, झूमता मौसम मस्त महीना, जो के जय किशन साहब की पुण्यतिथि है
1: जी जी
0: तो उनका बनाया हुआ गीत है ये, तो वो अलग ही सुनवा दीजिए, और हमारे साथ में हमारे परिवार के लोग भी सुन रहे हैं इस गीत को। शांति महाजन है, मुकेश महाजन है, नीता महाजन है और राकेश महाजन है।
1: चलिए, तो आप सभी मिलकर सुनिए अपनी पसंद का ये गीत,
2: झूमता मौसम।

0: हेलो।
1: आपकी दोस्ती ही मेरी जान है, शायद इस हकीकत से आप अनजान हैं। मुझे खुद नहीं पता मैं कौन, क्योंकि आपकी दोस्ती ही मेरी पहचान है।
0: क्या बात है। हेलो फरमाइश कार्यक्रम में अपना बताइए, अपने बारे में आप कौन हैं?
1: मंदाकिनी मैडम जी, नमस्कार। सबसे पहले तो आपको
0: नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। अपना नाम बताइए हुजूर।
1: उदयपुर राजस्थान जिलों की नगरी से दिलीप पाहुजा बात कर रहा हूँ मैडम।
0: दिलीप सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं आप?
1: बहुत ही बढ़िया हूँ मैडम, आज आपसे बात हो गई तो और भी अच्छा हो गया मैडम। जी
0: अरे पहले भी शायद आपसे बात हुई भी है हमारी, तो मुझे जहां तक याद
1: मैडम,
0: आ रहा है।
1: बिल्कुल 18 जून को बात हुई थी आपसे मेरी 2025 में, उसके बाद आज हो रही है।
0: चलिए, तो अच्छी बात है कि आपकी दोबारा
1: जी
0: हमसे बात हो रही है। और कैसा है
1: बहुत ही बढ़िया है मैडम,
0: आपका शहर बताइए
1: बहुत ही
0: उदयपुर।
1: बढ़िया एकदम मैडम।
0: सही बारिश हो गई है जितनी उम्मीद थी?
1: बारिश अभी हुई नहीं।

0: एक महीने से कल हुई शाम को, आधा पौन घंटा थोड़ी ठीक हुई, लेकिन उससे थोड़ी उमस हो गई है
1: बिल्कुल सही
0: अभी,
1: कहा।
0: और आसार है, झीले अभी खाली है। जी
1: बिल्कुल, क्योंकि प्रॉपर बारिश होनी चाहिए थी, वो तो हुई नहीं, जो झीलें भर जाती। लेकिन पर्यटक काफी आए होंगे घूमने।
0: पर्यटकों की तो धूम मची हुई है मैडम, फिर
1: लेकिन इस गर्मी में उनका हाल बेहाल हो जाता होगा ना।
0: भी उनको जरा भी चिंता नहीं रहती है।
1: हाँ, खैर, घूमना तो एक इतना जानदार और शानदार काम है कि आदमी सब कुछ भूल कर निकल पड़ता है घर से, है ना।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। जी
1: आपको यात्रा पे कहीं जाने का मौका मिला है।
0: अभी कुछ समय पहले ही होके आया था मैं उज्जैन, महाकाल की नगरी।
1: अच्छा।
0: वहाँ हमारे प्रिय मित्र लोकेंद्र वर्मा जी से मुलाकात करके आया, बड़ा ही अच्छा लगा। वो भी खुश हो गए और मैं भी खुश हो गया।
1: अच्छी बात है, दो मित्र मिलेंगे तो खुश होना ही चाहिए। तो क्या लगा इंदौर जाकर महाकाल के दर्शन करके, जब आप लौटे तो क्या महसूस किया आपने।
0: वहां का एक आनंद ही अलग था मैडम, जिधर देखो उधर, मतलब महाकाल की नगरी में एक तो महाकाल के जो नारे थे वो बड़े ही एकदम मन को शांति और सुकून पहुंचा रहे थे, उसमें सब कुछ भूल गया मैं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, आप जिस भाव को लेकर गए थे उससे कहीं ज्यादा आपको महसूस हुआ, है ना।
0: अभी वापिस से मानस बन रहा है इसी महीने में।
1: चलिए, तो आपकी यात्रा शुभ और मंगलमय हो। इसी उम्मीद के साथ हम आपसे गाना जानना चाहेंगे, कौन सा गाना आज आप सुनना चाहते हैं।
0: देवानंद साहब की फिल्म का है और रफी साहब की आवाज का गाना है। फिल्म का नाम है काला बाजार और गाने के बोल है, खोया खोया चांद खिला आसमान आंखों में।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: मोहब्बत की समा जलाकर तो देखो, मोहब्बत की समर तो देखो, दिल की दुनिया सजाकर तो देखो, तुम्हें हो ना जाए मोहब्बत तो कहना, जरा एक बार हमसे नजरें मिलाकर तो देखो।
0: क्या बात है, मुकर्रर मुकर्रर।
1: दिल की दुनिया सजाकर तो देखो, तुम्हें हो ना जाए मोहब्बत तो कहना, जरा एक बार हमसे नजरें मिलाकर तो देखो।
0: क्या बात है, क्या बात है। हमारे सभी श्रोता सब शायर, नगमा निगार, गीतकार हैं।
1: बिल्कुल मैम, ये विविध भारती की देन है, जो कि हम लोग इतना टैलेंट और इतनी खूबसूरत अंदाज से बोलना सीख गए आप लोगों को देख देख कर।
0: क्या बात है, बहुत सुंदर। बताइए अपना नाम, कहाँ से बोल रहे हैं, अपनी जानकारी दीजिए हमें।
1: मैं ग्रामा पोस्ट वक्ति

0: डिस्ट्रिक्ट बदायूं, तहसील दातागंज, यानी उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बदायूं शहर से विमल ठाकुर बात कर रहा हूं मैम।
1: विमल जी स्वागत है आपका, कैसे हैं आप?
0: मैं बिल्कुल अच्छा हूं और आशा करता हूं कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे।
1: अपनी जगह जो है बदायूं, उसके बारे में बताइए। नाम हमने बहुत सुना है लेकिन इसके बारे में क्योंकि हम कभी आए नहीं हैं, तो बताइए कैसा है आपका ये अपना शहर?
0: जी बिल्कुल, मेरे यहाँ पर एक मजार है जो दूर दूर से लोग आते हैं अपनी मिन्नतें लेकर, और हमारे यहाँ पर एक बरेली के पास में आंवला पड़ता है, ठीक है मैम? आंवला शहर है, तो उसमें क्या है कि मनोरा धाम नाम से जो श्याम जी का एक दरबार लगता है, वहाँ पर काफी दूर दूर के श्रद्धालु आते हैं।
1: क्या बात है, ऐसी श्रद्धा है ना, तो काफी लोग आते होंगे, काफी श्रद्धालु आते होंगे, काफी भक्त जन आते
0: बिल्कुल होंगे। मैं यहाँ पर टूरिस्ट हूँ, जब जाता हूँ देखता हूँ टूरिस्ट बसें लगातार लगी रहती हैं, क्योंकि काफी देर के बाद गुरुजी से मिलने का नंबर भी आता है, क्योंकि लाइन काफी लंबी रहती है, तो इस समय यात्री ज्यादा रहते हैं, जो श्रद्धालु ज्यादा है तो इस चक्कर में थोड़ा सा टाइम तो लगता है मैम।
1: हाँ खैर, वो तो है ही, जहाँ श्रद्धालु या भक्तगण ज्यादा होंगे तो वहाँ तक पहुँचने में हमें वक्त लगेगा। आप कभी इस लाइन में लगे, इस श्रद्धा के साथ खड़े हुए?
0: जी मैम, मैं वहां पर घूमने तो गया हूँ और जल भी लेकर आया।
1: खैर चलिए, इतना फायदा तो आप भी लेंगे ही जब आप वहीं रहते हैं।
0: जो लोग अपने प्रॉब्लम में रहते हैं वो लाइन लगाकर कतार में जरूर खड़े रहते हैं, क्योंकि उनकी जो दुखद समस्या है वो सुनाने के लिए गुरु
1: जी
0: जी को
1: जी वो किसी विश्वास और श्रद्धा के साथ आते हैं अपनी समस्याओं को लेकर और वहाँ लाइन में लगते हैं ताकि उनको उचित मार्गदर्शन मिल जाए, है ना, इसी भावना के साथ आते हैं। हाँ, आप अपने बारे में बताइए, क्या करते हैं विमल जी आप?
0: वैसे तो मैं जब आपसे अभी बात कर रहा हूँ तो इस समय तो हरिद्वार में एक जॉब कर रहा हूँ।
1: अच्छा, चलिए तो बहुत अच्छी बात है, और आप हमें कॉल भी कर रहे हैं, हरिद्वार में रहकर भी आप हमें सुन रहे हैं, बहुत
0: बिल्कुल
1: अच्छी
0: मैम,
1: बात है।
0: हरिद्वार में रहते हैं और साथ में हमारे बच्चे भी इस समय इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं। लव गुनगुन शुभ अमेरी वाय सरका,
1: क्या बात है, चलिए सुनिए आप सभी अपनी पसंद का गीत, बताइए अब कौन सा गाना
0: मैम।
1: सुनेंगे?
0: मूवी का नाम रहेगा राम अवतार, और इसमें बेहतरीन सनगमा तेरी बेवफाई का, शिकवा करूँ तो मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी, ये सब सुनवा दीजिएगा।
1: आइए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।
2: तेरी बे

0: हेलो
1: हेलो जी,
0: हेलो
1: नमस्कार। जी
0: नमस्कार। हेलो फरमाइश कार्यक्रम है ये विविध भारती से।
1: जी जी मैम, मैं राम बाबू मालवी बोल रहा था, कोलार रोड भोपाल से।
0: भोपाल से राम बाबू जी स्वागत है आपका। कैसे हैं?
1: मैं एकदम बढ़िया हूँ, और परिवार में भी सब आनंद मंगल में हैं। मम्मी भैया भाभी परिवार में हमारे बच्चे बच्चे सब आनंद और मंगल में हैं।
0: बहुत अच्छी बात है ये तो कि सब आनंद मंगल से हैं, है ना।
1: जी,
0: तो
1: और हंसी खुशी के साथ, आनंद मंगल के साथ में हम विविध भारती को साथ में रखते हैं, हमेशा चलती रहती है और सुनते रहते हैं। और आपके जिस प्रोग्राम है ना विविध भारती के, बहुत अच्छे लगते हैं हमको, पूरे परिवार को अच्छे लगते हैं। चलती रहती है विविध भारती हमारे साथ में और सुनते रहते हैं, काम वाम भी करते रहते हैं। और ये पत्र भी हम अभी डाल के आए आपसे, मतलब बात करी ना उससे 2 मिनट पहले ही मैंने पोस्ट ऑफिस में पत्र डाल के आया हूँ वहीं पे।
0: बहुत अच्छी बात है।
1: जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं डालने गया तो उनने मेरे को देखा, मैम ने बोले भैया इसमें डाल दीजिए। बोले काका है उनकी, वहां का डाल दीजिए। जी वहां डाल दीजिए। बोले हमको भी एड्रेस बताना ना भैया, आपको गलत बुरा ना लगे तो। मैम ठीक है, मैंने एड्रेस बता दिया उनको। बोले हम भी डालेंगे, हम भी सुनते हैं विविध भारती तो। हाँ जी जी जी बिल्कुल।
0: अरे
1: उनने दोनों मैम मतलब मेरे पास में एड्रेस रखा तो उन दोनों ने लिया एड्रेस। बोले हम भी डालेंगे पत्र,
0: क्या
1: हम भी बहुत
0: बात है।
1: सुनते हैं, हमारे हस्बैंड और हमारे सास बहुत सुनती है प्रोग्राम। चले ठीक है।
0: उन्होंने ऐसे कहा जो पोस्ट ऑफिस में बैठी थी महिलाएं। हाँ
1: हाँ जी जी जी जी बिल्कुल।
0: जी, बहुत अच्छी बात है कि विविध भारती को आप सभी लोग इतना प्यार करते हैं और
1: जी
0: जिंदगी
1: जी
0: बन गई है विविध भारती आपकी, है ना।
1: बहुत बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से बचपन से सुनते हैं। हमारी तीसरी चौथी पीढ़ी मान के चलो, हमारे दादा परदादा भी सुनते थे, जब से रेडियो चालू हुआ जब से। हमारे दादाजी भी सुनते थे, हमारे पापा भी सुनते थे, मैं भी सुनता हूँ, उसके बाद में हमारा बेटा है वो भी सुनता है। हाँ जी जी जी
0: अच्छा, आपने
1: और हमारा
0: अपने
1: बेटा तो बहुत बहुत ध्यान से सुनता है, हमारा वो बेटा है ना, बहुत ध्यान से सुनता है, वो होमवर्क वगैरह भी करता रहता है और सुनता रहता है।
0: क्या बात है। तो आपने अपने दादा को याद किया है, तो दादा नाना की कोई
1: जी
0: बात याद है आपको ऐसी?
1: जी वो मतलब वो मैं ज्यादा छोटा था उस टाइम पे, वो गुजर गए तो वो नहीं है, शांत हो गए थे।
0: अच्छा, आप अपने बारे में बताइए फटाफट से, आप क्या करते हैं?
1: अपने ये ड्राई क्लीन का लॉन्ड्री का काम है, वो तो चलता रहता है, विविध भारती हमेशा साथ में रहती है। आपको याद है हमारा काम ही ऐसा है, बिना सुने तो हमारा काम नहीं होता है। जी
0: चलिए, अच्छी बात है। बताइए कौन सा गाना सुनवाएं आपको?
1: जी बिल्कुल, आपसे निवेदन करना चाहूंगा आज प्रोग्राम में, जैसे दिल है के मानता नहीं, इसी का टाइटल सॉन्ग अनुराधा पौडवाल जी का गाया हुआ गाना सुनना चाहूंगा मैं, और
0: आइए
1: मेरे परिवार वाले सभी सुनना चाहेंगे।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो
1: हेलो, नमस्ते जी।
0: नमस्ते। हेलो फरमाइश कार्यक्रम है ये विविध भारती से।
1: हाँ जी मैम, नमस्ते। मैं शाहजी नगर बेलूर जिला नांदेड़ से संतोष भाकरे बोल रहा हूँ।
0: संतोष जी कहाँ से बोल रहे हैं? जिला नांदेड़ से।
1: हाँ जी, देगलू।
0: बिल्कुल, कैसे हैं आप संतोष
1: तो हम
0: जी?
1: विविध, हाँ जी अच्छे हैं मैम। तो
0: बताइए अपने बारे में, बताइए क्या करते हैं आप?
1: आज बहुत दिनों बाद फोन लगे हैं, तो बहुत खुशी हो रही है मुझे। तो
0: अरे वाह, पर आप इतनी गंभीरता से बोल रहे हैं, मुझे तो खुशी कहीं नजर नहीं आ रही है।
1: बिल्कुल
0: पहले अपने बारे में बताइए, आप क्या करते हैं?
1: जी, तो मैं प्राइवेट अस्पताल में कंपाउंडर की ड्यूटी करता हूँ।
0: अच्छा,
1: तो
0: कंपाउंडर की
1: हमारे
0: ड्यूटी करते हैं जी, बिल्कुल। तो क्या समय रहता है ड्यूटी का?
1: ड्यूटी का समय डे रहता है मैम।
0: अच्छा, दिन में करते हैं ड्यूटी। अच्छा, पता है कंपाउंडर बनना आसान नहीं होता है ना? बनने का मतलब कि उसको निभाना, उस जो ड्यूटी को निभाना जो है बड़ा मुश्किल है। मुझे याद है एक एक्सीडेंट में एक जो कंपाउंडर थे, उन्होंने बहुत समय तक इलाज करने के बाद ही कहा कि माफ करना दीदी, हमें ऐसा बनना पड़ता है ना? बहुत स्ट्रिक्ट बनना पड़ता
1: हाँ
0: है।
1: जी,
0: मरीज कितना भी रो रहा है, चिल्ला रहा है, उन्हें अवॉइड करना पड़ता है, उन्हें अपनी पट्टी गार्ड सब लगाना ही पड़ता है ना?
1: बिल्कुल सही बात है। तो
0: बड़ा बड़ा मुश्किल काम होता
1: हमें
0: है।
1: पेशेंट के साथ साथ पेशेंट के रिलेटिव को भी हमको बोलना पड़ता है।
0: हाँ, रिलेटिव्स को भी डांटना पड़ता है, मतलब उन्होंने डांट भी दिया कि आप सही से ट्रेल लगाइए, ब्लड नीचे नहीं गिरना
1: बिल्कुल
0: चाहिए,
1: मैम,
0: है ना? और जब अंतिम दिन उन्होंने
1: बिल्कुल
0: जब
1: जी, बिल्कुल।
0: कहा इस सब बात के बारे में, उन्होंने बताया कि मेरी ड्यूटी में शामिल है, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मरीज ठीक नहीं होता है।
1: बिल्कुल मैम, ये सब कुछ बातें सब करना पड़ता है हमें। हाँ,
0: हाँ
1: बराबर पहचाने। तो
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
1: पेशेंट जब गंभीर अवस्था में आते हैं मैम, और जब अच्छे होते जाते हैं ना, तो बड़ी खुशी होती है हमें। तो
0: लेकिन उसका इलाज करते
1: मैं,
0: समय कठोर
1: हाँ
0: बनना पड़ता है ना?
1: बिल्कुल, बनना तो पड़ता है मैम।
0: जी। बताइए कौन सा गीत सुनेंगे आप?
1: हाँ जी, मैं लावारिस फिल्म का गीत सुनना चाहूंगा, आशा भोसले और किशोर कुमार जी की आवाज में, सबके बिछड़े हुए हैं।
0: चलिए सुनते हैं आपकी
1: तो ये
0: पसंद का गीत।
1: गीत, हाँ जी ये गीत सुना गया, धन्यवाद।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से
1: हेलो फरमाइश। ये हाँ, रहीम खान पठान बात कर रहे हैं।
0: स्वागत है आपका। कहाँ से बोल रहे हैं?
1: परभणी महाराष्ट्र से बात कर रहे हैं भाई।
0: अच्छा, स्वागत है। कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छे हैं, बढ़िया है। आपकी विविध भारती 1975-75 से हम सुख से आ रहे हैं और आज भी हमारी सुनने की तमन्ना है। सखी सहेली पलो फरमाइश, इतना मनोरंजन, यानी हमारे देश की सुरीली धड़कन हमारे परभणी में नहीं बल्कि हमारे पूरे ओड़ में मशहूर है भाई।
0: क्या बात है कितना
1: आप देखिए, हमारा रेडियो चलता है और साथ में काम भी चलता है। हम ग्रुप में ऐसा काम करते हैं और रेडियो उदित भारती लगा के रख देते हैं और उसका पूरा सहेली सपना जितने भी प्रोग्राम है उसको का मजा लेते हैं। सबसे ज्यादा अच्छा और सुरेना मौका बोल तो हमको सखी सहेली सुनने में बहुत मजा आता है भाई।
0: क्या अच्छा लगता है आपको सखी सहेली में?
1: इतने अच्छे मीठे मीठे हमारे मंदा जी ने चाहिए, ममता दीदी जब बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारा काम करते करते काम किधर हो रहा है हमें कुछ पता नहीं चलता है, क्योंकि हंसी मजाक और गाने का मनोरंजन आता है तो बड़ा अच्छा लगता है हमको। चाहिए।
0: चलिए, अच्छी बात है। आपको अच्छा लगता है हमारी बातचीत करने का अंदाज?
1: हाँ जी हाँ जी हाँ, चाहिए। आपकी बात, आपकी आवाज, यानी हमारा रिजित भारती, मैं बोल रहा हूँ ना आपको कि हम 1975-77 से हमारे दिल में ख्याल ही आता था जब हम रेडियो सुनते थे तो हम रेडियो से कब बात करेंगे, आपके जैसी हमारी आवाज कब आएंगी। अब देखिए, हमको भी समझो, कुछ श्रोताओं ने नंबर दे दिया आपका और हमारा भी कॉल बहुत जमाने के बाद लगा, हमें इतनी खुशी हो रही है कि जिसकी हद नहीं।
0: बहुत अच्छी बात है ना कि आपको आपके ही दोस्तों ने नंबर दिया विविध भारती का और आपने हमें कॉल कर लिया।
1: जी हाँ जी हाँ भाई,
0: अच्छा,
1: इस प्रोग्राम में एक छोटा सा शेर बोलने की अनुमति मैं लेंगे भाई।
0: बिल्कुल, बोलिए बोलिए।
1: जहाँ वहाँ मिले वतन हमारा, ये नए मंजिले ये नए रास्ते कांटों से है इसे बता।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। आप क्या करते हैं? परभणी में रहते हैं?
1: जी हाँ, परभणी में रहते हैं।
0: तो अपने शहर के बारे में थोड़ा बताइए हमें, परभणी के बारे में बहुत नाम सुना है हमने।
1: एक खूबसूरत मंदिर मोटा मारुति है जो हमारे परभणी के सभी अच्छनागरिक वहाँ पे आते हैं, मिलते हैं। और दूसरी खास बात ये है कि हमारे परभणी शहर में हजरत तुराबुल हक की दरगाह है, जहाँ का उर्स के लिए बहुत दूर दूर से यात्री आते हैं, देव भक्त आते हैं और दरगाह का पूरा दर्शन करके जाते हैं। और इतना बड़ा मेला भरता है जो कि हमारे महाराष्ट्र में तीसरे नंबर पे आता है, चाहे वो परभणी हजरत तुराबुल शाह के दरगाह का उर्स यानी मेला।
0: बिल्कुल,
1: ये
0: बिल्कुल।
1: हर 2 फरवरी को भरता है यहाँ पे परभणी शहर में, बल्कि हमारे अच्छे देश के अच्छे नागरिक और हमारे विविध भारती के ज्यादा से ज्यादा श्रोता आके पूरा मेले का आनंद लेके जाते हैं।
0: क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत ही उम्दा जानकारी आपने दी। कौन सा गाना सुनवाए आपको?
1: आज के इस प्रोग्राम में हमारा फोन लगा है, सबसे बड़ी तो हमें हमारे को बहुत खुशी हो रही है। एक सरगम फिल्म का नाम है और गाने के बोल है डब्ल्यू वाह डब्ल्यू बजा।
0: आइए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।
1: और वैसे बहुत धन्यवाद।
0: डब्ल्यू

0: तो ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं की कॉल आज लग गई है उनसे हमारा करबद्ध अनुरोध कि आगामी 2 माह तक हमें कॉल नहीं करें ताकि अन्य श्रोताओं को इसमें भाग लेने का अवसर प्राप्त हो सके। हेलो फरमाइश कार्यक्रम के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार दिन में 11 बजे से। इसके लिए हमारे फोन नंबर्स नोट कर लें। हमारे फोन नंबर्स हैं 02228702888, 02240024662। चलते चलाते हम आपको ये भी बता दें कि आज का सफर आपने तय किया अपने दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ, रिकॉर्डिंग इंजीनियर अनुश्री गुप्ता, संपादन सहयोग सुशीला वेंकुर लेकर, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघविंद्र सिंह नेकी।
1: हेलो फरमाइश। विविध भारती की फोन इन सर्विस के इस प्रोग्राम का पिटारा आज के लिए हुआ पूरा। पिटारा हर रोज पेश होता है, रोजाना सुनिए पिटारा।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

दीवाना एल्बम से ये गीत सोनू निगम की आवाज में अभी आप सुन रहे थे। फैज अनवर ने इसे लिखा, साजिद वाजिद का संगीत। आप इस वक्त सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग विविध भारती से।

0: अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की आवाजों में ये गजल अभी आप सुन रहे थे, नजमा मर्चेंट ने इसे लिखा।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
2: मैं निकला ओ गडले,
1: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
3: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
4: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
1: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
5: चिट्ठी न कोई संदेह।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग।

0: वेलवेट वॉइस एल्बम से अभी आप सुन रहे थे हरिहरन की आवाज में ये गजल।
1: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
2: पिताजी का जो जो फिल्में बनी हैं, सभी लिटरेचर बेस्ड है। सबका कहानी लिटरेचर, बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी, बंदिनी वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
1: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में, सिर्फ विविध भारती पर।

0: भूपिंदर सिंह की आवाज में ये गजल अभी आप सुन रहे थे, नशे मन एल्बम का नाम। कासिम कुरैशी ने इसे लिखा, संगीत भूपिंदर सिंह का।
1: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियां।
2: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
3: क्या बात है।
2: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
1: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास, वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा।

0: संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए, तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी अपनी कथा।
0: वो हैं मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग।

पंकज उदास की आवाज़ में ये गज़ल अभी आप सुन रहे थे मुस्कान एल्बम से, उन्हीं का संगीत था। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम रंग तरंग यहीं समाप्त होता है।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है आज के उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार। नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, बेबी आराध्या साहू जी ने सुविचार भेजा है। वो लिखते हैं, दांत चाहे कितनी भी बार जीभ को काटें, फिर भी वे दोनों साथ रहते हैं और साथ काम करते हैं। यही क्षमाशीलता और भाईचारे की भावना है। धन्यवाद आप सबको इस सुंदर विचार के लिए। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिंपल देवांगन। ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई और सूरज ढाक से। अयोध्या धाम उत्तर प्रदेश से राजा बाबू शर्मा, राम बाबू शर्मा, राजबाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, सौरभ शर्मा।

0: सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा, पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी और पोटियागला दुर्ग से संजय कुमार साहू जी। सभी श्रोताओं को आभार खूबसूरत संदेश भेजने के लिए। श्रोताओं, प्रेरक प्रसंगों के सप्ताह के अंतिम दिन हम लेकर आ रहे हैं एक और अद्भुत प्रेरक प्रसंग। आज हम जानेंगे एक ऐसे महान विद्वान और शिक्षाविद के बारे में जिसने गरीबी को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। इस महान समाज सुधारक और विद्वान को इतिहास ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नाम से बड़े सम्मान के साथ याद करता है। पहले जानते हैं कैसा था उनका बचपन। जरा सोचिए श्रोताओं, एक बालक पढ़ना चाहता है लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय है। उसके घर में न पर्याप्त रोशनी है, न पढ़ने की सुविधाएं हैं और न ही कोई आरामदायक वातावरण। तो फिर प्रश्न ये उठता है कि वो पढ़ते कैसे थे। कहा जाता है कि वो कई बार सड़क पर लगे गैस के लैंप की रोशनी में बैठकर पढ़ाई करते थे, जो आज हम सोच भी नहीं सकते कि कोई विद्यार्थी सड़क की रोशनी में बैठकर घंटों पढ़ाई कर लेगा। श्रोताओं, उस युवक के मन में एक सपना था, ज्ञान प्राप्त करना। उनके पिता ठाकुरदास बंदोपाध्याय बहुत कम आय पर काम करते थे, परिवार के पास बहुत अधिक साधन नहीं थे। ईश्वर चंद्र को बचपन से ही समझ में आ गया था कि यदि उन्हें आगे बढ़ना है तो अपनी परिस्थितियों से शिकायत नहीं बल्कि संघर्ष करना होगा। उनके सामने दो रास्ते थे, या तो परिस्थितियों को दोष दें या मेहनत करें। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। वे पढ़ते रहे, संस्कृत का अध्ययन करते रहे, लगातार मेहनत की। उनकी प्रतिभा इतनी असाधारण थी कि आगे चलकर उन्हें विद्यासागर की उपाधि मिली, अर्थात विद्या का सागर। ये जानना रोचक होगा कि उनका मूल नाम ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय था, लेकिन बाद में सम्मान के साथ उन्हें विद्यासागर कहा जाने लगा। एक सड़क के लैंप के नीचे पढ़ने वाला बालक विद्यासागर बन गया। और सबसे अधिक प्रेरित करने वाली बात, उन्होंने अपनी शिक्षा को केवल अपने लिए इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन अपने ज्ञान का इस्तेमाल उन्होंने समाज सुधार और महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए किया। आइए श्रोताओं, जरा विचार करें, इस कहानी की सबसे बड़ी सीख क्या हो सकती है। मेरी नजर में तीन महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात, सुविधाओं की कमी को बहाना मत बनाइए। दूसरी, लगातार मेहनत कीजिए। और तीसरी, सफल होने के बाद दूसरों को आगे बढ़ाने में मदद कीजिए। देखिए, आज हमारे पास मोबाइल है, इंटरनेट है, ऑनलाइन पुस्तकालय हैं, यूट्यूब पर हजारों शैक्षिक वीडियो हैं और पढ़ने के लिए अनेक साधन हैं। मैं तो कहूंगी कि आज हमारे पास जितनी सुविधाएं हैं उतनी पहले शायद कभी नहीं थी। फिर भी हम कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास सुविधा नहीं है, मेरे पास वातावरण नहीं है, इत्यादि इत्यादि। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का व्यक्तित्व हमें प्रेरणा देता है कि कभी कभी साधन कम हो सकते हैं लेकिन संकल्प बड़ा हो सकता है। तो श्रोताओं, हमारा आज का प्रेरक प्रसंग यहीं पर समाप्त होता है। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से, प्रश्न है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के पिता का नाम क्या था। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के पिता का नाम क्या था। आप 8800440559 पर अपने उत्तर हमें भेज सकते हैं। हमारी ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। और हाँ, ताज़ा जानकारी के लिए आप इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को लगातार फॉलो कीजिए। NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करने के लिए किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT Books PDF। और NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनने या हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों को सुनने के लिए आप NCERT ऑफिशियल यूट्यूब को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है शो ऑफ क्लाउड्स। कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित इस कार्यक्रम में एक बच्ची के बारे में बताया गया है कि जब वो आकाश में बादलों को देखती है तो उनमें उसे सुंदर सुंदर छवियां नजर आती हैं। कार्यक्रम प्रोत्साहित करता है कि बच्चे कल्पनाशील बने।
1: हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू?
2: आई एम गुड सर।
1: Fine, good. Okay, so tell me, what do you like most?
2: I like playing, sir.
3: I like painting, sir.
1: Very good. Anyone else?
4: Sir, I like singing.
5: I like playing with my pets.
1: Oh, that's great. Now tell me, do you like looking at the beautiful flowers in the garden?
6: Yes, sir.
7: We like.
1: Lovely butterflies?
6: Yes, sir.
1: And lovely, colorful, chirping birds.
6: Yes, sir. We like it.
1: That's very nice, children.
8: Sir, I go to the park with my parents on holidays.

0: good.
1: Yes, and one thing more. Notice the colors of the clouds, and you will find that the clouds also have different colors from time to time.
2: Yes, sir.
0: I have seen rainbow.
3: It has 7 colors.
1: So children, whenever you see the clouds, they have different
2: shapes.
1: Yes, shapes, and they have different
2: colors.
1: Very nice. Show of clouds. You were just listening to this program. Program coordinator, Professor Rajendra Pal. Technical coordinator, Batil and Lindo. Child singer, Angel. Child artists, Soham, Vedika, Vanya, Navya, Riddhi and Lavish. Sound recordist, Mayank Kumar. Assistance in production, Kusum Lata. Directed and produced by Ajit Horo. This program was brought to you by CIET NCERT, New Delhi, India.
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शो ऑफ क्लाउड्स.
5: मेरा नाम साक्षी है. मैं एक आईटी कंपनी में काम करती हूँ. एक दिन ऑफिस से घर आते वक्त रात को एक कार सामने चल रही थी. उसने अचानक से ब्रेक मारा. और उसकी टेल लाइट ही नहीं चली, बस एक छोटा सा डिम बल्ब था, वो भी धुंधला सा. मुझे लगा मैं सीधा टकरा जाऊंगी. एक छोटा सा बल्ब ही तो है, पर अगर ना चले तो सब कुछ अंधेरा हो जाता.
6: वाहन चलाते समय टेल लाइट और ब्रेक लाइट का ठीक से काम करना जरूरी है, ताकि पीछे आने वालों को समय पर संकेत मिल सके.
4: आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम होमी व्यारावाला. इस कार्यक्रम में भारत की पहली महिला फोटो पत्रकार होमी व्यारावाला के जीवन और एक सफल महिला पत्रकार के रूप में उनकी भूमिका और योगदान के बारे में बताया गया है.

0: तुम्हें बहुत भीड़ जमा है।
1: मैं तो इसे अहोभागी कहूँगा कि आज हम हिज होलीनेस दलाई लामा के साक्षात दर्शन करेंगे।
2: सही कहा भाई, मेरी भी बड़ी इच्छा थी उन्हें देखने की।
1: हाँ। अरे देखो देखो, उनका कारवां बिल्कुल निकट आ पहुँचा।
2: ओफो, इस तरफ तो मीडिया वालों की बड़ी भीड़ है।
1: अरे कोई बात नहीं, आओ ना, कोशिश करते हैं। अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ, पत्रकारों की भीड़ में साड़ी पहनी हुई एक लड़की, अब कहीं मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही हैं?
2: हाँ भाई, मैं भी ऐसे ही देख रहा हूँ भाई, ये तो बड़ी अजीब बात है।
1: हाँ,
2: और देखो देखो, उसने कैमरा भी टांग रखा है।
1: अरे हाँ,
2: किसी औरत का भीड़ भाड़ में यहाँ वहाँ घूमना,
1: अरे कोई अच्छी बात थोड़ी होती है। अरे भाई, औरत तो घर की शोभा होती है, शोभा। पता नहीं कैसा समय आ गया है।
2: मालूम नहीं,
1: ये दिन में देखना था। चलो चलते,
2: चलो चलो,
1: नजदीक
2: आगे आगे आगे,
1: आज
2: आओ
1: आज
2: आज,
1: चलो।
3: साथियों, ये समय था 1959 का, जब दलाई लामा पहली बार भारत की यात्रा पर सिक्किम आए थे। उनके अभिनंदन में भारी भीड़ जमा थी।
4: उसी भीड़ में शामिल थी एक लड़की जो हाथ में एक भारी कैमरा लिए दलाई लामा की फोटो खींच रही थी। कैमरे का वजन लगभग 9 किलो था, जिसके बाहरी हिस्से में लकड़ी का कवर था। इतना ही नहीं, उस लड़की ने अपने कंधे पर एक कैमरे का फ्लैश भी टांग रखा था। ये लड़की कोई और नहीं, ओमी व्यारावाला थी, जिसे दिल्ली से विशेष रूप से इस मौके की फोटो खींचने के लिए बुलाया गया था।
3: 21वीं सदी में शायद महिलाओं को कैमरे के साथ देखना बेहद आम बात लगे, लेकिन आज से 70-80 साल पहले ये एक बहुत बड़ी बात थी। इसी बात

0: को लेकर उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा था।
1: उन दिनों लोग बहुत रूढ़िवादी हुआ करते थे। वो नहीं चाहते थे कि महिलाएं इधर उधर घूमें। जब उन्होंने मुझे साड़ी में कैमरे के साथ घूमते हुए देखा तो उन्हें बहुत ही अटपटा सा लगा, और उन्हें शुरू शुरू में तो ऐसा भी लगा कि मैं कैमरा लेकर सिर्फ उन्हें बेवकूफ बना रही हूं।
2: होमी व्यारावाला का जन्म गुजरात के नवसारी में एक पारसी परिवार में दिसंबर 1913 को हुआ था। उनका परिवार गुजरात में सूरत के निकट व्यारा में रहा करता था। संभवतः इसलिए उन्हें व्यारावाला के नाम से जाना गया।
0: उनके पिता पारसी उर्दू थिएटर के मशहूर अभिनेता थे, इसलिए घर पर माहौल भी थोड़ा खुलेपन का था। परिवार स्वतंत्र विचारों वाला था। रंगमंच पर कार्य करने के कारण ये व्यारावाला परिवार की पहुंच से बहुत दूर नहीं था।
3: आज कितना मुबारक दिन है, हम सब की दिली ख्वाहिश पूरी होने का।
2: समय बदला और उनका परिवार गुजरात से बंबई यानी मुंबई आ गया। उनकी स्कूली शिक्षा बंबई में हुई। पढ़ाई में वो बहुत अच्छी थी, लेकिन शौकिया फोटोग्राफी भी करती थी।
0: लेकिन फोटोग्राफर बनना उनका लक्ष्य नहीं था, वो डॉक्टर बनना चाहती थी। एक रात की बात है,
4: होमी। ओ होमी।
5: जी माँ, आती हूँ।
4: अरे बेटा, अभी तक तुम सोई नहीं?
5: क्या बात है माँ?
4: अरे कोई बात नहीं बेटी, रात का 1 बज रहा है। मैंने तुम्हारे कमरे में बत्ती जलती हुई देखी तो सोचा थोड़ा सा समय तुम्हारे साथ बिता लूं।
5: जी माँ, बिल्कुल।
4: अच्छा बेटी, इन दिनों देख रही हो कि तुम काफी खोई खोई और चिंतित रहने लगी हो, सब ठीक तो है ना बेटा?
5: हाँ माँ, सब बिल्कुल ठीक है। स्कूल की पढ़ाई अब पूरी हो गई है ना, आगे भी तो सोचना है कि मुझे भविष्य में क्या करना है। बस यही विचार मन में बार बार आता है।
4: अच्छा, तो ये बात है, भला तुम्हें अपने भविष्य के बारे में सोचने की जरूरत क्या है? अब तो तुम शादी के लायक हो गई हो, बहुत जल्दी कोई अच्छा सा लड़का देखकर तुम्हारे हाथ पीले कर देंगे हम। और तुम्हारी चिंता तो वो करेगा। हा?
5: अरे नहीं माँ, अभी नहीं करनी है मुझे शादी, और भला मेरे भविष्य की चिंता कोई और क्यों करेगा?
4: अरे
5: मैं खुद क्यों नहीं कर सकती? और माँ, मैं तो डॉक्टर बनूंगी।
4: क्या कहा? डॉक्टर? तो डॉक्टर बनेगी?
5: माँ सुनो तो एक बार मेरी बात।
4: मैंने सब सुन लिया होमी, और मुझे कुछ नहीं सुनना। बात समझ में आई तुम्हें?
5: माँ एक बार बात तो पूरी सुन लो।
4: कुछ नहीं होमी, बस करो।
5: माँ सुनो तो। अरे
2: तो सुना आपने, होमी ने बहुत बाद में दिए गए एक इंटरव्यू में इस घटना का वर्णन करते हुए कहा था,
1: मुझे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि मैं फोटोग्राफर बनूंगी। मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन मेरे जीवन में केवल एक यही समय था जब मेरी माँ ने मुझे कुछ करने से मना किया। उन्होंने देर रात की शिफ्ट में डॉक्टरों को देखा था और वो नहीं चाहती थी कि मैं इस तरह के पेशे में रहूं। उन्होंने ये नहीं सोचा था कि प्रेस फोटोग्राफी इससे भी बदतर होगी।
0: घर से अनुमति न मिलने के बाद उनके पास और कोई चारा नहीं था। उन्होंने डॉक्टर बनने का अपना इरादा बदल दिया, लेकिन एक बात थी जिस पर वो दृढ़ निश्चय के साथ अडिग रही,
2: और वो बात थी एक नारी होकर अपनी जगह खुद बनाने की, अपना भविष्य स्वयं गढ़ने की और अपनी उड़ान का आसमान स्वयं तैयार करने की। उन्होंने फैसला किया कि वो फोटोग्राफी को अपना पेशा बनाएंगी। प्रशिक्षण लेने के लिए उन्होंने जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स में दाखिला लिया।
0: कला की पृष्ठभूमि और कैमरे के थोड़े बहुत ज्ञान के कारण जल्दी ही वो एक कुशल फोटोग्राफर बन गई। अब उन्हें साइकिल पर बैठकर पीठ पर कैमरा लादे बंबई की सड़कों पर देखा जा सकता था। इस दौरान

0: उन्होंने बम्बई के मेहनतकश मजदूरों, निर्धन वर्ग के बच्चों और स्त्रियों के बहुत सारे चित्र खींचे। इन चित्रों को काफी प्रशंसा भी मिली।
1: एक दिन की बात है, कक्षा समाप्त हुई थी और छात्र घर जाने की तैयारी में थे। होमी भी कक्षा से निकलकर संस्थान के मुख्य गेट की ओर जा रही थी।
2: सर, मैं अंदर आ सकती हूँ?
3: अरे होमी, आओ आओ आओ, अंदर आओ अंदर आओ, बैठो, यहाँ बैठो।
2: जी जी सर, धन्यवाद।
3: होमी, जरा इसे देखो।
2: जी।
3: ये आज का समाचार पत्र है। जरा यहाँ देखो, इस पृष्ठ पर जरा पहचानो तो, किसकी फोटो है ये?
2: सर, ये तो मेरी खींची हुई फोटो है।
3: बिल्कुल। हाँ उमी, इसे राज्य भर से आई 100 से भी अधिक तस्वीरों की प्रतियोगिता में पहला स्थान मिला है। लोगों ने इसकी बड़ी प्रशंसा की है। देखो देखो यहाँ क्या लिखा है।
2: जी।
3: देखो पढ़ो। होमी व्यारावाला की इस फोटो ने मेहनतकश मजदूरों की दुर्दशा को बड़ी बारीकी से उकेरा है। और ये लिखा है, ये फोटो हमारे समाज के लिए एक आईना है। बधाई हो होमी, हमें तुम पर फख्र है।
2: धन्यवाद सर।
1: फिर भला क्या था, पूरे राज्य में होमी की ख्याति बढ़ गई। कॉलेज में होमी को छात्र एक प्रेरणा के रूप में देखने लगे। अब उन्हें कई समाचार पत्रों से काम भी मिलने लगा था। कॉलेज में ही उनकी भेंट हुई सहपाठी मानिकशाह जमशेद जी से, जो एक बेहद होनहार छायाकार थे और स्वतंत्र छायाकार के रूप में भी बॉम्बे के कई समाचार पत्रों के लिए काम करते थे।
0: मानिकशाह स्वयं उन दिनों टाइम्स ऑफ इंडिया में फोटो जर्नलिस्ट के रूप में काम करते थे। मानिकशाह ने उन्हें बहुत प्रोत्साहित किया। 8 महाविद्यालय से पढ़ाई पूरी करने के बाद 1938 में होमी व्यारावाला ने फोटोग्राफी की दुनिया में एक पेशावर की तरह प्रवेश किया। बतौर फोटो जर्नलिस्ट होमी की पहली तस्वीर द बॉम्बे क्रॉनिकल में प्रकाशित हुई। इस दौरान उन्हें एक तस्वीर के लिए ₹1 बतौर पारिश्रमिक मिलता था।
1: 1942 में ब्रिटिश सूचना सेवा के लिए फोटोग्राफर के रूप में काम करने के लिए व्यारावाला युगल को दिल्ली आने का निमंत्रण मिला। दिल्ली आते ही होमी के काम को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलनी शुरू हो गई।
0: होमी व्यारावाला एक समर्पित और प्रतिभाशाली फोटो पत्रकार थी, जिन्हें अक्सर अपने कैमरे को अपनी पीठ पर बांधे हुए राजधानी दिल्ली में साइकिल चलाते हुए देखा जाता था। दिन की रोशनी के दौरान वो लो एंगल शॉट तथा छवियों के विस्तार के लिए बैक लाइट का उपयोग करती थी, जिससे विषय वस्तु की गहराई और ऊंचाई को दर्शाया जा सके। इन दिनों की कंप्यूटर जनित डिजिटल फोटोग्राफी के हमारे जमाने में ये बातें भले ही बेहद साधारण लगें, लेकिन उन दिनों इन बातों का विशेष महत्व था। उन्हीं के शब्दों में,
4: जब मैं कैमरा टांगकर साइकिल पर निकलती थी तो मुझे देखने के लिए विशेषकर महिलाओं और बच्चियों की भीड़ जमा हो जाया करती थी। उनकी आंखों में एक चमक होती थी, मानो वो मुझ में अपना भविष्य देखने की कोशिश कर रही हों।
1: कोई भी घटना हो, वो मौके पर सबसे पहले पहुंचने वाले पत्रकारों में से एक थी। अब समय आ गया था छायांकन पत्रकारिता के क्षेत्र में एक महिला के रूप में इतिहास रचने का।
0: वो समय था जब भारत में स्वतंत्रता आंदोलन अपने चरम पर था। स्वतंत्रता सेनानियों की गिरफ्तारियां हो रही थी। महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन की लहर देश के गांव-गांव तक फैल गई थी। बड़े बड़े जुलूसों में, धरना प्रदर्शनों में, हिंसक आंदोलनों में एक महिला का बतौर फोटो पत्रकार उपस्थित रहना और घटनाओं की तस्वीर खींचना कोई आसान बात नहीं थी।
4: जब भी मैं किसी मौके पर कैमरे के साथ पहुंचती थी, मुझे प्रोत्साहन अक्सर नहीं मिलता था। पुरुष प्रधान पत्रकारिता के क्षेत्र में एक महिला के लिए अपनी जगह बनाना बहुत कठिन था। कई बार मेरा मजाक उड़ाया जाता था, लेकिन बात तब बन जाती थी।

0: जब मैं अपना परिचय देती थी, लोग मेरे काम के कारण नाम से परिचित थे। नाम बताने पर मुझे सम्मान भी मिलता था।
1: ऐसे समय में होमी व्यारावाला का एक फोटोग्राफर बनना एक बहुत ही बड़ी बात थी। होमी व्यारावाला ने अगस्त 1947 को लाल किले पर पहली बार फहराए गए झंडे, भारत से लॉर्ड माउंटबेटन के डिपार्चर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू तथा लाल बहादुर शास्त्री की अंतिम यात्रा की भी तस्वीरें अपने कैमरे में कैद की। इन तस्वीरों की पूरे विश्व में प्रशंसा हुई और इन्हें बेहद महत्वपूर्ण ऐतिहासिक धरोहरों के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के चरम उत्कर्ष के दिनों उनके द्वारा खींची गई अधिकांश तस्वीरों को दुर्लभतम कृतियों की श्रेणी में रखा गया है। ऐसा लगता है मानो उनके कैमरे ने इतिहास को सजीव कर दिया है।
2: होमी ने बतौर फोटो जर्नलिस्ट अपने करियर की शुरुआत 1930 में की थी। वो 1970 तक इस क्षेत्र में सक्रिय रही। 40 वर्षों के इस सफर के दौरान उन्होंने देश विदेश में खूब नाम कमाया। 1970 में अपने पति की मृत्यु के बाद होमी व्यारावाला ने अपने पेशे से संन्यास ले लिया। होमी की विशिष्ट उपलब्धियों को देखते हुए भारत सरकार द्वारा 2011 में उन्हें भारत की पहली महिला छाया पत्रकार के रूप में भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। सन 2012 में 99 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया।
1: गूगल ने उनकी विरासत का सम्मान करते हुए उनके जन्म के 104 साल पूरे होने पर अपने डूडल के साथ उन्हें सम्मानित किया। गूगल ने भारत की पहली महिला फोटो पत्रकार होमी व्यारावाला को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें लेंस के साथ पहली भारतीय महिला यानी फर्स्ट इंडियन लेडी विद द लेंस के रूप में सम्मान दिया।
2: स्त्री अस्मिता के विमर्श पर किसी ज्योतिर्मय प्रेरणा स्तंभ के रूप में अडिग खड़ी भारत की इस पहली महिला फोटो पत्रकार होमी व्यारावाला को हमारा शत शत नमन।
3: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अब आपकी मित्र विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
4: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
5: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम।

0: चांदनी चौक टू चाइना, ये था फिल्म का नाम। शंकर महादेवन श्रेया घोषाल की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। रजत अरोड़ा ने इसे लिखा, शंकर एहसान लॉय का संगीत।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
2: मैं निकला ओ गड्डी ले
1: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
1: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेह।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।

0: शंकर महादेवन की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे लक बाय चांस फिल्म का नाम, जावेद अख्तर ने इसे लिखा, शंकर एहसान लॉय का संगीत।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का।
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।

अमित त्रिवेदी की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे अंधाधुन फिल्म का नाम जयदीप साहनी ने इसे लिखा अमित त्रिवेदी का संगीत इसके साथ ही ये प्रोग्राम यादों की महफिल यहीं संपन्न होता है।

नमस्कार श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। प्रोग्राम है सुरीला सफर और मैं आज सफर में आपके साथ हूँ अनुराधा उपाध्याय। जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम एक इबारत या टेक्स्ट हमारे फेसबुक पेज पर पोस्ट करते हैं, जिनमें छुपे होते हैं कुछ शब्द जो आपको पहचानने हैं और बताना है कि उन शब्दों से कौन से गीत आज इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। तो ये पोस्ट इबारत हम ऑलरेडी पोस्ट कर चुके हैं और आपके मैसेजेस हम तक पहुंच चुके हैं, प्यार भरे संदेश हम तक पहुंच चुके हैं। तो देखते हैं कि कौन कौन से शब्द आपने चुने हैं, कौन से गीतों की लिस्ट बनाई है और वो गीत हमारे लिस्ट से मैच करते हैं कि नहीं मैच करते हैं। और साथ ही अगर नहीं भी मेल खाते तो भी आप

वहां पर अपने पसंदीदा गीत इन शब्दों से चुने हुए लिख सकते हैं। हो सकता है हम इस प्रोग्राम में उन्हें शामिल कर लें। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज के इस प्रोग्राम की बिना देरी के, लेकिन एक बार इबारत फिर से पढ़ देते हैं ताकि जिन लोगों ने लेट ट्यून इन किया है, हमारे साथ लेट जुड़े हैं, वो भी अपने संदेश हम तक पहुंचा सके। इबारत कुछ इस प्रकार है, तुम्हारे लिए इन पलकों पर मैंने ख्वाब शाम से सजाए हैं, मेरे मन को छूकर तुमने अरमान जगाए हैं, खिले गुंचे हवाओं में खुशबू सी है, गा रही ये जमी मौसम के इशारे हैं, सोचती हूँ कह दूँ या चुप रहूँ, दिल की बात जुबां तक लाऊँ या नहीं, तुम सामने हो तो लगता है इससे खूबसूरत कोई पल है ही नहीं। तुम मुस्कुराता हुआ चांद मेरा, मेरी एक मुस्कान के आगे, तेरी एक मुस्कान के आगे फीका लगे ये संसार सारा। जी हाँ, ये थी इबारत। और चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस प्रोग्राम की इस गीत के साथ। साथ ही साथ आपके संदेश हम तक पहुंच गए हैं, वो हम लेते हैं इस गीत के बाद।

किशोर कुमार की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। लहू के दुरंग फिल्म का नाम, फारूक कैसर ने इसे लिखा और बप्पी लहरी का संगीत, और मुस्कुराते हुए हमने आज के इस प्रोग्राम का आगाज किया। आपके संदेश भी मुझ तक पहुंच चुके हैं और खासकर इस मुस्कुराते हुए गीत के लिए बहुत से मैसेजेस आए हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज सुरीले सफर में महबूब और महबूबा की बातें होंगी, जहां एक दूसरे का बखान करते नहीं थकते हैं। उनके चेहरे पर वो दिलकशी है कि एक मिनट भी वे एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते और एक दूसरे को निहारते हुए गुफ्तगू करते हैं। इसी बारे में कुछ कहा जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। हमारे एक और श्रोता कहते हैं कि बड़ी खूबसूरत इबारत है और इसमें प्रेमी मन की उस उधेड़ बुन और समर्पण को दर्शाया गया है। जहां एक तरफ आंखों में सजे ख्वाब और दिल में जगते अरमान है, तो दूसरी तरफ ये संकोच भी है कि दिल की बात जुबां पर लाऊं या नहीं। हमारी एक श्रोता कहती है कि ये जो प्यार का एहसास है, उसे महसूस करते हुए उस सुंदर पल की याद में वो खो गई हैं और प्यारी सी मुस्कान के आगे सब कुछ फीका पड़ जाता है। बिल्कुल। एक और श्रोता कहते हैं कि इससे खूबसूरत पल और कोई हो ही नहीं सकता कि मुस्कुराते हुए चांद को सामने देखना। अब वो चांद आसमान में है या फिर आपके सामने बैठा है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। हमारे श्रोता कहते हैं कि आज की इबारत में कुछ ऐसा ही मीठी सी मोहब्बत और खूबसूरत एहसासों से भरा हुआ है, कुछ ऐसा लगता है जहाँ पर ख्वाब भी हैं जो ख्वाब जगा देते हैं। जी हाँ, एक श्रोता ने कुछ बहुत ही खूबसूरत पंक्तियाँ लिखकर भेजी है कि पलकों पर कुछ शामें ठहरी थी, उनमें तुम्हारे आने की खुशबू थी, तुम आए तो हवा ने धीरे से करवट ली और मौसम ने जैसे कोई राज कह दिया।

बहुत बहुत शुक्रिया इस प्यारे से संदेश के लिए। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि ये कविता रूपी इबारत जो है प्रेम के आरंभिक एहसास, मौन आकर्षण और प्रियतम के प्रति संपूर्ण समर्पण की कोमल अभिव्यक्ति है। और उन्होंने बहुत से गीत भी लिखे हैं जो उन्हें लगता है कि ये जरूर आज प्ले होंगे। देखते हैं। तो आप लोग समझ तो गए होंगे कि आज की ये जो इबारत है इसमें कहीं ना कहीं मुस्कान, मुस्कुराहट और किसी की खुशबू है। जी हाँ, और हम किसी और की मुस्कुराहट के पीछे तो मरते ही हैं, लेकिन साथ ही ये भी है कि आपका अपना चेहरा जो मुस्कुराता है, खिलता है, वो हर किसी को अच्छा लगता है। तो क्यों ना इसके बारे में बात की जाए कि ये जो हंसता मुस्कुराता चेहरा है, वो जो मन को लुभाता है, उसके लिए आप क्या करते हैं? अपने मुस्कान के लिए, अपने चेहरे के लिए क्या करते हैं इस खुशी को बरकरार रखने के लिए? मुझसे साझा कीजिए अपने संदेश और बहुत अच्छा लगेगा उन संदेशों को पढ़कर। फिलहाल चलते हैं अगले गीत की तरफ।

लता मंगेशकर की आवाज़ में गीत अभी आप सुन रहे थे हरजाई फिल्म से, निदा फासली ने इसे लिखा और आर डी बर्मन का संगीत। प्यारे प्यारे संदेश हम तक पहुंच चुके हैं, उनमें से एक संदेश जो है हमारे श्रोता लिखते हैं कि उनकी धर्म पत्नी ने कहा सुबह उनसे कि आपके लिए इन पलकों पर मैंने ख्वाब सजाए हैं, कल शाम से सजाए हैं, और उन्होंने पूछा क्यों, तो जवाब आया कि गणपति बप्पा आने वाले हैं, पधारने वाले हैं, तो उसकी तैयारी करनी है, और ये अपनी अदरक इलायची वाली चाय का आनंद लेते हुए, साथ ही थोड़ा बहुत साफ़ सफाई का कार्यक्रम जारी रखते हुए इस वक्त हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे श्रोता लिखते हैं कि प्यार और विश्वास जीवन में बना रहना चाहिए ताकि मिठास बनी रहे, जिसके आने के एहसास से ही मन में उमंगे उठने लगे, मन प्रफुल्लित हो जाए, तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल, हवाओं में घुली खुशबू, खिलती कलियां और मुस्कुराता मौसम सब तुम्हारे आने का ही इशारा है। तुम मेरा वो चमकता चांद हो जिसकी एक मुस्कान के आगे ये पूरा संसार फीका लगता है। अरे वाह, आपने तो एक इबारत, नई इबारत ही लिख दी इन शब्दों को इस्तेमाल करते हुए, बहुत खूब। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि सकारात्मक सोच रखते हैं जिससे मन खुश होता है और फिर अपने आप ही चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट छाई रहती है। जी हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम पॉजिटिव सोच रखते हैं, सकारात्मक सोच रखते हैं, तो वो चेहरे पे भी दिखती है और हमारे लिए तन मन दोनों तरीके से बहुत अच्छी होती है। एक और श्रोता लिखते हैं कि मुस्कुराता हुआ और प्यार से भरा चेहरा केवल शारीरिक सुंदरता का प्रतीक नहीं होता, बल्कि ये इंसान के भीतरी सौंदर्य, करुणा और ऊर्जा का आईना होता है। साहित्य में चेहरे की मुस्कान और आंखों में छिपे प्यार को ईश्वर का सबसे खूबसूरत वरदान माना गया है, जो बिना कुछ बोले भी सामने वाले का दिल जीत लेता है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि मुस्कुराता हुआ और प्यार से भरा चेहरा एक ऐसा शस्त्र है जो नफरत की आंधियों को शांत कर सकता है। ये इंसानियत की सबसे खूबसूरत अभिव्यक्ति है और आज के तनावपूर्ण युग में जहां हर कोई किसी न किसी दौड़ में व्यस्त है, ऐसे में चेहरा ईश्वर के साक्षात आशीर्वाद की तरह है जो हमें याद दिलाता है कि जीवन का अंतिम उद्देश्य प्रेम और आनंद ही है। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत संदेश ये, और साथ ही साथ सकारात्मक सोच तो है ही जो हम अपने आप को खुश करने के लिए रखते हैं, स्वस्थ रखने के लिए रखते हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो आपको पसंद आती है, जो आपके चेहरे पर मुस्कान ले आती है। या समझो कि हम कई बार कुछ अच्छा गाना सुन रहे होते हैं, वो गाना सुनते सुनते कहीं ना कहीं होठों पर खिली मुस्कान एकदम आँखों की चमक बन जाती है। तो ऐसी कोई बातें, या हाल फिलहाल आप कहीं घूम के आए हों जिसने आपको रिफ़्रेश कर दिया हो, इस तरह के अनुभव भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं। फिलहाल आपको सुनवाती हूँ ये अगला गीत, और साथ ही साथ इस गीत के अभिनेता, यानी कि ये गीत कौन से अभिनेता पर फिल्माया गया है ये भी मुझे बताएं।

तराना फिल्म से ये गीत शैलेंद्र सिंह की आवाज में अभी आप सुन रहे थे। रविंद्र रावल ने इसे लिखा और राम लक्ष्मण का संगीत। सवाल जो हमने आपसे पूछा था कि ये कौन से अभिनेता पे फिल्माया गया है, जी हाँ बिल्कुल, मिथुन चक्रवर्ती पर ये फिल्माया गया है और बहुत से सही जवाब हमें मिले हैं, साथ ही आपके संदेश मिले हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि 6 गीतों की इबारत में से चौथे नंबर पर लिखा ये गीत शामिल हुआ है और उन्हें अच्छा लग रहा है। जी हाँ धन्यवाद। गुंजे लगे हैं कहने, गीत बहुत ही प्यारा है, हमने सोचा था लिखेंगे पर भूल गए, कोई बात नहीं ये गीत शामिल हो चुका है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि जिंदगी में किसी भी वजह से चेहरे पर मुस्कान आए, दिल को सुकून मिले और रिश्तों में प्यार बना रहे, नफरतें तो बहुत है दुनिया में, हम क्यों ना थोड़ा सा प्यार बांटें। जी हाँ बिल्कुल।

साथी श्रोता लिखते हैं कि दिल की बात कहें या ना कहें, ये हमेशा एक असमंजस छाया रहता है, क्योंकि कहने से कई बार रिश्ते खराब भी हो जाते हैं और कहने से कई बार वो रिश्ते पार भी हो जाते हैं। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन शब्दों का

0: चुनाव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऐसे में। और आप किन से बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, ये सब सोचते हुए उसके बाद अगर कहा जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कहते हैं ना कि शब्द एक बार कहे जाए तो फिर वापस नहीं लिए जाते हैं। हमारे एक श्रोता ने बहुत ही खूबसूरत पंक्तियां लिख के भेजी है कि तुम्हारे साथ बारिश में भीग जाने का ख्वाब कब से मन में है, तुम समझ सको तो मेरे मौन को समझ लो, तुम्हारी हथेली पर ठहरी बूंदों में से कोई अनकही कहानी पढ़ूं और तुम मेरे मौन को बिना कहे समझ लो। जी हाँ, ये चंद पंक्तियां मैंने पढ़ी है क्योंकि ये एक तरह की इबारत ही लिख डाली है इन्होंने, और मैं चाहूंगी आप अपने अनुभव साझा करें क्योंकि वो अनुभव पढ़ने में ज्यादा मजा आएगा और ज्यादा अच्छा लगेगा सबको जानकर। आप सुन रहे हैं मेरे साथ सुरीला सफर।
1: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियां।
2: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
3: क्या बात है।
2: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
1: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
2: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी अपनी कथा।
1: वो हैं मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सुरीला सफर, मेरे यानी अनुराधा के संग।

अमित कुमार की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे तेरी कसम फिल्म से। आनंद बख्शी ने इसे लिखा आरडी बर्मन की तर्ज। हमारे श्रोता लिखते हैं कि चेहरे पर मुस्कान आती है गीत संगीत से और एक शांति और सुकून मिलता है उन्हें अपने पसंद के गीत सुनकर, और पसंदीदा गीत बज जाएं अपने आप तो फिर क्या कहने। इस प्रोग्राम में कुछ गीत जैसे कि तराना का गीत एक अरसे के बाद वो सुन रही हैं और इसीलिए उन्हें अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता लिखते हैं कि पसंदीदा गानों को वो लगातार दिन भर सुन सकते हैं। जी हाँ, म्यूज़िक म्यूज़िक एक थेरेपी है और जो हम अपने मन को प्रफुल्लित करने के लिए सुन सकते हैं हमेशा। और एक बहुत अच्छी बात है कि म्यूज़िक सुनते सुनते, संगीत सुनते सुनते हम बाकी के काम भी कर सकते हैं, हमारे बाकी काम नहीं रुकते हैं बिल्कुल भी। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि जब पंछी आकर पानी पीते हैं एक एक करके और उन्हें वो निहारते हैं, देखते हैं, तो उनके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है ये देखते हुए, और ऐसा महसूस होता है कि ईश्वर हमें देख रहे हैं और ये पंछी भी कुछ बोल तो नहीं पा रहे लेकिन ज़रूर राहत महसूस कर रहे हैं। जी हाँ, एक और श्रोता लिखते हैं कि धुंध और कोहरे से भरी हुई ये पर्वत घाटियों में गूंजता ये सुंदर गीत उन्हें बहुत पसंद आया है। साथ ही एक और श्रोता लिखते हैं कि हमारी मुस्कान हमारे लिए एक फ़ायदे का सौदा होती है, इसके ज़रिए दुनिया जीती जा सकती है। और उन्होंने काफ़ी साल एक डाक विभाग में गुजारे हैं, सरकारी विभाग में, और वहाँ पर उनकी मुस्कान उनका शस्त्र हुआ करती थी। गुस्से भरे शख्स को भी वो इस हथियार के सहारे शांत किया करते थे। और एक बार किसी ने उनके सामने पैसों का बंडल डाला डिपॉजिट करने के लिए, तो उन्होंने डायलॉग मार दिया एक फिल्म का कि आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता हूँ, और वो चौंक गए और बस खिलखिला उठा सारा समाज जो था। जी हाँ बिल्कुल, तो मुस्कुराता हुआ चेहरा हर किसी को अच्छा लगता है, बिल्कुल सही कहा आपने। और कुछ गीत हमारे चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं, जैसे कि ये अगला गीत। बढ़ते हैं आगे इस प्रोग्राम में।

ये सुधास की आवाज़ में गीत अभी आप सुन रहे थे, कैफी आजमी ने इसे लिखा, बप्पी लहरी का संगीत और टूटे खिलौने फिल्म का नाम। आपको बता दें कि इसी प्रोग्राम में कुछ देर पहले जो आपने गीत सुना तराना फिल्म से, गुंचे लगे हैं कहने, शैलेंद्र सिंह की आवाज़ में ये गीत, और इसे लिखा तिलक राज थापर ने और संगीत राम लक्ष्मण का। आपके संदेशों पर आते हैं, और जब मुस्कुराते हुए चेहरे की बात आती है तो आपके संदेश भी मुस्कुरा रहे हैं ऐसा मुझे लग रहा है पढ़ते हुए। और हमारे एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि आज सुरीला सफ़र के गीत मुझे उम्र के उस पड़ाव पर अतीत की खूबसूरत यादों में ले गए और होठों पर बरबस ही मुस्कान आ गई। धन्यवाद विविध भारती। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। हमारे श्रोता लिखते हैं, अपना अनुभव साझा करते हैं कि पिछले महीने अगस्त में वो जम्मू कश्मीर बाबा अमरनाथ जी, माता वैष्णो देवी, गोल्डन टेंपल अमृतसर के दर्शन करने गए थे और साथ में श्रीनगर भी घूमने गए थे, और ये कहीं ना कहीं उन्हें रिफ्रेश कर गया, आनंदित कर गया। जी हाँ, घूमना, बीच बीच में वक्त निकालना अपने लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक और श्रोता लिखते हैं कि सारे गाने हमारे जवानी के दिनों यानी कि कॉलेज के ज़माने के सुनाए जा रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है और ऐसा लग रहा है मानो जवानी लौट आई है। जी हाँ, इन गीतों के साथ कुछ ऐसा ही होता है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि मुस्कुराने की वजह तुम हो विविध भारती। इस परिवार यानी कि विविध भारती परिवार से जो सुकून मिलता है, मानो दिल में किसी ने मरहम लगा दिया हो और गीत बजा दिया हो। जी हाँ बिल्कुल, हम चाहेंगे कि मरहम लगाने की जरूरत ना पड़े, लेकिन हाँ आपके दिल को आनंदित जरूर करते रहें। एक और श्रोता लिखते हैं कि चेहरे अगर हंसमुख होते हैं तो उन्हें देखते ही बस उनसे बात करने का जी चाहता है, किसी न किसी बहाने बस उनसे बात हो जाए तो दिल बाग बाग हो जाता है। ऐसे हमारे साथ दिल्ली में हुआ एक ऑफिस में, और एक सेक्रेटरी थी, उन्हें देख के, उनका चेहरा देखकर अभी तक नहीं भूले हैं वो, और बस बहुत ही हंसमुख थी और उनका वो चेहरा दिल में उतर आया था। जी हाँ, तभी तो कहा जाता है हंसता हुआ नूरानी चेहरा। आप अपने नूरानी चेहरे को हंसते हुए रखने के लिए, मन को झूमता हुआ रखने के लिए क्या करते हैं? इसके अलावा कौन सी आदतें हैं जो आपने अपनाई है अभी रिसेंटली, जिससे कहीं ना कहीं दिल प्रफुल्लित हो जाता है, वो ज़रूर लिखकर भेजिए। फिलहाल हम चलते हैं अपने अगले गीत की तरफ।

0: याराना फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे, किशोर कुमार की आवाज में राजेश रोशन का संगीत। हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत बहुत ही आसान थी, बहुत जल्दी उन्होंने गीतों की लिस्ट बना ली, फहरिस्त बना ली, लेकिन अभी अभी वो बस किसी काम से खाली हुए हैं, खाना खाने का काम कर रहे थे और अभी किसी और काम की तरफ बढ़ना है। जो उन्होंने लिखा है वो मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि खाना खाने के बाद गीत सुनते हुए अब किसी और काम की तरफ बढ़ेंगे। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि ये 1 घंटा यानी कि 60 मिनट VBS टीम के साथ हैं, इस प्रोग्राम में हमारे साथ हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और श्रोता लिखते हैं कि संबंध बनाना यानी कि रिश्तेदारी निभाना बहुत ही रिश्तेदार रखना होता ज़रूर है, क्योंकि हमारे साथ रिश्तेदार जुड़े होते हैं, परिवार वाले लोग जुड़े होते हैं, लेकिन इस रिश्ते का निर्वाह करना आसान नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं कभी किसी को कुछ बुरा लग जाए या किसी को कैसे प्रसन्न किया जाए, इसमें कहीं ना कहीं असमंजस ज़रूर हो जाती है, क्योंकि ज़िंदगी में बहुत से पड़ाव आते हैं जब ऐसी चीज़ें होती है, तो ऐसे में बहुत समझदारी से हमें आगे बढ़ना चाहिए। जी हाँ बिल्कुल, जीवन का नाम बैलेंस बनाकर चलना है, ये बैलेंस जो है वो ज़रूर रहना चाहिए। और एक और श्रोता हमारे जिन्होंने कुछ पंक्तियाँ लिखकर भेजी है, तुम दो कदम दो साथ अगर आसान हो जाए सफ़र, छोड़ो भी ये दुनिया का डर, तोड़ो ना दिल इनकार से, देखो कभी तो प्यार होता है। कुछ कुछ उन्होंने लिखा है, हालांकि अच्छा लिखा है, दिल से लिखा है, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। छूकर मेरे मन को, इस गीत की प्रतीक्षा कब से थी और अब जाकर ये गीत आया है, ऐसा 2 से 3 श्रोताओं ने लिखा है जिन्हें इस गीत का इंतजार था, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियां।
2: MA कर रही थी तब...

0: भूषण जी ने कहे, ऐसे ऐसे ख्याल आए, तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी अपनी
1: बिल्कुल.
0: कथा।
2: वो है मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सुरीला सफर, मेरे यानी अनुराधा के संग।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में गीत अभी आप सुन रहे थे हम किसी से कम नहीं फिल्म से आर डी बर्मन की तर्ज। हमारे श्रोता लिखते हैं कि हंसता हुआ चेहरा किसी अच्छा नहीं लगता, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हमें उस शख्स की मुस्कान सबसे अच्छी लगती है जो बिना किसी स्वार्थ छल या दिखावे के अपने दिल से मुस्कुराता है। जी हाँ, और ये मुस्कान दुनिया की सबसे खूबसूरत मुस्कान होती है। छोटे बच्चे की मुस्कान भी हमारा मन मोह लेती है, और वो भी बड़ी मासूम और किसी स्वार्थ के परे होती है। बिल्कुल सच कहा आपने। बहुत से श्रोताओं ने लिखा है कि उनके बहुत सी गीतों की फहरिस्त पूरी हुई है, और प्रेम की कोमल अभिव्यक्ति से बंधी ये जो इबारत है, इसमें बहुत से गीत आसान थे गेस करने बताने, लेकिन सुनने में उतना ही मजा आया है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि प्यार इंसान के भीतर दया, धैर्य और संवेदनाशील को जगाता है, जिससे वो जिंदगी को और सकारात्मक नजरिए से देखने लगते हैं। जी हाँ, सकारात्मक दृष्टिकोण होना बहुत ज्यादा

0: जरूरी है, और प्यार जिंदगी का वो हसीन एहसास है जो किसी के करीब होने से ज्यादा उसके ख्याल मात्र से चेहरे पर मुस्कान ले आता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके संदेश पढ़कर इस वक्त हमारे चेहरे पर मुस्कान खिल गई है।
1: कह दूं तुम्हें
2: हाँ
1: या चुप रहूं,
2: ना
1: दिल में मेरे आज क्या है
2: क्या है।

फिलहाल सोच से परे ये गीत हम आपको इतना ही सुनवा पाएंगे, और इस गीत के साथ ही इजाज़त चाहते हैं। आज का सुरीला सफ़र आप सुन रहे थे अनुराधा के संग।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। वंदे मातरम इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनिस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रिकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए इस श्रृंखला की 45वीं कड़ी।

0: वंदे मातरम और उसकी राजनीतिक पृष्ठभूमि को लेकर जब विवाद खड़ा हो रहा था, उसी समय वंदे मातरम के संदर्भ में एक असाधारण घटना भारत के बाहर घटी। वो ऐतिहासिक घटना आज भी इतिहास की दृष्टि से बहुत कम लोगों को पता है, और इस घटना के शिल्पकार थे महाराष्ट्र के कुछ देशभक्त खिलाड़ी। ये घटना राजनीतिक क्षेत्र में नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय खेल जगत में घटी। ১৯৩৬ में जर्मनी के बर्लिन में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था।
1: Like a modern Caesar, he stands on the balcony to receive the salutes of the athletes of 50 nations.
0: उस प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में प्रदर्शन के लिए अमरावती के हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल नामक संस्था के कसरतबाजों को आमंत्रित किया गया था। उस कार्यक्रम में उन्होंने भारतीय व्यायाम पद्धति, योग तथा शारीरिक शिक्षा के प्रदर्शन प्रस्तुत किए। इस अवसर पर ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह के समय हुए मार्च पास्ट में भारतीय दल ने अपना ध्वज फहराते समय यूनियन जैक के बजाय तिरंगा ध्वज फहराया था। इतना ही नहीं बल्कि ओलंपिक खेलों के निमित्त हुए कार्यक्रम में भारत के राष्ट्र गीत के रूप में वंदे मातरम गीत गाया था। इस दल का नेतृत्व प्रखर राष्ट्रभक्त डॉक्टर सिद्धनाथ काणे ने किया था।

हमारा देश पराधीनता में था, तब विदेश में इन खिलाड़ियों ने अपने तिरंगे झंडे और वंदे मातरम के माध्यम से भारतीयों के स्वतंत्रता आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबके सामने उजागर किया। वंदे मातरम के कारण देशभक्ति की भावना सामान्य नागरिकों की तरह ही कलाकारों और खिलाड़ियों में भी पैदा हुई थी। स्वतंत्रता आंदोलन में अप्रत्यक्ष रूप से योगदान देने वाले और आज भी व्यायाम के प्रसार का काम निष्ठा से चला रहे 110 साल पुराने हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल ने आज भी वंदे मातरम गायन की परंपरा को आदर के साथ आगे जारी रखा है। ये है हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के संगीत शिक्षक श्री इंगले द्वारा संगीतबद्ध किया हुआ वंदे मातरम।

0: वंदे मातरम गीत के बाद के अंतरों पर आपत्ति जताई गई थी, फिर भी वंदे मातरम शब्द या उसके उद्घोष का किसी ने भी विरोध नहीं किया था। 1941 में मुंबई से गुजराती भाषा में वंदे मातरम नाम का अखबार निकलने लगा तो 1942 के चले जाओ या भारत छोड़ो आंदोलन में तो इस नारे ने आंदोलनकारियों के मन में सबसे सम्मानित स्थान प्राप्त कर लिया।
1: दूसरे विश्व युद्ध के बादल छाए हुए थे, तब भी आर्थिक मंदी में फंसे अंग्रेजों को भारतीय सेना की मदद तो चाहिए थी, पर उसके बदले स्वतंत्रता देने के लिए वे अनुकूल नहीं थे। चर्चिल जैसा ब्रिटिश प्रधानमंत्री समय समय पर भारत और यहाँ के पूजनीय नेताओं का उल्लेख अपमानजनक तरीके से करता था। इस आंदोलन के दौरान होने वाली हर सभा में वंदे मातरम के नारे सागर की लहरों की तरह उमड़ते थे। अंग्रेजों की गोलीबारी, आंदोलनकारियों की बड़े पैमाने पर धरपकड़, लाठीचार्ज जैसे अंग्रेजों के आतंक के हथकंडे जारी थे। चौथी मद्रास कोस्टल डिफेंस इन्फेंट्री की एक टुकड़ी, जो ब्रिटिश शासित भारतीय सेना की एक टुकड़ी थी, इस टुकड़ी के अंग्रेजों के खिलाफ तोड़फोड़ की योजना में शामिल होने की गुप्त रिपोर्ट वरिष्ठ अधिकारियों के हाथ लगी। उस समय दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। सैन्य पुलिस ने लगभग 10-12 विद्रोहियों को दिनांक 18 अप्रैल 1943 को पकड़कर सैन्य अदालत के सामने खड़ा किया। 6 जुलाई और 5 अगस्त 1943 को बेंगलोर के सेंट एंड्रयूज चर्च में इन आरोपियों की जांच हुई और 9 बंगाली युवा सैनिकों को फांसी दे दी गई। मद्रास की जेल में फांसी के फंदे में गर्दन डालने से पहले उन्होंने वंदे मातरम कहते हुए मातृभूमि का जय जयकार किया। 27 सितंबर को 21 से 25 वर्ष की आयु के ये 9 युवा शहीद हो गए।

1942 के इस काल में महात्मा जी के नेतृत्व में सारा भारत इस अंतिम लड़ाई को मन ही मन निश्चय कर करेंगे या मरेंगे की भावना से स्वतंत्रता संग्राम में उतर पड़ा था। इसी दौरान अंग्रेजों की नजरबंदी में रह रहे सुभाष चंद्र बोस भेष बदलकर भारत से बाहर निकल गए। 1937 में वंदे मातरम के संबंध में कांग्रेस ने एक समिति स्थापित की थी। मुसलमानों की

0: पत्तियों के कारण वंदे मातरम की काट छांट को इस समिति ने मान्यता दी। बाद के समय में सुभाष चंद्र मन से भी कांग्रेस से दूर चले गए।
1: भारत से बाहर निकलने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की धुरा संभाली। सुभाष चंद्र और आजाद हिंद फौज के कारनामों ने अंग्रेजी सत्ता को हिलाकर रख दिया। आजाद हिंद फौज का कदम कदम बढ़ाए जा गीत बहुत प्रसिद्ध हुआ, लेकिन वंदे मातरम का स्थान कायम रहा। इससे पहले हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, अनुशीलन समिति और गदर पार्टी जैसी क्रांतिकारियों की संस्थाओं ने वंदे मातरम शब्द का ही समर्थन किया था। नेताजी सुभाष चंद्र की भी वंदे मातरम पर अपार श्रद्धा थी।
0: आजाद हिंद फौज की स्थापना के बाद सिंगापुर रेडियो से सुभाष चंद्र द्वारा किए गए भाषण के बाद वंदे मातरम की ध्वनि मुद्रिका प्रसारित की गई। आगे चलकर यही संगीत रचना आजाद हिंद फौज में मार्चिंग सॉन्ग के रूप में इस्तेमाल की गई। इस संगीत रचना के रचनाकार थे तिमिर बरन भट्टाचार्य।

0: भारतीय बोलती फिल्मों के शुरुआती दौर में शास्त्रीय संगीत के कई बुजुर्ग फिल्मों की ओर मुड़े। न्यू थिएटर्स के प्रसिद्ध संगीतकारों में से एक तिमिर बरन भट्टाचार्य थे। तिमिर बरन भारत के पहले गिने चुने शास्त्रीय वादन करने वाले सरोद वादकों में से थे। शास्त्रीय वाद्य संगीत में उस्ताद अलाउद्दीन खां साहब से उन्होंने सरोद वादन की शिक्षा ली थी।
1: देवदास इस कुंदन लाल सहगल अभिनीत फिल्म के उनके द्वारा दिए गए संगीत को लोकप्रियता मिलने के बावजूद वे फिल्मी दुनिया में नहीं रमे। बैले जैसे समूह नृत्य के लिए, नृत्य नाटिकाओं के लिए उन्होंने अलग अलग प्रयोग किए। सिंफनी और पॉलीफोनी जैसे प्रकार हमारे शास्त्रीय संगीत में तो नहीं है। वे स्वयं शास्त्रीय संगीत के ज्ञाता होने के कारण भारतीय राग रागिनियों को सिंफनी की तरह कैसे संयोजित किया जा सकता है, इस दिशा में उन्होंने प्रयोग शुरू किए।

वंदे मातरम की उनके द्वारा बनाई गई रचना को उनकी सर्वोत्कृष्ट रचना माना जा सकता है, क्योंकि उनके द्वारा किए गए सभी संगीत प्रयोगों का उत्कर्ष बिंदु इस रचना में साधा गया है। दुर्गा राग में बंधी ये संगीत रचना बंगाल के प्रसिद्ध रविंद्र संगीत से अलग है। वंदे मातरम को संगीत देने वाले शुरुआती दौर के संगीतकारों में से अधिकांश बंगाल या महाराष्ट्र के ही संगीत विशेषज्ञ थे। रविंद्रनाथ की संगीत रचना बंगाल में लोकप्रिय थी ही, फिर भी उससे अलग अधिक जोशीली और मार्चिंग सॉन्ग के लायक तालबद्ध संगीत रचना तिमिर बरन ने की। वंदे मातरम की उपलब्ध संगीत रचनाओं में से सर्वोत्तम संगीत रचनाओं में एक ये रचना है।

0: नेताजी सुभाष चंद्र ने आजाद हिंद फौज के रूप में अंग्रेजों के विरुद्ध व्यापक सशस्त्र लड़ाई खड़ी की। अंग्रेजों को दी गई वो सबसे बड़ी सशस्त्र चुनौती थी। दुर्भाग्य से नेताजी की विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई। प्राकृतिक आपदा के कारण चलो दिल्ली का नारा देते हुए दिल्ली की ओर कूच करने वाली आजाद हिंद फौज को भारत की पूर्वी सीमा के पास पीछे हटना पड़ा। आजाद हिंद फौज को मिले जनता के अपार समर्थन के कारण अंग्रेजों को इन सैनिकों को दी गई सजाएं रद्द करनी पड़ी।
1: आसेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भ्रम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम।

आप सुन रहे थे वंदे मातरम एक जय घोष, इस लघु रूपक श्रृंखला की 45वीं कड़ी। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनिस, अनुवाद संकलन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रिकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचक स्वर जयंत पात्रिकर और ममता सिंह, तकनीकी सहयोग किरण बंग और अनुश्री गुप्ता, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जताई कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में वैश्विक कल्याण की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए सकारात्मक चर्चाएं होंगी। विश्व के नेता कल से शुरू होने वाले सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ब्रिक्स व्यापार मंच की बैठक नई दिल्ली में शुरू। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने बढ़ती वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच अधिक लचीलेपन, स्थिरता और सहयोग का आह्वान किया। अमेरिका में 11 सितंबर के आतंकी हमले की 25वीं बरसी पर भारत ने आतंकवाद से लड़ने के अपने अटूट संकल्प को दोहराया। चीन में जूनियर एशिया कप हॉकी के सेमीफाइनल में आज भारत का मुकाबला मलेशिया से होगा और अमेरिकी ओपन टेनिस महिला सिंगल्स के खिताबी मुकाबले में आरेना सबालिंका का मुकाबला एलेना रायबकीना से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विश्व के नेता कल से शुरू होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली में एकत्र हो रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि सम्मेलन में विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक और सार्थक चर्चा होगी और इसका मार्गदर्शक उद्देश्य विश्व कल्याण होगा। एक रिपोर्ट।
1: भारत मंडपम में आयोजित होने वाले दो दिवसीय शिखर सम्मेलन में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, भारत, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात सहित 11 प्रमुख उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं एक साथ आएंगी। इस वर्ष ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन और अबुधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान सहित विश्व के कई बड़े नेता भाग लेंगे। इथियोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली भी इसमें शामिल होंगे। ब्राजील का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री माउरू वीएइरा करेंगे। सऊदी अरब के विदेश मंत्री युवराज फैसल बिन फरहान अल सऊद भी शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। ब्रिक्स सदस्य देशों के नेता भारत मंडपम में भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी भी देखेंगे। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज दोपहर नई दिल्ली में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
2: बैठक के दौरान यूक्रेन रूस संघर्ष पश्चिम

0: एशिया संकट, व्यापारिक संबंध और ऊर्जा सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। राष्ट्रपति पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए आज सुबह भारत पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन से भी बातचीत करेंगे। पश्चिम एशिया में मौजूदा हालात को देखते हुए ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश से भी मुलाकात करेंगे। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा और युगांडा की उपराष्ट्रपति जेसिका अलुपो भी सम्मेलन में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय मंत्री जयंत सिंह ने हवाई अड्डे पर दोनों नेताओं का स्वागत किया।
2: विदेश मंत्रालय ने बताया है कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच रणनीतिक साझेदारी पर आधारित मैत्रीपूर्ण और ऐतिहासिक संबंध हैं। भारत युगांडा संबंधों पर मंत्रालय ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझा इतिहास पर आधारित मैत्रीपूर्ण संबंध हैं और द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय क्षेत्रों में साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। इस बीच नाइजीरिया के विदेश मंत्री बियांका ओडुमेग्वू ओजुक्वू और उरुग्वे के विदेश मंत्री मारियो लुबिटकिन भी शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मांतुरोव से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सीतारामन ने कहा कि दोनों नेताओं ने आपसी हित के मुद्दों और व्यापार तथा निवेश संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वेइरा से का स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। इस दौरान व्यापार और निवेश, रक्षा, ऊर्जा, कृषि और अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर विचार विमर्श हुआ। डॉ. जयशंकर ने उरुग्वे के विदेश मंत्री मारियो लुबिटकिन से भी मुलाकात की। डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच व्यापार, संपर्क और संस्कृति सहित द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने पर सार्थक बातचीत हुई। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा है कि आज हर देश की आर्थिक रणनीति में आत्मनिर्भरता और संकट से उबरने की क्षमता महत्वपूर्ण हो गई है। साथ ही मजबूत सहयोग और साझेदारी के जरिए सतत विकास को बढ़ावा देना भी जरूरी है। नई दिल्ली में आज ब्रिक्स व्यापार मंच को संबोधित करते हुए डॉ. जयशंकर ने ये बात कही।
4: For BRICS particularly, higher economic activity.
5: विशेष रूप से ब्रिक्स के लिए उच्च आर्थिक गतिविधि और अधिक आर्थिक सुरक्षा का अर्थ है अधिक आत्मनिर्भरता। इसका उद्देश्य व्यवधानों को झेलने की हमारी क्षमता को मजबूत करना है, साथ ही आपस में जुड़े रहना और प्रतिस्पर्धी बने रहना भी है। इसके लिए वास्तविक बाजार प्रथाओं, विश्वसनीय लॉजिस्टिक्स, पूर्वानुमानित व्यावसायिक माहौल, विविध व्यावसायिक संबंधों तथा पारदर्शी व्यापार और निवेश की आवश्यकता
4: and transparent trade and investment.
1: डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स की विषय वस्तु लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण, इस विकास को आगे बढ़ाने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि वर्ष ब्रिक्स के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है क्योंकि समूह संस्थागत सहयोग के 20 वर्ष पूरे कर रहा है।
5: ब्रिक्स के लिए ये वर्ष एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है क्योंकि हम संस्थागत ब्रिक्स सहयोग के 20 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहे हैं। इस अवधि में ब्रिक्स ने अपनी सदस्यता, उद्देश्य और सहयोग ढांचे में काफी प्रगति की है। भारत की अध्यक्षता में इस विकास को आगे बढ़ाने का प्रयास जारी है।
1: मंच के उद्घाटन सत्र में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से अपनी आर्थिक शक्ति को लोगों के लिए रोजगार, संपदा और समृद्धि में बदलने के लिए मिलकर काम करने की अपील की।
6: BRICS today represents almost 1/4.
7: BRICS संगठन आज वैश्विक व्यापार के लगभग एक चौथाई हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है और भारत इसका एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। भारत में निर्मित अभियांत्रिकी में प्रयोग होने वाले साजो सामान और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भारत का निर्यात सर्वाधिक है। भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में भी जाना जाता है। हम ब्रिक्स को इन और अन्य

0: उत्पादों के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार के रूप में देखते हैं, जिन्हें भारत एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में दुनिया तक ले जाना चाहता है।
1: वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितेन प्रसाद ने कहा कि मंच की सफलता का आकलन अर्थव्यवस्थाओं के आकार से नहीं बल्कि ठोस परिणामों से होना चाहिए। ब्रिक्स संगठन वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक बड़ी शक्ति के रूप में लगातार उभर रहा है। हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
2: ब्रिक्स समूह में शामिल देश दुनिया की 49% से अधिक आबादी, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद की करीब 40% और लगभग 26% वैश्विक व्यापार का प्रतिनिधित्व करते हैं। ब्रिक्स देश एक दूसरे को लगभग 1,10,000 करोड़ डॉलर का सामान निर्यात करते हैं। भारत का ब्रिक्स देशों के साथ कुल वस्तु व्यापार 2020-21 में 203.1 अरब डॉलर से बढ़कर 2025-26 में 417.5 अरब डॉलर हो गया है। अनुपम के साथ अक्षित कुमार वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों ने शुल्क और गैर शुल्क बाधाओं सहित एकतरफा व्यापार और वित्तीय उपाय लागू किए जाने पर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि इससे व्यापार प्रभावित होता है और ये विश्व व्यापार संगठन के नियमों के अनुरूप नहीं है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में मुंबई में कल ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की अंतिम बैठक के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में ये बात कही गई। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में आज दोपहर 2 बजे से रात 8:30 बजे तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और नियंत्रित आवाजाही रहेगी। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे और सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहेंगी। दिल्ली मेट्रो ने आज बताया है कि ब्रिक्स सम्मेलन के कारण रविवार को सभी लाइनों पर मेट्रो सेवाएं सुबह 6 बजे शुरू हो जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आतंकवाद का खतरा लगातार बदल रहा है, लेकिन भारत का संकल्प इसके सभी रूपों के खिलाफ अडिग है। अमेरिका में 11 सितंबर के आतंकवादी हमले की 25वीं बरसी पर सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद ने दुनिया भर में अनगिनत लोगों की जान ली है। उन्होंने कहा कि सीमा पार आतंकवाद से प्रभावित भारत दशकों से इसके खिलाफ लड़ाई में आगे रहा है। प्रधानमंत्री ने हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी और उनके परिवारों के प्रति एकजुटता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ सभी प्रयासों में साथ खड़ा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज मुंबई में फास्टैग पोर्टेबिलिटी के लिए वन टैग सुविधा का शुभारंभ किया। इसके अंतर्गत वाहन मालिक अपने मौजूदा फास्टैग को राजमार्ग यात्रा ऐप द्वारा नए बैंक खाते से जोड़ सकते हैं। इस अवसर पर श्री गडकरी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य चालू वित्त वर्ष के अंत तक टोल प्लाजा पर प्रतीक्षा समय को 10 सेकंड से कम करना है। प्रवर्तन निदेशालय धोखाधड़ी या अनियमित ऋण के कथित मामलों की जांच के सिलसिले में कोलकाता, चेन्नई, बंगलुरु और हैदराबाद में तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय ओडिशा के एआरएसएस ग्रुप के आयोजक, निदेशक, परिवार के सदस्यों और उनसे जुड़ी कंपनियों से संबंधित स्थानों पर कार्रवाई कर रहा है। बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार राज्य के 14 जिलों में 44 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित क्षेत्र में राहत कार्य लगातार जारी है।
3: बाढ़ प्रभावित इलाकों में 1,046 सामुदायिक रसोई केंद्र चलाए जा रहे हैं। 1,942 नावों का परिचालन किया जा रहा है। वहीं 812 चिकित्सा शिविर लगाए गए हैं। जल संसाधन विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में प्रमुख नदियों के जलस्तर में कमी आई है। हालांकि अब भी 8 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गंगा का जलस्तर पटना, मुंगेर, भागलपुर और कहलगांव में, जबकि कोसी का जलस्तर खगड़िया के बलतारा और कुर्सेला में खतरे के निशान से ऊपर है। पटना के पालपुर में पुनपुन नदी का जलस्तर हर घंटे करीब 2 सेंटीमीटर घट रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
1: मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश के तटीय भाग और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, झारखंड, केरला, माहे, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और गुजरात में भी अगले 2 दिन तक तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: आपको हर खबर से रखे अपडेट, expert@AIRNews हिंदी और पब्लिक पर @AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: ये आकाशवाणी है। अमरीकी ओपन टेनिस

0: में दूसरे महिला सिंगल्स के दूसरे सेमीफाइनल में एलेना रायबकीना ने गोगो गॉफ को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। अब खिताबी मुकाबले में कजाकिस्तान की रायबकीना का मुकाबला मौजूदा चैंपियन और आर्यना सबालेंका से होगा। इससे पहले बेलारूस की आर्यना सबालेंका ने पहले सेमीफाइनल में अमरीका की जेसिका पेगुला को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। जूनियर एशिया कप हॉकी के सेमीफाइनल में आज भारतीय पुरुष टीम और मलेशिया का मैच जारी है। दूसरे सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया का सामना पाकिस्तान से होगा। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच ब्रेंट क्रूड की कीमत आज चार महीने के उच्चतम स्तर $108.77 प्रति बैरल पर पहुंच गई। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 363 अंक गिरकर 74,540 जबकि निफ्टी 163 अंक गिरकर 23,315 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जताई कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में वैश्विक कल्याण की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए सकारात्मक चर्चाएं होंगी। विश्व के नेता कल से शुरू होने वाले सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ब्रिक्स व्यापार मंच की बैठक नई दिल्ली में शुरू। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने बढ़ती वैश्विक अनिश्चितता के बीच अधिक लचीलेपन, स्थिरता और सहयोग का आह्वान किया। अमेरिका में 11 सितंबर के आतंकी हमले की 25वीं बरसी पर भारत ने आतंकवाद से लड़ने के अपने अटूट संकल्प को दोहराया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये है विविध भारती, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

सुनना मगर ये किसी से न कहना, तिनके काले के सहारा न बहना, बिन मौसम मलहार न गाना, आधी रात को मत चिल्लाना वरना पकड़ लेगा पुलिस वाला।

0: लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में ये गीत आप सुन रहे थे, तीन देवियां फिल्म से, मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा, एस डी बर्मन की तर्ज।
1: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियां।
2: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
3: क्या बात है।
2: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
1: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास, वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण, वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
2: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए, तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
3: बिल्कुल।
1: वो हैं मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे।

0: तेरे घर के सामने, ये था फिल्म का नाम। मोहम्मद रफी की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे। हसरत जयपुरी ने इसे लिखा एसडी बर्मन की तर्ज।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
2: मैं निकला ओ गडले,
1: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
3: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
4: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
1: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
5: चिट्ठी ना कोई संदेह।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ

तुम्हें मिली एक अजनबी से कोई आगे न पीछे तुम ही कहो ये कोई बात है। एक लड़की भीगी भागी सी होती रातों में जागी सी मिली एक अजनबी से कोई आगे न पीछे तुम ही कहो ये कोई बात है।

0: चलती का नाम गाड़ी। इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा, एस डी बर्मन की तर्ज थी।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
2: मैं निकला ओ गडिले
1: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
1: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी ना कोई संदेह।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे विविध भारती से।

संगम फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में, शैलेंद्र ने इसे लिखा, शंकर जयकिशन की तर्ज।

0: लता मंगेशकर की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे जब जब फूल खिले। इस फिल्म से आनंद बख्शी ने इसे लिखा, कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम सदाबहार नगमे यहीं संपन्न होता है।
1: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियां।
2: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
3: क्या बात है।
2: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
1: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।

0: भूषण जी ने कहे, ऐसे ऐसे ख्याल आए, तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी अपनी
1: बिल्कुल,
0: कथा।
2: वो हैं मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

0: नमस्कार दोस्तों, जीवन में खुश रहना, प्रसन्न रहना, सेहत का ध्यान रखना कितना आवश्यक हो चला है, ये सब हम अच्छे से जानते हैं, समझते हैं। फिर भी घर के व्यस्त कामकाज में स्वयं का ध्यान रखना कहीं पीछे छूट जाता है एक महिला के लिए। लेकिन ये भी याद रहे कि हम सहेलियां ही तो परिवार की धुरी है ना। खुद के लिए थोड़ा सा टाइम निकालिए, समय निकालिए, थोड़ा वर्जिश कीजिए, और हाँ, मंगलवार के दिन हेलो सहेली कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग के लिए फोन कॉल्स कीजिए। तो बस अपनी सखियों से बात करने के लिए विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हूँ मैं, आपकी दोस्त सहेली दीपा माहेश्वरी। आज आपकी इस सखी से होंगी बातें। देखिए ना, फोन की घंटी भी बज उठी है। चलिए उठाते हैं आज का पहला कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: नमस्कार, बताइए किससे बात हो रही है हमारी?
1: मेरा नाम है आरती।
0: कहाँ से बात कर रही हैं आरती जी?
1: मैं हैदराबाद किशनबाग गुड़ा से बात कर रही हूँ।
0: हैदराबाद से? अरे वाह, क्या
1: हाँ।
0: बात है। बताइए कैसी हैं आप और क्या चल रहा है इन दिनों?
1: कुछ नहीं, सावन का महीना, वही पूजा व्रत वही चल रहे हैं।
0: हाँ हाँ।
1: और मुझे वेद भारती मतलब बहुत बचपन से मेरे नाना जी सुना करते थे पहले, उसके बाद फिर मेरे पापा मम्मी सब सुनते हैं, और मेरे बहने मेरे मम्मी पापा सब सुनते हैं, समझे मेरे घर से।
0: अच्छा,
1: हमारे नाना जी को अलग अलग रेडियो लाने के शौक थे, मेरे मम्मी बताती है अलग अलग रेडियो से वो लाते रहते थे हमेशा।
0: बिल्कुल, आपसे बात करके बहुत मजा आ रहा है। अब ये बताइए कौन से फिल्म का गीत सुनना चाहती हैं आप?
1: जय संतोषी माँ है फिल्म का नाम है, और करती हूँ तुम्हारा व्रत में गाने
0: जी
1: का बोल है।
0: जी बहुत सुंदर।
1: आपने मेरा कॉल लिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा मुझे बात करके वेद भारती से।
0: आरती जी
1: ये तो
0: आपने,
1: मेरा सौभाग्य है
0: जी
1: मुझे मिला जो आपका इसमें बात करने का।
0: आरती जी आपने समय निकाल करके कॉल किया, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और चलिए

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली दीदी, नमस्कार।
0: नमस्ते। बताइए कौन सी सहेली आज हमसे बात कर रही है?
1: पुष्पा देवी झांसी से बोल रहे हैं।
0: झांसी से। अरे वाह पुष्पा जी,
1: हाँ,
0: बताइए कैसी हैं आप
1: बढ़िया है दीदी।
0: जी? और क्या चल रहा है इन दिनों, और परिवार में कौन कौन है?
1: तो लड़के हैं, लड़की हैं, सास ससुर हैं, पति देव हैं।
0: अरे वाह, आप क्या करती हैं? भरा पूरा परिवार है ना?
1: हाँ, भरा पूरा परिवार है। हम फल की दुकान चलाते हैं दीदी।
0: आपकी ये फल की दुकान है, तो अलग अलग किस्से कहानियां भी तो मरीज के जो परिवारजन होते होंगे वहां पे खड़े होके बातें करते होंगे।
1: हर कोई सुनाता है, जब आते हैं हमारे फल की दुकान पे लेने के लिए तो सब कोई कोई अच्छी सुनाता है। कोई अपने दुखी ज्यादा रहते हैं यहाँ पर, दुख मतलब
0: जी
1: दुख
0: जी जी
1: ज्यादा वितरण करते हैं।
0: तो फिर आप क्या उन्हें कुछ प्रेरणा के दो शब्द कहती हैं कि सब ठीक हो जाएगा, इस तरह का कुछ कहती हैं आप?
1: हाँ, भगवान जी कहते कि दुआ करेंगे सब ठीक हो जाएगा,
0: बिल्कुल
1: आप
0: बिल्कुल
1: टेंशन नहीं लो। मतलब
0: जी। बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: हम सुनना चाहते हैं

तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का फिल्म कसूर का ये गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, नमस्ते। किससे बात हो रही है हमारी?
1: जी, मैं ज्योति प्रजापति बोल रही हूँ इंदौर से। जी
0: जी ज्योति जी, इंदौर से। बताइए कैसी हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ।
0: जी, और बताइए क्या चल रहा है इन दिनों? अभी तो त्योहारों के बिल्कुल मौसम जैसा आ गया है ना?
1: जी बच्चे हैं छोटे, एक
0: हाँ।
1: 6 साल का है, 3 का है।
0: तो मतलब दिन भर व्यस्तता तो आपकी रहती ही होगी, है ना?
1: जी
0: हाँ, क्योंकि छोटे बच्चों को उनका ध्यान
1: स्कूल
0: रखना।
1: जाते हैं।
0: जी बिल्कुल, स्कूल
1: जी
0: जा रहे हैं तो उनका टिफिन बनाना है, फिर घर वापस आ रहे
1: जी
0: हैं, तो तब भी बच्चों को कुछ ना कुछ नाश्ता, कुछ अलग अलग तरह की चीजें चाहिए होती हैं, है ना?
1: जी
0: जी,
1: हाँ,
0: तो बच्चे ट्यूशन जाते हैं या घर पर ही पढ़ते हैं बाद में, स्कूल से आने के बाद?
1: ट्यूशन जाता है एक बड़ा, एक नहीं जाता छोटा।
0: जी, तो यानी कि आपको तो समय ही नहीं मिलता होगा अपने लिए।
1: हाँ बहुत कम मिलता है
0: ऐसे में फिर रेडियो किस तरह सुन पाती हैं आप?
1: जी, सुन लेते हैं थोड़ा बहुत, ये सुनते हैं हमारे हस्बैंड।
0: जी, तो पति देव सुनते हैं और आप भी साथ में सुनती है ना?
1: जी,
0: जी, तो ज्योति जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: फिल्म का नाम है ममता, गीत से बोले रहे ना रहे हम।
0: तो चलिए सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: अंतराल के बाद
1: अंतराल के
0: देखते
1: बाद
0: हैं किस सखी का लगा है कॉल।
1: किसका लगा है कॉल।
0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली,
0: जी, बताइए किससे बात हो रही है।
1: वैष्णवी मुड़ी
0: वैष्णवी मुड़े, कहाँ से बात कर रही हैं आप
1: नांदेड़ से। नांदेड़
0: जी? वैष्णवी बताइए, नांदेड़ से कैसी हैं आप और कैसा है नांदेड़?
1: तो अच्छा है, मैं भी अच्छी हूँ।
0: और बताइए क्या करती हैं आप, परिवार में कौन है?
1: परिवार में मेरा छोटा बच्चा और
0: हाँ,
1: मम्मी जी है।
0: अच्छा, परिवार है, मतलब भरा
1: हाँ
0: पूरा परिवार है।
1: जेठानी है। हाँ परिवार है।
0: और आप क्या करती हैं बताइए आप?
1: मैं घर पर रहती हूँ, छोटा बेबी है, 5 महीने
0: अच्छा,
1: का।
0: ओ, ये तो बहुत ही छोटा बच्चा है, अभी तो आपको हर वक्त उसका ध्यान रखना पड़ता होगा।
1: हाँ
0: तो बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: एबीसीडी मतलब गण गण गणपति वाला गाना।
0: एबीसीडी फिल्म का, चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, बताइए किससे बात हो रही है?
1: मैं अनु पांडे बात कर रही हूँ, उत्तर प्रदेश गोंडा से।
0: उत्तर प्रदेश गोंडा से क्या बात है?
1: आज मैम मेरी पहली बार कॉल लगी है ना, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ।
0: एक बात बताएं अनु जी, आपकी आवाज से ही समझ में आ रहा है कि आप बहुत ज्यादा खुश हैं, और हम भी बेहद खुश हैं कि आपने कॉल लगाने की कोशिश की। क्या करती हैं आप, बताइए?
1: मैं जॉब करती हूँ और तैयारी करती हूँ रेडियो के साथ मैच की।
0: जॉब कर रही हैं और तैयारी किस चीज की?
1: जिस जॉब पे हूँ ना उसी, और अच्छे पोस्ट पे जाने के लिए।
0: अच्छा, तो प्रमोशन आपको मिल जाए इसके लिए आप कोशिश कर रही हैं और उसी की तैयारी कर रही हैं। जी,
1: हाँ।
0: तो उसके लिए पढ़ाई करनी होती होगी, कैसे क्या करना होता होगा?
1: मैम उसके लिए मतलब हाँ पढ़ाई करनी पड़ती है तो वो कर लेते हैं हम।
0: तो आप देखिए जॉब भी कर रही हैं और पढ़ना भी है क्योंकि प्रमोशन चाहिए, तो कैसे समय निकालती हैं फिर पढ़ाई के लिए?
1: मैं तो पढ़ाई के लिए भी समय निकाल लेती हूँ और साथ साथ रेडियो भी सुनती रहती हूँ, और दिवस भारती में हमेशा सुनती रहती हूँ। यहाँ के कार्यक्रम मुझको बहुत अच्छे लगते हो, आज के फनकार हो गए, या पिटारा हो गया, हेलो सहेली हो गया, बहुत सारे कार्यक्रम है जो मुझको बहुत अच्छे लगते हैं।
0: अरे वाह, यानी कि आप तो एक दिन मतलब कि दिन का जो हम 12 घंटा इस्तेमाल करते हैं ना काम काज करने के लिए, उसमें तो आप कई सारे काम कर लेती हैं। जॉब भी कर रही हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं और रेडियो भी सुन रही हैं, क्या बात है। तो हम आपको आपके प्रमोशन के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई अभी से देते हैं अनु पांडे जी।
1: फूलों की ताजगी, चांदनी की चमक, विविध भारती रेडियो तो है खुशियों का कमल।
0: क्या बात है।
1: और मैम हमको गाना सुनना है, फिल्म का नाम है तेरे नाम, और गाने के बोल है तुमसे मिलना बातें करना। आज ना हमको आपसे बातें करके बहुत अच्छा लग रहा है।
0: हमें भी आपसे बात करके बहुत ज्यादा आनंद आया अनु पांडे जी। चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
2: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते जी। किससे बात हो रही है?
2: निशा कुशवाहा बोल रही हूँ मैम, निशागढ़ जिला अशोक नगर से।
0: अच्छा, बताइए निशा जी, कैसी हैं आप?
2: ठीक है, आप कैसी हो दीदी? जी
0: बिल्कुल अच्छे हैं। बताइए आज कौन सा गीत सुनना चाहती हैं आप?
2: दीदी, अंदाज पिक्चर का सुनवा दीजिए, आएगा मजा बरसात का।
0: तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: अंतराल के बाद हम फिर आ गए हैं, लेते हैं ये कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी, क्या नाम है आपका?
1: हमारा नाम है आरती डांगी है, मध्य प्रदेश जिला सागर ग्राम जमुन खामरिया से बोल रहे हैं।
0: खामरिया से बोल रही हैं आप, बताइए जिंदगी में सब कुछ कैसा चल रहा है और कैसा चल रहा है आपका शहर?
1: जिंदगी में कभी भी सब कुछ अच्छा है, शहर भी अच्छा है, लेकिन दुख सुख तो आते जाते रहते हैं। अभी हमारी माँ का डेथ हुआ है दीदी, इसलिए अधिक दुखी है।
0: जी, हम समझ सकते हैं आरती जी की माँ का ना होना, यानी ये खालीपन किसी भी चीज, कोई धन कोई पद किसी से भी पूरा नहीं किया जा सकता, है ना?
1: जी दीदी, मेरा मायका है छिंदवाड़ा जिला का और सागर का ससुराल है यहाँ का, मतलब
0: जी।
1: 250-300 किलोमीटर की दूरी है।
0: अच्छा, 300 किलोमीटर की दूरी है ससुराल और मायके के बीच में।
1: जी दीदी, हम बिल्कुल महाराष्ट्र के किनारे पे रहते हैं एकदम।
0: अच्छा, अब परिवार में कौन कौन है?
1: सास है, ससुर है, देवर है, देवरानी है और मेरी दो बेटा है, पति देव, हम सब लोग भारत पूरे परिवार से हैं।
0: आज बताइए कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: आज हम गीत सुनेंगे दीदी राजा और रंग फिल्म का, वो तो कितनी अच्छी है माँ के लिए।
0: जी, तो आपकी माँ को समर्पित
1: जी
0: ये गीत प्रस्तुत है।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली, कृष्णा
0: जी, आज किसका कॉल लगा है? अपना नाम बताइए।
1: लोवंशी, जिला खंडवा से लगा मेरा फोन।
0: क्या बात है, आप क्या करते हैं?
1: खेती करती हूँ दीदी मैं।
0: अरे वाह, खेती का काम करती हैं। तो
1: जी
0: इस वक्त क्या आप खेत पर ही हैं?
1: दीदी, खेत में नहीं, घर पे हूँ। और मक्का लगाई है दीदी मैंने।
0: मक्का लगाई है, तो कब तक इसकी कटाई हो जाएगी फिर?
1: ये अभी दीपावली तक होगी दीदी।
0: अच्छा, दीपावली तक।
1: मेरे दो लड़के हैं,
0: हाँ,
1: एक खेती करता है और एक लड़का बड़ा वाला मेडिकल पे है।
0: तो आप भी जाती हैं खेती करने?
1: हाँ जाती हूँ दीदी, मेरी बहू भी है,
0: हाँ, तो वो भी
1: वो
0: जाती
1: भी।
0: हैं।
1: हाँ दोनों जाते हैं।
0: अरे वाह जी, ये तो बहुत मेहनत का काम है खेती करना। कृष्णा जी, हमारे देश का तो आधार है किसान और खेत। तो बताइए, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं? हमें आपसे बात करके बेहद प्रसन्नता हो रही है।
1: गदर फिल्म का है दीदी, ऊर्जा काले कावा।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का फिल्म गदर का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली, नमस्ते। मैं
0: नमस्ते जी। अपना नाम बताइए सहेली।
1: अनीता वर्मा बोल रही हूँ, द्वारका, दिल्ली से। हाँ
0: दिल्ली से अनीता वर्मा जी, बताइए कैसी हैं
1: जी
0: आप?
1: जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं मैम?
0: बिल्कुल अच्छे हैं, यहाँ पर भी सब ठीक है। और अपने
1: जी
0: बारे में बताइए अनीता जी।
1: हाँ मैम, मैं हाउस वाइफ हूँ और पहले सहेली में फोन करती रहती हूँ 2.5-3 महीने के बाद कि कभी का नंबर लगता रहे।
0: जी, ये बहुत अच्छी बात है कि आपने 2 महीने का पूरा जो हम अनुरोध करते हैं, आपने वो समय का पूरा शांति से इंतजार किया और 2 महीने के बाद कॉल कर रही हैं।
1: हेलो सहेली, ये विविध भारती के सारे ही प्रोग्राम क्या क्या बताऊं मैं, सभी बहुत पसंद है मुझे, इन्हीं के साथ मेरा काम होता रहता है।
0: जी बिल्कुल। तो सबसे पहले आपको धन्यवाद कि आप विविध भारती के सारे कार्यक्रमों को पसंद करती हैं। रेडियो तो सुनती ही हैं और सारा दिन आप संगीतमय आपका दिन ये निकलता है। इसके अलावा और आप क्या करते हैं?
1: मैम घूमने का भी शौक है, 2-4 महीने बाद चक्कर लग ही जाता है, घूमने की बहुत शौकीन हूँ, शॉपिंग करना बहुत अच्छा लगता है, सूट साड़ी ये ज्यादा मुझे पसंद आते हैं, अपने इंडियन जो
0: जी, और
1: हमारे ये कपड़े
0: जी
1: हैं।
0: जी जी और दिल्ली तो प्रसिद्ध भी है ना शॉपिंग के लिए। शॉपिंग के लिए बिल्कुल यहाँ पर तरह तरह की चीजें, हर प्रकार की चीजें मिल जाती हैं और आप उसका शौक भी रखती हैं। और देखिए, एक महिला को ये सारी चीजों का शौक होना भी चाहिए, आपको क्या लगता है?
1: हाँ जरूर होना चाहिए, क्योंकि अगर महिला ही नहीं शौकीन होगी तो और कौन होगा,
0: जी
1: इसी तरह
0: हाँ
1: जचते हैं, और कोई तो पहन नहीं सकता ये
0: बिल्कुल
1: सारी
0: जी,
1: चीजें। जी
0: इतनी सारी चीजें होती हैं हम महिलाओं के लिए पहनने के लिए। और जब शौक मन में रहता है ना, प्रसन्न चित रहता है, तो हम घर भी बहुत अच्छे से रखते हैं, खुद को भी खूब अच्छे से सुंदर बनाते हैं। और एक प्रसन्न वातावरण जो घर का रहता है, वो हमेशा सकारात्मक सोच के तरफ आगे बढ़ता है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है अनीता जी। आज बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मुझे सुनना है पर्दे के पीछे, ये फिल्म का नाम है, गाना बहुत ही अच्छा है, तेरे बिन जिया ना लगे, आ जा रे आ जा रे।
0: बिल्कुल।

0: सहेली
1: जी फोन के उस तरफ, ये कौन सी सहेली है, क्या नाम है आपका, अपने बारे में बताइए।
0: मेरा नाम है शांति वारी, मैं उदयपुर वारियों की घाटी से बोल रही हूँ।
1: क्या बात है, बहुत बहुत स्वागत आपका शांति जी।
0: धन्यवाद।
1: जी अपने बारे में बताइए।
0: मैं हाउस वाइफ हूँ।
1: जी तो घर के काम काज में दिन भर सारा समय निकल जाता होगा, है ना।
0: हाँ, निकल जाता है ना दिन भर। ज्वाइंट फैमिली है, तीन फैमिली एक साथ रहती है, रसोई एक ही है।
1: ये तो आज के जमाने में उदाहरण है आपका परिवार की, तीन परिवार एक साथ रहता है और आपने कहा रसोई भी एक ही है।
0: हाँ, एक ही है।
1: जी बहुत ही सुंदर बात है। तो जब इतना बड़ा परिवार है शांति जी, ऐसे में कहीं ऐसा तो नहीं होता कि स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रखना या कसरत करना या वर्जिश करना कहीं छूट जाता होगा।
0: नहीं, मतलब हमारा परिवार बहुत अच्छा परिवार है। तीनों भाई एक साथ रहते हैं, काम भी एक ही है, खाना भी मिलजुल के बांट लेते हैं। सुबह बड़े वाले, बीच वाले 11 बजे बीच वाले बनाते हैं, सुबह 5 बजे का बड़े वाले बनाते हैं, शाम को मैं बनाती हूँ।
1: अच्छा तो मिल बांट के आपने इस तरह से काम का बंटवारा कर लिया है। और अपने बारे में बताइए और कैसे क्या सब चलता है दिन भर घर पर, परिवार इतना बड़ा है तो बच्चे भी सब होंगे,
0: है ना, बच्चे भी, मेरे 2 बच्चे, बड़े वाले के 2 बच्चे।
1: तो ये तो ऐसा खिलखिलाता सा परिवार है ना
0: हाँ,
1: जी।
0: और साथ में ननद भी रहती है, 27 साल हो गए ननद के साथ रहते रहते। हाँ,
1: अच्छा आपकी एक ननंद भी साथ में रहती हैं। शांति जी बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं।
0: फिल्म है करण अर्जुन, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, ये गाना।
1: बिल्कुल बहुत सुंदर गीत है और आपका परिवार तो इस गीत पर पूरे तरह से उतर रहा है, एक बहुत ही सुंदर उदाहरण। चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: आज कॉल करने वाली सभी सखियों को धन्यवाद, और वे सखियां जिन्हें अभी और इंतजार करना है हेलो सहेली से जुड़ने के लिए, वे निराश ना हो, अगली बार जरूर कोशिश कीजिएगा, क्या पता पहला कॉल आप ही का लग जाए। और जिन सखियों से आज हमने बात की है उनसे ये अनुरोध है कि आप अगले 2 महीने तक कॉल न करें ताकि अन्य सखियों को भी मौका मिल सके। तो सखियों, आपसे अब मुलाकात होगी हेलो सहेली के अगले अंक में। सुनने वाले सभी को बता दें कि हेलो सहेली की रिकॉर्डिंग होती है हर मंगलवार के दिन सुबह 11 बजे से। हमारे टेलीफोन नंबर हैं 400-24662, 400-24662। एक और नंबर है 2867-0288, 28670288। मुंबई का STD कोड है 022, अंग्रेजी में 022। आज के हेलो सहेली कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग इंजीनियर हैं समृद्धि नायक, संपादन में सहयोग मिला नम्रता टिकोड़े का। विविध भारती की ओर से हेलो सहेली कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। और आज के हेलो सहेली कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। दीजिए अपनी सहेली दीपा माहेश्वरी को इजाजत। नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह हेलो सहेली।

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी का जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी, बंदिनी वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में, सिर्फ विविध भारती पर।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: गीतों भरी कहानी में आज सुनिए अरुण शेखर की लिखी कहानी उन्हीं के स्वर में। आवाज ही पहचान है।

आज जब दूसरी पाली में माया क्लिनिक के लिए निकली तो उसका मूड कुछ ऑफ था, कारण कि आज फिर उसके ब्याह को लेकर घर में बकझक हो गई थी। ऐसा नहीं कि डॉक्टर माया दुनियावी बंधन में बंधना नहीं चाहती थी, और ऐसा भी नहीं कि उसकी जिंदगी में कोई प्रवेश कर गया था। वो भी आज की नई सोच के मुताबिक पहले सेटल हो जाना चाहती थी। आज शायद ही कोई लड़की चाहती है कि वो अपने खर्चों के लिए अपने पति पर निर्भर रहे, उसे अपनी हर जरूरत के लिए पति का मुंह देखना पड़े। इसी सोच में वो भी थी, नए क्लिनिक की शुरुआत की थी, वह भी चल नहीं रेंग रहा था। कोई भी बिजनेस सेट होने में थोड़ा समय तो लगता ही है। माया इसीलिए अभी विवाह जैसे बंधन में बंधने के लिए मन नहीं बना पाई थी, पर हर बार मां को मना करना उसके लिए भारी होता जाता था, क्योंकि हर मां इस बात के लिए चिंतित रहती है कि उसके रहते उसके बच्चों का विवाह हो जाए। यदि लड़की है तो और चिंता रहती है। माया क्या करे क्या न करे उसे समझ में नहीं आ रहा था। इसी उधेड़बुन में वो क्लिनिक पहुंच गई। वहां पहुंचकर हमेशा की तरह रेडियो ऑन किया। कुछ पेशेंट बाहर इंतजार कर रहे थे, उनका उसे ध्यान ही न रहा, क्योंकि उस समय उसके पसंदीदा आरजे का प्रोग्राम चल रहा था। चिट्ठी आई है, मुझ तक अपनी खबर न भेजो, ये बात मुझे मंजूर नहीं, दिल के तुम्हारे बात न पूछूं ऐसा भी मगरूर नहीं, दिल की तुम्हारे बात न पूछूं ऐसा भी मगरूर नहीं, थोड़ी गर्मी थोड़ी सर्दी चलती रहती है रिश्तों में, अब जिद छोड़ो मुंह ना मोड़ो खत लिख छोड़ो, ऐसी क्या रुसवाई है चिट्ठी आई है।

डॉक्टर माया की असिस्टेंट ने उसे आवाज दी तो उसकी तंद्रा टूटी। उसे याद आया कि वो क्लिनिक में है, वरना वो गाने के साथ किसी और ही दुनिया में विचरण कर रही थी। उसके चेहरे पर उदासी की जगह एक मीठी मुस्कान खिल गई। वो बोली, हाँ भेज दो। पेशेंट को कोई गंभीर बीमारी नहीं थी, वरना इतनी देर प्रतीक्षा करना मुश्किल हो जाता। खैर, माया ने उसकी नाड़ी देखी, पूछा, क्या प्रॉब्लम है? पेशेंट ने कहा, सिर में दर्द रहता है, नींद नहीं आती। माया ने मन ही मन कहा, नींद तो उसे भी नहीं आती, पर वो किससे कहे। जिस दिन आरजे समीर का प्रोग्राम सुनती है, वही ख्वाबों ख्यालों में रहता है। उसकी आवाज, उसका अंदाज, उसके गानों की पसंद, सब कुछ कमाल है। समझ में नहीं आता कि उसके लिए दीवानगी सुकून है या दर्द। पेशेंट से बोली, आप नींद ठीक से लिया करें। नींद न लेने से एसिडिटी रहती है और इसी कारण सिर में दर्द रहता है, और कोई खास बात नहीं है। लेकिन लंबे समय तक अगर एसिडिटी रही तो दूसरी बीमारियां हो सकती हैं। खाने में छाछ यानी कि मट्ठा का अधिक इस्तेमाल करें। सलाद में ककड़ी जरूर खाएं। रात में देर तक बिल्कुल मत जागिए, समझ रहे हैं आप? और आप ठीक हो जाएंगी, चिंता की कोई बात नहीं है। पेशेंट ने जी और धन्यवाद के साथ विदा ली। माया ने रेडियो की आवाज फिर तेज कर दी। FM के दीवानों, मैं आपका दीवाना समीर आपकी नजर करता हूं ये गीत।

ऐसे गाने सुनकर हमेशा उसे लगता कि वो गाने उसी के लिए बजाए जा रहे हैं। ऐसे ही बहुत से चित्र होते हैं जिनको देखने से लगता है कि वो आपको ही निहार रहे हैं। उसी प्रकार माया को भी लगता कि समीर भी कहीं ना कहीं उससे प्रेम करता है, क्योंकि वो उसके हर प्रोग्राम को सुनती और खत लिखती, खत में बहुत कुछ जाहिर करती। वो पत्र केवल गीतों व कार्यक्रमों तक सीमित नहीं रहते, वो उसमें अपने दिल की दास्तान भी बयान करती। वो जैसा सोचती कहीं न कहीं वही भावनाएं उसे गानों के द्वारा सुनाई पड़ती। वो जो सोचती सची तो है। इस प्रकार धीरे धीरे माया को समीर की आवाज का एडिक्शन हो चला था, यानी कि नशा हो चला था। समीर हमेशा तो रेडियो पर रहता नहीं था, उसने इसके लिए तरकीब निकाली। वो उसके कार्यक्रमों को रिकॉर्ड करके रख लेती और उसे बार बार सुनती, लेकिन संडे के कार्यक्रम को वो बिल्कुल मिस नहीं करती। उसमें श्रोताओं के पत्र पढ़े जाते, जिसमें श्रोता अक्सर उसकी आवाज की तारीफ करते, कुछ गानों का जिक्र होता। यह सुनकर माया को भी अच्छा लगता।

डॉक्टर माया को जलन तब और होती जब वो किसी और महिला का पत्र हंस हंस कर पढ़ता और उसकी लिखावट की तारीफ करता, उसको शुक्रिया कहता, कहता कि आपको कार्यक्रम अच्छे लगते हैं, मतलब आप अच्छे हैं, अच्छी चीजें देखने वाले की नजर अच्छी होती है, उसके पत्र भी पढ़े जाते। परंतु कई बार ऐसा भी हुआ कि डॉक्टर माया ने अपने खत के इंतजार में पूरा कार्यक्रम सुना परंतु उसका पत्र नहीं पढ़ा गया। समीर के मुंह से अपना नाम सुनने की प्रतीक्षा में उसने न जाने कितने लोगों की तारीफों के दर्द को झेला। मन तो किया कि रेडियो को उठाकर पटक दे परंतु वो ऐसा नहीं कर सकी। उसे रियलाइज हुआ कि वो डॉक्टर है, वो कोई छोटी बच्ची नहीं है। कई बार हमारी बनाई हुई सीमाएं ही हमें बोझ लगने लगती हैं, पर वही हमें बचाती भी हैं। इस बीच कार्यक्रम समाप्त होने का वक्त आ गया। समीर ने शेर पढ़ा। एफएम के दीवानों में आपका दीवाना समीर। चलते चलते कुछ शेर आपकी नजर करता हूं। कुछ हकीकत तो बहुत कुछ सिर्फ छल है जिंदगी, कुछ हकीकत तो बहुत कुछ सिर्फ छल है जिंदगी, कुछ अमृत है और कुछ मधुमय गरल है जिंदगी। नींव सपनों पर पड़ी और रेत की दीवार है, नींव सपनों पर पड़ी और रेत की दीवार है, और फिर ये जुल्म ताशों का महल है जिंदगी। और एक गाने के साथ आपको छोड़ जाता हूं, तो खुश रहिए और अपने दिल का ख्याल रखिए। इस शेर ने माया को खुद में झांकने को विवश किया।

0: कभी तो हंसाए।
1: इन्हीं सवालों को खोजती खोजती माया घर पहुंच गई। कोई हल नहीं था। कई बार सवाल का हल खोजते खोजते हम और उलझ जाते हैं। ऐसे में हमें सोचने की प्रक्रिया को रोक देना चाहिए, यानी थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए। माया खाना खाकर सीधे बिस्तर पर आई। हमेशा वो खाने के बाद थोड़ा वॉक करती थी, परंतु आज मन अनमना था तो सीधे सोने के कमरे में आ गई। किसी से ज्यादा बात नहीं की, वो अपने में ही खोई रही। वो क्यों खोई है, वो क्या खोज रही है, इसका कोई तर्क संगत जवाब उसके पास भी नहीं था। माँ ने बेटी को उदास देखकर पूछा, क्या हुआ, इतना खोई खोई सी क्यों है? तूने आज ठीक से खाना भी नहीं खाया, तबीयत तो ठीक है ना? माँ सब कुछ समझती है, उसे झूठ नहीं बोल सकते, लेकिन वो तुमसे सुनना चाहती है। माँ जानना चाहती है कि उसकी बेटी की जिंदगी में कौन है। पर माँ को वो क्या बताए कि उसने ख्वाबों की नींव पर प्रेम का महल बनाया है, उसी में रह रही है। वो जिससे प्रेम कर बैठी है, वो उसे जानती तक नहीं, उससे कभी मिली नहीं। उसकी आवाज की दीवानी है, उसके अंदाज की दीवानी है, उसी के साथ जीवन के सपने बुन लिए हैं, उसी के साथ शामें गुजारती है।

आज जब वो क्लिनिक के लिए निकली तो रास्ते में बहुत ट्रैफिक था। हालांकि उसके घर से क्लिनिक बहुत दूर नहीं था, यही कोई 1.5-2 किलोमीटर की दूरी रही होगी, परंतु आज उस रास्ते से कोई रैली निकल रही थी इसलिए इतना ट्रैफिक था। उसे बहुत झुंझलाहट हुई, अपनी स्कूटी इधर उधर जैसे तैसे काट कर क्लिनिक पहुंची। स्कूटी साइड स्टैंड पर लगाई, सीट खोलकर हेलमेट रखा, तभी आसमान में पक्षियों की मंडली गीत गाते हुए उधर से गुजर गई। उसे बड़ा भला लगा, वो एक पल को ठहर गई। उसकी नजर डाल पर बैठे हुए नीलकंठ के जोड़े पर पड़ी। इन छोटे छोटे दृश्यों से वो लसित हो उठी। उस उल्लास को उस आवाज ने कई गुना बढ़ा दिया। डॉक्टर माया लिखती हैं कि आपके कार्यक्रम के इंतजार में हमारा हर पल गुजरता है। आपकी आवाज कानों में गूंजती रहती है और कुछ सुनाई नहीं देता। अरे डॉक्टर माया जी, ऐसा मत कीजिए। आपके ऊपर लोगों के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी है। अगर आप इस प्रकार बेखबर हो जाएंगी तो कैसे चलेगा? वैसे इंतजार तो मुझे भी रहता है आपके मीठे मीठे खातों का। यही तो मेरी लाइफ है। आपके शब्दों में जो प्रेम है वो अद्भुत है। मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि आपकी मुस्कुराहट भी बहुत खूबसूरत होगी। कितने खुशनसीब हैं वो लोग जो आपको मुस्कुराते हुए देखते होंगे। और हाँ,

मुझे तो लगता है कि आपके मरीज तो ठीक होना ही नहीं चाहते होंगे। और मेरी आवाज तो इसलिए आपको अच्छी लगती है क्योंकि आप दिल से सुनती हैं, लोग सुनते होंगे कानों से। अभी और खत, और भी बातें।

माया को यकीन हो चला था कि उसकी बात उस तक पहुंच गई। आज जोर से चिल्लाना चाहती थी, समीर आई लव यू। ये तब की बात है जब सोशल मीडिया जैसी चीज नहीं हुआ करती थी, मोबाइल भी इतना कॉमन नहीं हुआ था। माया से अब नहीं रहा जा रहा था कि कैसे भी करके वो समीर से मिलना चाहती थी। टेलीफोन डायरेक्टरी से उस रेडियो स्टेशन का नंबर निकाला, उसमें उसे 3 नंबर मिले। पहला ट्राई किया, आवाज आई, ये नंबर अस्तित्व में नहीं है।

दूसरा ट्राई किया। इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं। ये संदेश किसी महिला की आवाज में था। एक बारगी माया को लगा कि जोर से गाली दे, पर वो बोली, चुप कर, समीर को बुला। पर वो रिकॉर्डेड आवाज थी, इसलिए कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। बड़ी कोशिशों के बाद तीसरा नंबर लग गया। उसका धैर्य काम आया। किसी ने फोन उठाया और बोला, कौन? माया, डॉक्टर माया, क्या समीर जी से बात हो सकती है? रूखी आवाज में उत्तर मिला, आप उनसे बात नहीं कर सकती। क्यों? क्यों? माया ने थोड़ा आश्चर्य से पूछा, क्योंकि वो नहीं है। नहीं है मतलब? अभी कुछ देर पहले तो थे। हाँ थे, पर अब नहीं है, वो चले गए, उनका शोक खत्म हो गया। अब कब आएंगे? ये हम आपको नहीं बता सकते। क्यों? ऐसा रूल है, आपका मैसेज दे देंगे। अच्छा ठीक है। माया उदास हो गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करें।

माया का क्लिनिक कुछ खास नहीं चल रहा था, वो उस तरफ ध्यान भी नहीं दे पा रही थी। अधिकतर समय सपने बुनने में निकल जाता। उसकी शादी, बच्चे, न जाने क्या क्या सोच लिया करती थी। जब भी वो किचन में खाना बना रही होती, उसे लगता अभी अचानक समीर आएगा और पीछे से उसे अपनी बाहों में भर लेगा। वो चौंक उठेगी, फिर खुद को ही समझाती, ये क्या पागलपन है, वो यहां कैसे आ सकता है, मुझसे तो वो कभी मिला भी नहीं, मेरे घर का पता भी उसे पता नहीं है। फिर वो सोचने लगती कि ठीक है, वो मुझसे नहीं मिला, मैं उससे नहीं मिली, पर मेरे खत उसे मिले ही हैं, उसकी आवाज में मैंने उसको महसूस किया है।

ये बात माया अच्छी तरह जानती थी कि वो अपने साथ छल कर रही है। जिन ख्यालों के सहारे वो जिंदगी जीने के सपने देख रही है वो संभव नहीं है। भोजन की खुशबू से पेट नहीं भर सकता, बल्कि वो भूख को और बढ़ा देती है। मोहब्बत के एहसासों से जिंदगी नहीं चलती, हकीकत की जमीन पर उतरना ही पड़ेगा। डॉक्टर माया ने सोच लिया अपने ख्वाबों को अमली जामा पहनाना ही है, कुछ भी हो जाए। वो समीर से बात करके रहेगी। एक बार फिर उसने ऑफिस में कॉल किया, फिर से वही आवाज, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, कृपया थोड़ी देर बाद प्रयास करें। माया का धैर्य जवाब दे रहा था।

0: आज जब माया क्लिनिक जाने को तैयार हो रही थी तो माँ ने कहा, बेटा जल्दी घर आ जाना, कुछ लोग आने वाले हैं। पहले तो माया को लगा कि कह दे आप भी ना किस किस को बुला लेती हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं आ पाऊंगी, आप मिल लेना। परंतु माया ने ऐसा कुछ नहीं कहा, ठहर कर माँ को बड़े इत्मीनान से देखा, मुस्कुराई और कहा, ठीक है मैं आ जाऊंगी, कुछ लाना है तो बता देना। माँ ने कहा, अरे तू आ जाना, बाकी सब मैं देख लूंगी।
1: तो

हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ खुश और स्वस्थ होंगे। साथ ही कभी बारिश तो कभी धूप के मौसम में अपने स्वास्थ्य का खास ध्यान दे रहे होंगे, और देना भी चाहिए क्योंकि इस मौसम में थोड़ी सी लापरवाही हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। इसलिए अपने स्वास्थ्य का खास ध्यान दीजिए और साथ ही सुनते रहिए अपना वन ऑफ द डेली यूथ प्रोग्राम युवाणी, जो लेकर हाजिर है आपकी रेडियो हम सफर एकता। तो दोस्तों, बातें तो होंगी खास विषय से जुड़ी, बातों के साथ साथ सुनेंगे प्यारे प्यारे सॉन्ग्स भी। और साथियों, जैसा कि आपको पता है आज दिन है शुक्रवार, और शुक्रवार को होता है हमारा खास क्रम रोजगार सूचना, जिसमें मैं आपको दूंगी इस हफ्ते रोजगार से जुड़ी जानकारी, जिसके लिए आप जुड़े रहिए अपनी रेडियो हम सफर के साथ। दोस्तों जरा सोचिए, अगर आज आपको पता चल जाए कि आने वाला कल आपके सामने एक बड़ा अवसर लेकर खड़ा है, तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं। फ्रेंड्स, हम अक्सर कहते हैं अभी तो बहुत समय है, बाद में सोचेंगे, लेकिन सच तो ये है कि भविष्य अचानक नहीं बनता, वो आज की हमारी छोटी छोटी कोशिशों से तैयार होता है। साथियों, और आज हम बात करेंगे ऐसे ही विषय से जुड़ी, एक ऐसे विषय पर जो हर युवा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो विषय है भविष्य की तैयारी अभी से। दोस्तों, भविष्य की तैयारी का मतलब केवल अच्छी नौकरी पाना या परीक्षा पास करना नहीं है, इसका अर्थ है अपने आज को आने वाले कल के लिए सक्षम बनाना। आज का समय बहुत तेजी से बदल रहा है, नई तकनीकें आ रही हैं, काम करने के तरीके बदल रहे हैं, और नई नई चुनौतियां हमारे सामने हैं। ऐसे में केवल डिग्री होना ही पर्याप्त नहीं है, हमें अपने ज्ञान, कौशल, सोच और व्यक्तित्व को भी लगातार बेहतर बनाना होगा। साथ ही सबसे पहले तैयारी कीजिए सीखने की। हमारी सीखने की आदत, हर दिन कुछ नया सीखिए, किताब पढ़िए, समाचारों से जुड़िए, अपनी भाषा और संवाद कौशल को बेहतर बनाइए, और तकनीक का सही उपयोग करना सीखिए। इसलिए तैयारी, अपने लक्ष्य को पहचानना जरूरी है, नहीं है कि आपको अभी अपने जीवन का रास्ता पता हो, लेकिन इतना जरूर तय कीजिए कि आपको कौन सा कदम उठाना है। एक छोटा लक्ष्य तय कीजिए और उसे पूरा करने की कोशिश कीजिए। और दोस्तों, सबसे जरूरी बात, समय की कद्र। समय को केवल मोबाइल की स्क्रीन पर बिताने की बजाय अपने भविष्य को बनाने में लगाइए। रोज कुछ घंटे भी अगर सही दिशा में जाएं, तो यही छोटे छोटे घंटे आने वाले वर्षों में बड़ी सफलता का आधार बन सकते हैं। और हाँ, भविष्य की तैयारी असफलता से डरकर नहीं करनी चाहिए, बल्कि उससे सीखना भी शामिल है। हर बार सफल होना जरूरी नहीं, लेकिन हर बार कुछ सीखना, आगे बढ़ना जरूरी है। तो साथियों, हर भविष्य को लेकर चिंता की बजाय आज से उसकी तैयारी शुरू कीजिए। तो दोस्तों, ये थी बातें इस विषय से जुड़ी, जो बस यहीं तक। अब चलिए चलते हैं म्यूजिकल वर्ल्ड में और सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, यात्रा के दौरान अगर टीसी टिकट मांगे तो दिखा दीजिए, लेकिन कोई भी ओटीपी पिन या पासवर्ड मांगे तो उसे तुरंत भगा दीजिए।
1: आरबीआई कहता है ओटीपी या पिन के लिए कॉल या मैसेज आए तो थोड़ा ध्यान से।
2: नमस्कार, यदि आप रेडियो प्रस्तुति और एंकरिंग में रुचि रखते हैं और अपनी आवाज के माध्यम से श्रोताओं के बीच अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, तो आकाशवाणी ओबरा आपको दे रहा है एक सुनहरा मौका।
3: आकाशवाणी ओबरा द्वारा युववाणी कार्यक्रम के लिए असाइनमेंट अर्थात समनुदेशती आधार पर कंपियर एवं अंतरवार्ताकार का पैनल तैयार किया जा रहा है। इसके लिए ओबरा परिक्षेत्र में निवास करने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।
2: अभ्यर्थियों का चयन स्वर परीक्षा यानी ऑडिशन और स्क्रीनिंग समिति के संस्तुति के आधार पर किया जाएगा और सफल अभ्यर्थियों का नाम पैनल में शामिल किया जाएगा।
3: ध्यान रहे, यह स्थायी और नियमित रोजगार नहीं है। आकाशवाणी ओबरा अपनी कार्यक्रमगत आवश्यकता के अनुसार ही पैनल में शामिल अभ्यर्थियों को समय समय पर कार्य हेतु आमंत्रित करेगा। प्रत्येक असाइनमेंट के लिए प्रसार भारती के नियमानुसार मानदेय देय होगा।
2: आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी की आयु 28 अगस्त 2026 को 18 वर्ष से कम और 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय अथवा महाविद्यालय से इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
3: आवेदन शुल्क ₹118 निर्धारित है। शुल्क ऑनलाइन अथवा नेट बैंकिंग के माध्यम से PBBC ऑफ इंडिया प्रसार भारती आकाशवाणी वाराणसी के खाते में देय होगा।
2: आवेदन पत्र के साथ शुल्क जमा करने की रसीद संलग्न करना भी अनिवार्य होगा।
3: इच्छुक अभ्यर्थी सोमवार से शुक्रवार प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में आकाशवाणी ओबरा कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं और पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन 28 सितंबर 2026 शाम 5 बजे तक कार्यालय में जमा कर सकते हैं।
2: और यदि आप व्यक्तिगत रूप से आवेदन जमा करने में असमर्थ हैं, तो आवेदन पत्र डाक द्वारा भी भेज सकते हैं। पता इस प्रकार लिखें: स्वर परीक्षा युववाणी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी ओबरा जिला सोनभद्र, पिन कोड नंबर है 231219।
3: तो जुड़िए आकाशवाणी ओबरा से,
2: दीजिए अपनी आवाज को नई पहचान।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स। दोस्तों, अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात ऐसे शख्सियत के बारे में करते हैं जो एक महान स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और भूदान आंदोलन प्रेरणा आचार्य विनोबा भावे जी के बारे में, जिनकी आज पूरे देश में जयंती मनाई जा रही है। दोस्तों, विनोबा भावे जी का जन्म 11 सितंबर आज के दिन 1895 में महाराष्ट्र में हुआ था। उनका मूल नाम विनायक महर्षि भावे था। भावे जी समाज में अहिंसा, सत्य, प्रेम और सहयोग को सामाजिक आधार मानते थे। तो साथियों, आइए इनके बारे में और बातें जानते हैं एक वार्ता द्वारा। वार्ता का विषय है विनोबा भावे, विचार और प्रेरणा। वार्ताकार है परवीन बानो।
1: नमस्कार, मेरा नाम परवीन बानो है। दोस्तों, आज मैं आप सबके सामने भारत के एक महान संत, समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी आचार्य विनोबा भावे जी के जीवन और उनके योगदान पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। विनोबा भावे जी का जन्म 11 सितंबर 1895 को महाराष्ट्र के कोलाबा जिले के गागोड़ा नामक गांव में हुआ था। बचपन से ही उनमें अध्यात्म, ज्ञान और सेवा की गहरी प्रवृत्ति थी। वे गांधी जी से अत्यधिक प्रभावित थे और जीवन भर उनके सिद्धांतों, सत्य, अहिंसा, त्याग और सेवा का पालन करते रहे। महात्मा गांधी ने ही उन्हें आचार्य की उपाधि दी थी, क्योंकि वे गहन अध्ययन, गहरी साधना और उत्कृष्ट नेतृत्व के धनी थे। दोस्तों, आइए अब हम उनके शिक्षा और आध्यात्मिक खोज के बारे में जानते हैं। विनोबा भावे की शिक्षा प्रारंभिक स्तर पर गाँव में हुई, परंतु उच्च शिक्षा के लिए वे वाराणसी आए। काशी में रहते हुए उन्होंने संस्कृत, गणित और धर्मशास्त्र में गहरी पकड़ बनाई। लेकिन यह शिक्षा केवल डिग्री तक सीमित नहीं थी, वे जीवन का गुण, सत्य जानना चाहते थे। इसी खोज ने उन्हें आध्यात्मिक ग्रंथों के अध्ययन की ओर प्रेरित किया। धीरे धीरे वे भौतिक उपलब्धियों से दूर और आत्मिक शांति की ओर आकर्षित होते चले गए। विनोबा भावे बचपन से ही धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। वे बहुत कम उम्र में ही वेद, उपनिषद और भगवत गीता जैसे ग्रंथों का अध्ययन करने लगे थे। उनकी रुचि विज्ञान में भी थी, लेकिन आध्यात्मिकता की ओर उनका झुकाव अधिक था। उन्हें पढ़ाई में गहरी रुचि थी, लेकिन सांसारिक जीवन की अपेक्षा उन्होंने साधु जीवन को अधिक महत्व दिया। विनोबा भावे जी का सबसे बड़ा योगदान भूदान आंदोलन रहा। उन्होंने देखा कि देश में कई किसान भूमिहीन हैं और गरीबों के पास खेती करने के लिए जमीन नहीं है। तब उन्होंने अमीर जमींदारों और किसानों से स्वेच्छा से जमीन दान करने की अपील की। उनका यह आह्वान इतना प्रभावी रहा कि देश भर में लाखों एकड़ जमीन गरीब किसानों को दान की गई। यह आंदोलन सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में एक अनूठा प्रयोग था। विनोबा भावे जी का जीवन अत्यंत सादा और तपस्वी था। उन्होंने कभी निजी

0: पत्ती का मोह नहीं किया। वे कहा करते थे, मनुष्य की सच्ची पहचान उसकी सेवा भावना और करुणा में है। उनका पूरा जीवन शिक्षा, समाज सुधार और ग्राम स्वराज्य के लिए समर्पित रहा। वे महिलाओं की शिक्षा, ग्रामीण उद्योग और आत्मनिर्भरता के प्रबल समर्थक थे। विनोबा भावे जी ने न केवल भूमि सुधार के क्षेत्रों में कार्य किया, बल्कि शिक्षा, नारी सशक्तिकरण, छुआछूत उन्मूलन और ग्राम विकास जैसे सामाजिक क्षेत्रों में भी सक्रिय योगदान दिया। वे कई भाषाओं के ज्ञाता थे और उन्होंने भगवत गीता का मराठी में सरल अनुवाद गीताई के नाम से किया, जो आम जन तक गीता के संदेश को पहुंचाने का एक प्रभावशाली प्रयास था। उनकी सादगी, संयम और सेवा भाव के कारण उन्हें देश भर में अत्यंत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। 1983 में भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया। उनका निधन 15 नवंबर 1982 को पवनार आश्रम में हुआ। विनोबा भावे आज भी देश के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं, जिनके विचार और कार्य हमें समाज की भलाई के लिए निस्वार्थ सेवा की सीख देते हैं। दोस्तों, अब हम इनके प्रेरणा और संदेश के बारे में जानते हैं। आचार्य विनोबा भावे का जीवन हमें यह सिखाता है कि समाज में बदलाव केवल कानून से नहीं बल्कि नैतिक चेतना से आता है। धन, भूमि और संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण ही सच्चा विकास है। शिक्षा का उद्देश्य चरित्र निर्माण और सेवा होना चाहिए। उनकी यह उक्ति आज भी प्रासंगिक है, धरती माँ सबकी है, किसी एक की नहीं। भारत सरकार ने उनके योगदान को मान्यता देते हुए उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। वास्तव में वे केवल एक समाज सुधारक नहीं बल्कि आधुनिक भारत के संत पुरुष थे। प्रिय साथियों, आज के समय में जब समाज में स्वार्थ, असमानता और विभाजन की प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं, तब विनोबा भावे की शिक्षाएं हमें दिशा देती हैं। हमें उनसे सीखना चाहिए कि सच्ची प्रगति केवल भौतिक संपन्नता में नहीं बल्कि समाज के हर वर्ग की भलाई और समानता में है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि विनोबा भावे जी का जीवन हमें प्रेरणा देती हैं। त्याग करो, सेवा करो और मानवता के लिए जियो। धन्यवाद।
1: वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो हमने जाना विनोबा भावे जी के बारे में बहुत सारी बातें। दोस्तों, वार्ता का विषय था विनोबा भावे, विचार और प्रेरणा, और वार्ताकार थी प्रवीण बानो। फ्रेंड्स, अब इन पर बातें बस यहीं तक। अब चलिए चलते हैं म्यूजिकल वर्ल्ड में और सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

वेलकम बैक दोस्तों। फ्रेंड्स, अब चर्चा का विषय आगे बढ़ाते हैं और अब बातें एक और खास शख्सियत के बारे में जिनकी आज पुण्यतिथि मनाई जा रही है। वो शख्स हैं चिन्नस्वामी सुब्रमण्यम अय्यर जी, जिन्हें महाकवि भारतियार के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म तमिलनाडु के तमिल परिवार में जरूर हुआ था, लेकिन शिक्षा दीक्षा और महाकवि बनने की का आधार काशी की मिट्टी बनी थी। स्वतंत्रता के बाद पहले ऐसे कवि रहे जिनकी रचनाओं का राष्ट्रीयकरण किया गया था। काशी हिंद विश्वविद्यालय में इनके नाम पर चेयर भी है। दोस्तों, आज 11 सितंबर को इनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है और उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है। उन्होंने 11 सितंबर 1921 को हमें अलविदा कह दिया था, लेकिन आज भी उनकी रचनाएं कवि सम्मेलनों के जरिए हमको याद रहती हैं और वो हर किसी के जहन में याद हैं। तो दोस्तों, ये थी बातें इन पर, जो बस यहीं तक। अब चलिए चलते हैं अपने आज के खास क्रम की ओर, जो है रोजगार सूचना। जिसमें हमारी आज इस विषय से जुड़ी जानकारी है, साथ ही यूपी ट्रिपल SC उत्तर प्रदेश सुपरिटेंडेंट सर्विस सिलेक्शन कमीशन ने सीनियर इंस्ट्रक्शन का नोटिफिकेशन जारी किया है। आवेदन 14 सितंबर से होंगे और अंतिम तिथि 5 अक्टूबर है। बाकी की जानकारी आपको इसकी वेबसाइट upssc.government.in पर मिल जाएगी। साथियों, इसी के साथ हमारा ये क्रम यहीं तक। अब चलिए फिर से चलते हैं म्यूजिकल वर्ल्ड में और सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

तो दोस्तों, हम मौसम का हाल तो देख ही रहे हैं। कभी बारिश हो रही है तो कभी धूप निकल जा रही है, और इस मौसम में कभी गर्मी तो कभी ठंडी लग रही है। ऐसे में अपने स्वास्थ्य का खास ध्यान दीजिए, खास करके बच्चों और बुजुर्गों का। गर्म पानी पीजिए, जितनी हो सके सतर्कता बरतिए, और बाहर निकलने से पहले फुल कपड़े पहनिए, ताकि आपको किसी भी प्रकार से कोई मच्छर ना काट सके और आपका स्वास्थ्य सही रहे। दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ अब आप अपनी रेडियो फ्रेंड एकता को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

FM 102.7 पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:30 हो रहे हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम घरनी।

सब बहन लोगन के राम राम। और बहन लोगन देखे, हम आप सबके साथ अपने बैठकी में जुट गई जा और उम्मीद करत हई कि आप लोगन अपने परिवार का देखभाल और आपन ख्याल रखत हई हैं। मौसम के देखा उतार चढ़ाव स्वास्थ्य पर बुरा असर डालेला, और बचपन हो या बूढ़ पुरनिया लोग, चाहे देखे जेकर भीतर रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर रहेला, उनके जल्दी संक्रमण हो जाला, या फिर देखा लापरवाही से भी मौसम का असर हो जाला। अब जैसे हमके ही हो गए, हमार लापरवाही रहल बहन लोगन के, एक दिन हम गए रही बाजारे और पानी में, एक दिन का मने जन्माष्टमी के दिने हो, पानी में भीज गई संझा बेर। अब देरी से भीजल कपड़ा पहनले रह गई, बस का बा हो गई सरद गरम। अब थोड़ा देखा खांसी से परेशान है, बाकी देखा काढ़ा दवाई सब समय से लेते ही ठीक हो जाए कुछ दिन में। लेकिन देखा मौसम के जन उतार चढ़ाव वो में ध्यान रखल खास तौर से जरूरी बा, और वही में देखा तीज त्योहार का भी जन होड़ बा, तीज के तैयारी भी देखा चल रहा बा। पूरा पूजा के सर सामान, साड़ी चूड़ी मेहंदी महावर सब देखा जुटावल भी जरूरी बा, और जूटे के भी चाहिए, काहे नहीं जूटे बहन लोगन। देखा काहे कि देखा बरिस बरिस का त्योहार होला तो पूजा पाठ में कमी भी नहीं होके के चाहिए। बाकी एक बात इहो कह कि पूजा में मन और श्रद्धा का होकर बहुत जरूरी बा। भले एगो श्रृंगार का सामान कम हो जाओ, बाकी घर परिवार में स्नेह और एकता आपनपन सुख दुख का सहयोगी सदा रहे के चाहिए। यही में देखा भगवान भी खुश होला। देखा जैसे तीज त्योहार हमन खातिर महत्वपूर्ण होला बहन लोगन, वही तरह से अपन बोली भाषा भी देखा बहुत महत्वपूर्ण जगह रखेला अपना आप में। देखा अपने भारत देश का एगो बहुत प्रसिद्ध लोक कहावत है कि कोस कोस पर पानी बदले चार कोस पर बानी। मने देखा ये कहावत ये बतावेला कि भारत कितना विस्तृत और विविधपूर्ण देश है, जहाँ हर कुछ कुल जनबा के कुछ किलोमीटर के दूरी पर रहन सहन और संस्कृति का रंग रूप बदलत देखल जाला। एकरे बावजूद भी एकता बा हमन के पूरे देश में, जौन है बोलल जाए वाला हिंदी भाषा हमन के संस्कृति और सभ्यता का अभिन्न हिस्सा है। काहे कि हिंदी भाषा हमन का शान है, भारत का पहचान है। हिंदी हमन के जड़ से जोड़ेला और हमन के विचार के अभिव्यक्ति का देखा सरल सहज स्वभाव में देखा ये अभिव्यक्त करेला। हिंदी हमन के हिंदुस्तान का शान है, हर हिंदुस्तानी का पहचान है। एकता और अनुपम परंपरा है अपन हिंदी। बहन लोगन देखा बात तो बहुत बा, बाकी बैठकी में भी बहुत कुछ बा। तो देखें आज है शुक्रवार के दिन, और शुक्रवार के होला भोजपुरी फिल्म संगीत के गाना सुनल जाला। तो देखा काहे नहीं अपने बैठकी में जुटल है जा, तो पहले एक मन फेर हो जाओ, फिर आगे बातचीत हुई तो वो हो जाओ भोजपुरी फिल्म संगीत के गीत।

0: गाइए गुनगुनाइए कहिए हमसे दिल की बात।
1: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
2: हेलो,
0: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
1: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
0: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
1: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
0: ओनली ऑन AIR ओबरा।
3: तो बहन लोगन, देखा संदेश सुनल गए और उसे पहले मन फिर कितना बढ़िया मन फिर रहल है, मन फरहर हो गए। देखें, गीत संगीत भी रोग मुक्त करेगा, तनाव दूर करेगा, एगो बहुत अच्छा माध्यम होला गीत संगीत। देखा सुनला से ना दुख आधा हो जाला, सुख में जोन बाकी अगर सुनल जाए मन फिर तो चार चांद लाग जाला। माने हर घड़ी हर परिस्थिति में बड़ा सहयोगी होला अपन गीत संगीत। और सहयोगी के बाद देखा कैली है ना, तो देखा परेशानी से उबारे खातिर वन स्टॉप सेंटर भी बड़ा बड़ भूमिका निभावेला। और देखें आज अपने बैठकी में से जुड़ल जानकारी शामिल

0: कहले हैं विषय है वन स्टॉप सेंटर पीड़ित महिलाओं की प्रथम आश्रय और सहायता केंद्र। एकरे बारे में बातचीत हो रहल बा श्रीमती दीपिका सिंह जो उनकी केंद्र प्रशासक सोनभद्र से है, उनसे अपन सुरश्री द्विवेदी जी के बातचीत हो रहल बा। तो हम तो कहते हैं कि चल अभी जानकारी भी सुनल जाए।
1: साथियों, वन स्टॉप सेंटर। वन स्टॉप सेंटर सरकार की वह पहल है जो हिंसा से पीड़ित महिलाओं को एक ही स्थान पर रखते हुए समस्त आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराई जाए। सोनभद्र में संचालित सेंटर की केंद्र प्रशासक श्रीमती दीपिका सिंह जी हैं और आज हमारी मुलाकात आपसे हो रही है। तो आइए जानते हैं वन स्टॉप सेंटर की कार्यशैली। दीपिका जी नमस्कार।
2: नमस्कार मैम।
1: सोनभद्र में संचालित वन स्टॉप सेंटर की आप केंद्र प्रशासिका हैं
2: जी,
1: क्या है इसकी कार्यशैली, किस तरह से ये कार्य करता है और इसकी स्थापना किस उद्देश्य से करी गई, कब हुई, हमारे सोनभद्र में ये कब से संचालित है?
2: वन स्टॉप सेंटर 1 अप्रैल 2015 से पूरे देश में संचालित किया गया है और अभी ये मैं 2 फरवरी 2023 से यहाँ सोनभद्र वन स्टॉप सेंटर में कार्यरत हूँ। और इसके साथ इसका वन स्टॉप सेंटर को स्थापित करने का जो मुख्य उद्देश्य वह ये है कि जो महिलाएं जिन्हें ज़रूरत है न्याय की या उचित सहयोग की या जो महिलाएं वित्तीय रूप से अक्षम हैं तो उन्हें सही तौर पे सलाह और सहयोग प्राप्त हो, इसलिए वन स्टॉप सेंटर का निर्माण किया गया है
1: जी। अभी आपने बताया कि आर्थिक तौर पर दुर्बल महिलाएं जो हैं और कहीं ना कहीं उनके साथ किसी प्रकार की ज्यादती मतलब हिंसा की शिकार हैं
2: जी,
1: उन्हें यहाँ सेवाएं दी जाती है। तो कई तरह की ज़रूरतें होती हैं
2: जी।
1: कोई शारीरिक रूप से प्रताड़ित है, कोई मानसिक रूप से प्रताड़ित है, तो यह वन स्टॉप सेंटर किन किन विभागों और संस्थाओं जैसे एनजीओ इत्यादि के साथ मिलकर कार्य करती है?
2: जो हमारे यहाँ केंद्र पर महिलाएं जुड़ रही हैं जो
1: जी?
2: जरूरतमंद हैं या जो भी नहीं जरूरतमंद है, यदि महिलाओं को जानकारी भी चाहिए तो वो अलग अलग माध्यम से जुड़ती हैं। वो चाहे 181 टोल फ्री नंबर हो या 1090 के माध्यम से हो या हमारा मिशन शक्ति ऐप है उसके माध्यम से भी वो अपॉइंटमेंट लेती हैं। और जब हमारे सेंटर से वो जुड़ती हैं, चाहे वो टेलीकाउंसलिंग के द्वारा हो चाहे यहाँ सामने फेस टू फेस मिलती हैं तो बातचीत होती है, उसके लिए उनकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग हम चिकित्सा विभाग हुआ, पुलिस विभाग, दिव्यांगजन एवं सशक्तिकरण या शिक्षा विभाग, इस तरह के अन्य और भी विभाग हैं जिनके साथ जुड़कर उनकी ज़रूरत के आधार पर हम उन्हें सहयोग प्रदान कराते हैं।
1: अभी आपने बताया कि स्वास्थ्य विभाग भी है, पुलिस विभाग भी है, तो इसमें पुलिस विभाग या जो स्वास्थ्य विभाग है इनका क्या रोल होता है?
2: इसमें स्वास्थ्य विभाग का रोल यह है कि यदि हमारे यहाँ आने वाली महिला किसी तरह से भी चोटिल अवस्था में है तो उसको 108 एम्बुलेंस की इमरजेंसी सर्विस प्रोवाइड कराना और उसके बाद चिकित्सीय व्यवस्था हो, चाहे प्राथमिक उपचार हो या आगे जो भी चलकर इलाज की आवश्यकता हो वो हम चिकित्सा विभाग द्वारा प्रदान कराते हैं। उसके पश्चात यदि कोई महिला किसी भी हिंसा से पीड़ित है
1: जी
2: और उसको मुकदमा लिखवाने की आवश्यकता है, हम थाने द्वारा संबंधित जो भी थाना होगा या महिला चाहे तो वो 0 FIR के तहत वो अपने किसी भी नज़दीकी थाने से सूचना दे सकती है
1: जी। तो यह हुआ सुरक्षा विभाग का
2: जी।
1: कभी कभी होता है कि समाज की मान मर्यादा के डर से उसके इस कदम में उसके परिजन नहीं साथ देते हैं कि घरों में तो ऐसा होता रहता है, तुम्हें इस चीज़ को बाहर तक ले जाने की क्या ज़रूरत थी, और चूंकि मुकदमा हो गया तो फिर तो उसे न्याय विभाग की भी आवश्यकता पड़ती होगी
2: एकदम,
1: तो न्याय विभाग भी यानी इनसे जुड़ा हुआ है
2: जी मैम। इसमें हम महिला आने वाली महिलाओं की ये सहयोग करते हैं कि उन्हें जिला विधिक प्राधिकरण द्वारा जो निःशुल्क सहायता है वो निःशुल्क अधिवक्ता प्रोवाइड कराते हैं और उनको डालसा तक पहुँचाते हैं जिससे महिलाएं आर्थिक रूप से जो तंग हैं उन्हें सहयोग मिलता है और यदि आगे वो नई भी कार्रवाई करना चाहती हैं तो वो कम से कम उन्हें विधिक सलाह मिलती है कि वो भविष्य में अपने अधिकारों के लिए क्या और

0: आगे कर सकती हैं।
1: जी, पीड़ित के लिए या परिजन के लिए यह एक अच्छा मार्गदर्शन होता है,
0: जी
1: जो सामाजिक मान मर्यादा के दायरे में रहकर वो इसका लाभ उठा सकते हैं।
0: जी
1: फोन की बात जब आती है तो आज के समय में हर चीज के लिए एक हेल्पलाइन नंबर है।
0: जी
1: फिर भी मैं ये आपसे जानना चाहूंगी कि यदि कोई महिला सहायता लेना चाहती है तो उसे कैसे संपर्क करना चाहिए? मतलब उसके लिए संपर्क कर लिए मगर कुछ प्रक्रिया के तहत करेंगे ना, तो वह प्रक्रियाएं किस प्रकार की हैं?
0: प्रक्रिया बहुत आसान और सरल है। महिला यदि 181 के माध्यम से या 112 पे भी टोल फ्री नंबर पे कॉल करती है तो वो ट्रांसफ़र किया जाता है ज़िले के वन स्टॉप सेंटर को,
1: जी
0: जिसमें महिला को वन स्टॉप सेंटर की लोकेशन और संबंधित का नंबर प्रोवाइड कराया जाता है। खुद सेंटर के कार्मिक द्वारा उस महिला को भी संपर्क किया जाता है। यदि संपर्क नहीं होता है किसी भी कारणवश तो संबंधित ग्राम प्रधान या सभासद या संबंधित थाने को हम लोग द्वारा संपर्क किया जाता है कि क्या महिला की स्थिति वर्तमान में संतोषजनक है, यदि नहीं तो किस प्रकार का सहयोग दिया जा सकता है।
1: बिल्कुल, इससे यह होगा कि ये एक गंभीर कदम है।
0: जी
1: कभी कभी लोग नंबर पे ऐसे भी फोन लगा के चंचलतावश कि देखिए क्या होता है, तो ये बड़ी अच्छी बात है कि इसमें दोनों तरफ से एक संतोषजनक वार्ता करी जाती है और फिर उन्हें जब हम लेते हैं तो एक पुख्ता सबूत रहता है कि स्थानीय थाना है या स्थानीय ग्राम प्रधान है, स्थानीय सभासद है, उनके भी जानकारी में यह हो रहा है।
0: जो घटना होती है वो उनके जानकारी में होता है, जिससे महिला को एक अच्छा पारिवारिक माहौल मिलता है
1: जी
0: और उसे ये संतोष होता है कि हाँ मेरी सुरक्षा के लिए मेरे आसपास के माहौल में भी लोग हैं।
1: अच्छा, अब क्या यह सेवाएं केवल पीड़ित महिलाओं के लिए ही है या उनके जो परिजन हैं उन्हें भी किसी तरह का सहयोग प्राप्त हो सकता है?
0: इसमें मैम महिलाओं के साथ साथ जैसे जो भी प्रकरण आ रहे हैं, पहले तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी महिला खुद स्वयं होती है।
1: पीड़ित जी
0: महिला से बात करने के बाद हमको लगता है कि उसके पास बच्चे हैं तो कितने बच्चे हैं, उनको किस प्रोग्राम से हम जोड़ सकते हैं, अगर वो आर्थिक रूप से तंग है तो उसके बच्चों को भी हम अपने विभाग की योजनाओं या जो सहयोगी विभाग हैं उनकी योजनाओं से किस तरह लाभान्वित करा सकते हैं।
1: बिल्कुल
0: और यदि मामला प्रकरण से संबंधित माना जाए तो उसमें महिला की काउंसलिंग जरूरी है या परिवार में अन्य परिवारजनों की भी काउंसलिंग की आवश्यकता है तो उसके अनुरूप हम महिला से बात करते हैं कि क्या वो आमना सामना करना चाहती है पूरे परिवार का, यदि वो तैयार होती है, क्योंकि उसमें उसकी परमिशन बहुत ज़रूरी होती
1: जी
0: है
1: जी
0: कि वो इच्छुक है,
1: कि नहीं। हाँ
0: क्योंकि कई बार ऐसा होता है महिलाएं बात करने में डरती हैं।
1: बिल्कुल,
0: पहले हम उनको कंफर्ट
1: जोन
0: देते
1: प्रोवाइड
0: हैं
1: करते हैं।
0: कि वो इस चीज़ से संतुष्ट हो जाएं कि हाँ अगर कोई मेरे सामने बैठा है तो बात कर रहा है तो मेरा नुकसान नहीं कर सकता है, तो फिर उसमें हम पूरे परिवार की पारिवारिक काउंसलिंग करते हैं। और इसमें एक चीज़ मैम और मेंशन करूँगी
1: जी
0: कि जब महिला जाती है हमारे यहाँ से तो हम पूरे परिवार और महिला से ही परमिशन लेते हैं कि 15-20 दिन में हम उसका फॉलोअप करेंगे।
1: जी।
0: जैसे महिला को संतोष नहीं होता थाने से या न्यायालय से वो विदा होकर जाती है तो दोबारा उसका फॉलोअप नहीं हो पाता है, लेकिन हमारे यहाँ का प्रावधान है यदि वो परमिशन परिवार दे रहा है, महिला दे रही है, तो उसका फॉलोअप भी होता है।
1: जी
0: और ये फॉलोअप कम से कम हम साल भर रखते हैं कि जिससे ये महिला को संतुष्टि हो जाए कि जो सेंटर है वो हमें हमारी पूरी तरह से मदद कर रहा है।
1: जी ये वन स्टॉप सेंटर की जो फॉलोअप पहल है वो बहुत ही सकारात्मक पहल है। वन स्टॉप सेंटर में कार्य करते हुए आपने सोनभद्र में क्या देखा?
0: सोनभद्र में ये स्थिति है कि जो महिलाएं शिक्षित नहीं हैं
1: जी
0: तो वो अपनी साथ होने वाली घटना को भी बहुत क्लियरली बयां नहीं कर पाती, तो हमारी एक ड्यूटी ये भी हो जाती है कि महिला ये भी समझ ले कि उसके साथ जो घटना हुई है वो उसको कैसे बयां करेगी। ये
1: जी
0: यहाँ की स्थिति में सबसे ज़्यादा अलग है जो
1: देखने को
0: वो
1: मिला।
0: ये मिलता है।
1: चलते चलते हमारे समस्त श्रोताओं को भी कुछ सलाह देना चाहेंगे?
0: एकदम सलाह दूंगी कि इसमें जो भी महिलाएं, ऐसा जरूरी नहीं है कि महिलाएं केवल किसी घटना में जुड़े हमसे, यदि महिलाएं चाहती हैं कि समाज में जो भी घटनाएं हो रही हैं उसमें और क्या मेंशन किया जा सकता है या उन्हें कुछ लग

0: है कि और क्या चीजें बतानी चाहिए या किसी भी तरह की सलाह है तो वो उसके लिए भी 181 नंबर डायल कर सकती है या एंड्रॉयड मोबाइल पे मिशन शक्ति ऐप डाउनलोड करके हमारे विभागीय कार्यक्रमों की जानकारी ले सकती है।
1: जी, बहुत बहुत सुंदर बातचीत, और इस सुंदर बातचीत के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बहुत बहुत धन्यवाद बा, हम लोगन के तरफ से भी इतना बढ़िया जो जानकारी सुनल गेल, गुने के ज़रूरत बा, एक हमेशा ध्यान में रखे के ज़रूरत बा। और बहन लोगन जे भी ज़रूरतमंद होके, जे भी परेशान होके, ए तरह से उनके रास्ता दिखावे के ज़रूरत बा। तो इतना बढ़िया बातचीत के खातिर बहुत बहुत धन्यवाद बनेला श्रीमती दीपिका सिंह जी के। तो एगो मन फिर और हो जाओ, और भोजपुरी फिल्म संगीत के नाव है सखी हम ना जइबे ससुर घर में, तो ये फिल्म के गीत सुनल और आनंद लेहल जाए।

टूटे ना प्रीतिया के डोर, बिल्कुल। देखा हर रिश्ता अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होना बहन लोगन। देखा मन सुन करके तरोताजा हो गई। एकरा अलावा देखा तरोताजा और तंदुरुस्त रखे के खातिर अपना के अपना परिवार के लोगन के चना का सेवन प्रतिदिन करें, चाहे कच्चा चना होके, चाहे भेवल चना होके, अंकुरित चना होके या फिर भूजल चना होके। चना देखा कहल जाला कि सेहत खातिर बहुत ही लाभकारी होला। इमें प्रोटीन, फाइबर, आयरन, कार्बोहाइड्रेट पावल जाला। एके खइला से ना पाचन तंत्र देखा ठीक रहेला। और जन मधुमेह में देखा ये बड़ा फायदेमंद होला, ऊर्जा मिलेला, हड्डी मजबूत बनेला और एकरे साथ साथ देखा रोग प्रतिरोधक क्षमता के बढ़ावेला। तो बहन लोगन देखा कहल जाला ना कि खा चना और सदा रहा बहना। देखा छोटा दाना सेहत का खजाना होला। प्रोटीन से भरपूर मात्रा देखा मांसपेशियन के मजबूत बनावेला और शरीर की ऊर्जा प्रदान करेला। वजन नियंत्रण में भी मददगार साबित होला। काहे कि देखा में फाइबर अधिक होखला से ना पेट भरल भरल महसूस होला। और खाना जैसे अगर हम लोगन थोड़ा कम भी खाई तो एकदम तरोताजा महसूस कर सकेला हम लोगन। पाचन तंत्र खातिर देखा फायदेमंद होला। काहे कि इसे कब्ज, गैस और अपच जैसन समस्या से राहत मिलेला। और देखें जौन बाकी ब्लड शुगर, जौन बाकी मधुमेह जेके कहल जाला हो, संतुलित करत रहेला। धीरे धीरे देखा पचे वाला ये जौन तत्व मतलब चना हा, एके कारण देखा चाहे ब्लड शुगर हो एके नियंत्रित करेला। तो बहन लोगन हम लोगन अगर कि रोज एक मुट्ठी खाएल जाए कोनो भी रूप में, तो निश्चित तौर पे हम लोगन स्वस्थ और मस्त बनल रहल जाए। तो अगली बैठकी में फिर मुलाकात हुई नए जानकारी मन फिर के साथ। तो चल जाए सब बहन लोगन के, राम राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम घरनी एफएम 102.7 पर। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे भोजपुरी समाचार।

0: आज सबसे बड़ा सम्मान होगा। एपीजे तो मेरे लिए ये सबसे बड़ा सम्मान होगा। एपीजे अब्दुल कलाम।
1: आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचार के साथ हम वेद प्रकाश पाठक।
2: नमस्कार, समाचार योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में, उत्तर प्रदेश लोक निर्माण योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में, उत्तर प्रदेश दौरान वहाँ विभाग के खराब भय सड़किन के दौरान वहाँ के बर्खा उन्हें आवे जावे सड़किन के नवलते मरम्मत कई के उन्हें आवे जावे लाए आला पर्व का निर्देश दे लेकर मुख्यमंत्री का जो प्रमुख राहिन पर जरूरी मरम्मत और नवीनीकरण का कार्य पूरा प्रमुख राहिन पर जरूरी मरम्मत और नवीनीकरण का कार्य अस्पतालन मुख्य बाजारों के सरकारी कार्यालयन अस्पतालन मुख्य बाजार वाली सड़कों का मरम्मत प्राथमिकता के आधे जाए वाली सड़कों का मरम्मत प्राथमिकता के
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्ष को लगता रहे सेवा
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्ष को लगता रहे सेवा काल पूरा भेले चलावल जा रहल सेवा संकल्प से अभियान के लेके तैयारवल जा रहल सेवा संकल्प में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है। प्रदेश के लिए जो मंत्री योगी आदित्यनाथ महापौर प्रदेश जिला पंचायत शासन के विधायक हैं, महापौर नगर पंचायत और पंचायत स्तर के जनप्रतिनिधियों के नगर पंचायत और

0: जरिया से जनप्रतिनिधियों के साथ है।
1: मुख्यमंत्री ने सभी जनप्रतिनिधियों का आह्वान किया कि वे मुख्यमंत्री ने
0: प्रतीक्षा समय यूजीसी ने जून 2026 के अंग्रेजी कॉमर्स समाज जून 2026 के दोबारा अंग्रेजी कॉमर्स समाज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की ओर से जारी परीक्षा के प्रारंभिक राष्ट्रीय परीक्षा 13 सितंबर से आपत्ति दर्ज प्रारंभिक उत्तर कुंजी पर 13 सितंबर में आपत्ति दर्ज करावल जा सके बदे परीक्षा के मुताबिक यूजीसी नेट के आधिकारिक वेबसाइट पर परीक्षार्थियों के यूजीसी नेट के आधिकारिक वेबसाइट वोटिंग मशीन ईवीएम के फर्स्ट लेवल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ईवीएम वाराणसी में फर्स्ट लेवल कार्यशाला एफएलसी जिले के आज वाराणसी में भारत में एगो कार्यशाला का आयोजन कल गए। एमे भारत निर्वाचन आयोग का वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त मनीष गर्ग आप प्रदेश को मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणुवा के साथ 21 जिलन के निर्वाचन से जुड़ल अधिकारी शामिल भेल। राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री रेणुवा कार्यशाला के बारे में पूरहर जानकारी दे रहे हैं।
2: इसका उद्देश्य ये है आज के वर्कशॉप का कि अब सभी जिलों में यहाँ से जाने के बाद ये अधिकारी फर्स्ट लेवल चेकिंग कराएंगे एफएलसी। और फर्स्ट लेवल चेकिंग का अर्थ है कि ये जो मशीनें हैं इनको हम इलेक्शन में इनका प्रयोग करने से पहले एक एक मशीन को एक एक यूनिट को चाहे वो कंट्रोल यूनिट हो बैलेट यूनिट हो वीवीपैट उसको चेक करके सुनिश्चित करते हैं कि वो वर्किंग कंडीशन में है उसके सारे बटन काम कर रहे हैं किसी प्रकार की कोई उसमें कमी नहीं है और उस मशीनों को छांटा जाता है जो इलेक्शन में यूज हो सकती
0: है। प्रदेश के करीब सज्जो पूर्वी जिलन में छिटपुट बादर छोलेबा आ कुछ जगहिन पर रुक रुक के गरज चमक के साथ बरखा का सिलसिला जारी बा। मौसम विभाग के मुताबिक बरखा का वायुमंडलीय परिस्थिति बनल बा जेकरे नाते अगला चार दिन ले गोरखपुर और एकरे लगे के जिलन में कुछ जगहिन पर हल्लुक आ कुछ जगहिन पर मध्यम बरखा का पूर्वानुमान हो। उहर लगता रहे हो रहल बरखा और बैराजन से पानी छोड़ेले के नाते राज्य का दुई दर्जन से बेसी जिला अभिनो बाढ़ के चपेटा में हमें। बाढ़ प्रभावित जिलन में जिला प्रशासन की ओर से लगातार निगरानी कल जा रहा हो हर राहत और बचाव कार्य जारी बा। राहत आयुक्त कार्यालय के मुताबिक अगले 8,000 लोगों के बाढ़ प्रभावित इलाकन से सुरक्षित जगहिन पर पहुंचावल जा चुकल बा। एह बिचे राज्य का कई गो नदी अभिनो उफान पर हैं। चित्रकूट में भादो का अमौसा मेला आज से शुरू हो गए। ओजा देश के कई इलाकन से पहुंचल श्रद्धालु पवित्र मंदाकिनी नदी में आस्था का डुबकी लगोले के बादे कामतगिरी का पैकर्मा कह रहा हमें। समाचार पूरा भइल। नमस्कार।
3: एफएम 102.7 पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:05 हो रहे हैं। श्रोताओं आइए आपको जानकारी देते आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों की। रात्रि 9:30 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे करंट अफेयर्स। शाम 6:10 पर कार्यक्रम होगा ग्राम जगत लोकगीत। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 7:05 पर। श्रोताओं ईमेल पर आधारित फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम म्यूजिक गैलरी हम लेकर हाजिर होंगे रात्रि 10:00। शाम 7:31 पर कार्यक्रम होगा सबरस और फिल्म संगीत। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 6:50 और रात्रि 8:15 पर। और रात्रि 8:00 और 8:30 पर कार्यक्रम होगा सुगम संगीत। श्रोताओं एक बार पुनः बता दें रात्रि 9:30 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे

0: ए करंट अफेयर्स। श्रोताओं, ये थी जानकारी आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों की। FM 102.7 पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ओबरा का प्रसारण।
1: गाइए, गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात।
2: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
3: हेलो,
1: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
2: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
1: डायल करिए 0544529710 मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
2: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
1: ओनली ऑन AIR ओबरा।

आकाशवाणी ओबरा का प्रसारण आप सुन रहे हैं FM 102.7 पर। शाम के 6:08 हो रहे हैं। महात्मा गांधी जी का विचार है कि समाज में बदलाव की शुरुआत हम स्वयं से करें। हमारी छोटी छोटी जिम्मेदारियां ही बड़े सामाजिक परिवर्तन का आधार बनती है। श्रोताओं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का विचार है कि युवा अपने सपनों की जिम्मेदारी मेहनत और ईमानदारी से जोड़ें, तो वे समाज और देश के भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी का विचार है कि देश की मजबूती उसके नागरिकों के अनुशासन, मेहनत और जिम्मेदारी से बनती है।

श्रोताओं, विनोबा भावे जी का विचार है कि समाज की भलाई तभी संभव है जब व्यक्ति अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों के सुख दुख को भी समझे।

हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.7 पर। शाम के 6:10 हो रहे हैं और प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम जगत।

0: सब पंचन के राम राम।
1: अखिलू भैया
0: हाँ अखिलू भैया
1: आपके भी राम राम हो
0: भैया, आपको के राम राम। और देखा थे कि देखा बरखा बुनी आपके तरफ होत रहल का
1: भैया? देखा बरखा बुनी तो होते रहे, देखा तेज धूप भी रहल और एक बैग देखा भैया बुनी और बरखा होके लागत रहे।
0: धीरे धीरे बरखा होत होत भी तेज भी हो
1: जाता। हाँ हाँ, और तुरंत भैया देखा खुल भी जात रहल। ऐसने में जौन न्यूनतम तापमान जौन आज के बा ना वो देखा 26 डिग्री सेल्सियस बा, और अधिकतम जौन तापमान बा वो 31 डिग्री सेल्सियस।
0: और आर्द्रता जो रहल वो 70% हो। एक वजह से मतलब कहल जाला कि बरखा होए का पूरा पूरा संभावना रहेला। लेकिन देखा ये तो रहल हमान के जौन जानकारी बा, मौसम का जौन शुद्ध बा वह। लेकिन जौन विशेषज्ञ भैया हुआ उनके का जानकारी बा, आप केकर मौसम जानकारी कराओ थे उनके?
1: भैया देखा हम लोगन के बीच में आज जोन बा मौसम के जानकारी डॉक्टर शिवमंगल सिंह भैया।

0: जौन की तकनीकी अधिकारी मौसम वैज्ञानिक ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भू भौतिकी विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के हो, आज जानल जाए।
1: तो बिल्कुल हम तो कहते बिना देर के लिए जानकारी सुन लिया जाए।
2: नमस्कार किसान भाइयों। किसान भाइयों, मौसम पूर्वानुमान के आधार पर हम बता दें आपको कि आने वाले अगले 3-4 दिनों में न्यूनतम तापमान की बात कर लें तो वो 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहने की संभावना है। वहीं अधिकतम तापमान की बात कर लें तो 31 से लेकर 34 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहने का अनुमान लगाया गया है। किसान भाइयों, ऐसे मौसम में जो है हवा की गति जो है सामान्य से थोड़ी सी अधिक रहेगी, जो कि अनुमान लगाया गया है कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा से लेकर 13-14 किलोमीटर प्रति घंटा की चलने की संभावना है। बादलों की आवाजाही जो है बनी रहेगी और जिसके फलस्वरूप जो है कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। अगर अच्छी बारिश की बात करें तो अगले 3-4 दिनों में नहीं है। किसान भाइयों, इस समय मौसम में जो है बारिश, बादल, उमस और बीच बीच में धूप का सिलसिला बना हुआ है और ऐसे मौसम में अगर खेत में पर्याप्त नमी रहती है, लेकिन अधिक नमी और जलभराव के कारण फसलों में कीट और रोग का प्रकोप भी बढ़ता है। इसलिए जो है समय पर थोड़ी सावधानी बहुत जरूरी होती है किसान भाइयों। तो इसी क्रम में किसान भाइयों, आप लोगों ने ये देखा होगा कि इस समय धान की फसल में जो है पैनिकल इनिशिएशन, जिसको कि बालियां निकलने की प्रक्रिया शुरू होना भी कहते हैं, यह जो है ना बहुत महत्वपूर्ण अवस्था होती है। किसान भाई ध्यान रखे कि खेत में जो है इस समय बहुत अधिक पानी की कमी न होने दें। अगर पानी की कमी होती है तो वो सीधे तौर से जो है धान के उत्पादन पे उसका प्रभाव पड़ता है। इस अवस्था में खेत की नियमित निगरानी भी करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इस समय तना छेदक, गंधी बग या पत्ती संबंधित रोग लक्षण दिखाई दे तो उस पर विशेष रूप से जो है आपके आसपास में जहां से जानकारी आपको मिलती है तो दवा छिड़कना चाहिए, संपर्क करके उचित मात्रा में उचित दवा का छिड़काव करें। और अगर हम भिंडी की बात करें तो भिंडी की सब्जी जो है अभी फलन की अवस्था में है, अधिक नमी और उमस के कारण क्या होता है कि कीट और फफूंदी रोग बढ़ सकते हैं, इसलिए खेत में पानी जमा न होने दें और नालियों को साफ रखेंगे तो उसमें पानी इकट्ठा नहीं होगा, जिससे कि जो आने वाले कीट रोग और फफूंदी है उन पर कंट्रोल रहेगा। एक विशेष ध्यान दें कि जो खराब जिसे फल होता है जिसमें कीड़े लगे होते हैं, पौधे खराब होते हैं, तो किसान भाई उसको खेत में ही न छोड़ें। अगर उसको खेत में छोड़ेंगे तो उसका विस्तार होगा, जो आपका स्वस्थ फसल है उस पे भी नुकसान होगा। और अगर हम इसी क्रम में बात करें जैसे कद्दू वर्गीय फसलें हैं, जैसे खीरा, ककड़ी है, लौकी है, इन सब में लगातार अगर नमी बनी हुई है और चूंकि इसके फल जो होते हैं जमीन पे होते हैं, तो इसलिए किसान भाई विशेष ध्यान दें कि जहां पे फल हो वहां पे पानी जमा ना हो और खेत में जो है अच्छी तरह से हवा का आवागमन रहेगा तो जो आपका फल रहेगा वो स्वस्थ रहेगा। और अगर हम पशुओं की भी बात कर लें, क्योंकि अभी क्या है कि अचानक से मौसम बदल रहा है, बारिश का मौसम है, बारिश के दिनों में मच्छर और मक्खियों का जो है संख्या बढ़ जाती है, इसीलिए छोटी सी सलाह है कि जो किसान भाई पशुशाला जो है उसके आसपास जो गड्ढा है उसमें पानी जमा ना होने दें, जो सड़ा हुआ पानी होता है उसी से जो है ये खतरनाक मच्छर और मक्खियां जो है उत्पन्न होते हैं। और अगर पशुओं को कुछ मतलब लगे कि भूख है या फिर दस्त है या फिर भूख में कमी लग रही है, सांस लेने में परेशानी हो रही है और अचानक से अगर दूध देने वाली गाय या भैंस है वो कम हो गया दूध देना उसका, जो है इसमें तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें, क्योंकि इस समय मौसम इतना तेजी से बदल रहा है कि उसका जो है बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है किसान भाइयों को। और अंत में हम किसान भाइयों से यही कहेंगे, मौसम चाहे जैसा हो खेत की नियमित निगरानी सबसे जरूरी है। अगर हम सतर्क रहेंगे जो मौसम जनित जो नुकसान होने वाला है आपके पशुधन पे या फिर खेती बाड़ी पे, उससे निश्चित रूप से आप फायदा मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाइयों, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपनी फसल को मौसम के अनुसार संभालते रहें। जय जवान जय किसान।
0: चलो भैया, देखा हम लोगों के मौसम के जानकारी तो डॉक्टर शिवमंगल सिंह भैया से जानल गए, लेकिन देखा इतना बरखा बुनी होखला के बाद भी हमन के पंचायती एकदम समय से जुटी गई बा और पंचायती में ये चर्चा जरूरी बा कि बरखा बुनी के साथे न कारण अपन गांव गिराव में के साफ सफाई पर बहुत ज्यादा असर पड़ेला।
1: बिल्कुल,
0: ऐसे में जौन सार्वजनिक जगह होखेला साफ सफाई खातिर अपने ग्राम पंचायत और नगर पंचायत या अपने वार्ड सदस्य मिलकर समस्या के अवगत करावल जाए।
1: बिल्कुल सही कहत हुआ बगल भैया। देखा ऐसे ही अपने गांव के चौपाल पर कुछ लोग अपने ग्रामीण भैया लोग जन भा कूड़ा करकट के अव्यवस्था का या गंद

0: गंदगी का या उससे जो बदबू से जो परेशान रहलन तो आसपास के लोग इकट्ठा होकर के अपने समस्या का समाधान खातिर जन बा जब अपने ग्राम प्रतिनिधि से मिले गए रहलन तो वो लोग उम्मीद करत रहलन कि देखा उनका बात आसानी से समझल जाये और प्रतिनिधि भैया भी जो रहल उनका समस्या के समाधान सही सही उनको बतावत भी रहलन। लेकिन बाकी रहलन कि समस्या का समाधान जो रहल वो विदेशी भाषा में रहल तो ऐसने में जन बा का करल जाए। तो भैया देखा गांव के लोग के भैया जो भाषा हो में समझावल तो जरूरी बा।
1: तो असलो भैया गांव के लोग तो खाली भोजपुरी और हिंदी जानत रहेला तो ऐसे प्रतिनिधि जिसे ना बात उनकर लोगन समझ में ठीक से नहीं आ पावल हुई मैंने समझ में भैया देखा उस बन के बात नहीं आ पावल हुई ना कहे कि सही जानकारी सामने होखले के बावजूद भी भाषा में कठिनाई होखेला और उनकर समस्या बनल हो रहा।
0: बिल्कुल बिल्कुल बनल
1: जिसने में कौन दवाई लेवे के बा कौन प्रक्रिया अपनावे के बा और कहाँ आवेदन करे के बा ये सब समझे में परेशानी भइल होखी।
0: बिल्कुल तो देखा भगिल भैया कई बार भाषा के अंतर के कारण जनबा जरूरी जानकारी जनबा अधूरा समझ में आवेला। ऐसने में देखा संवाद का सबसे जरूरी आधार होला कि सामने वाला की भाषा साफ साफ कहल जाओ और क्षेत्रीय भाषा में उसके संवाद समझावल जाओ और अपने ग्रामीण समाज के जौन जल्दी और प्रभावी ढंग से उसके पहुंचेला उनके समझ में आवेला। और देखा भोजपुरी हो हिंदी हो इकरे जैसे भाषा जनबा अपने गांव के लोगन के अपनापन उसके देवेला और भरोसा भी बढ़ावेला।
1: तो भैया देखा ऐसे जन सेवा और जन संवाद में जौन क्षेत्रीय भाषा के उपयोग समस्या के सही समाधान लोगन तक जौन पहुंचावे में बहुत उपयोगी हो सकेला ना। तो देखा भाषा खाली बात कहे के माध्यम ना हो बल्कि बात के सही अर्थ समझौले के एगो बात बा।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और अगर समाधान नहीं होखे बारीक भाषा समझे में ना आवे तो ओकर फायदा देखा जरूरत मंद लोगन के ना मिल पावेला और ग्रामीण क्षेत्र के अधिकारी जैसे प्रतिनिधि हवन और समाज सेवी लोग हवन चाहे स्थानीय भाषा के सम्मान करत सरल भाषा में संवाद जोन करेलन उस वन से संपर्क करे
0: समझ में आवेला। तो देखा भैया हम अपन जनबा जो अपन भाषा बा हम कह सकले जा कि भैया हिंदी देखा हम का शान हो और हिंदी जनबा हमनी के पहचान हुए और हमान के बात बत कही तो ऐसे ही होत रही। लेकिन आज के पंचायती में सहायक अध्यापक अरुण कुमार तिवारी भी अभी जुटल हुए और तुलसी की रचनाओं में लोक मंगल की भावना यह विषय पर अपने मुन्नई भैया से जनबा बात बत कही करत हुए तो हम तो कहते कि बिना देर के लिए पहले बात बत कही के सुन लिया।
2: आज हम लोग अपने कार्यक्रम में जानल जाये कि तुलसीदास जी का जौन साहित्य रचना बा उनमें लोक मंगल का भावना कितना निहित बा। एक बदे आज हमार संपर्क हो गल बा अरुण कुमार त्रिपाठी जी से जौन की आप नगवा ब्लॉक के चकया विद्यालय में सहायक अध्यापक पद पर कार्यरत हम और आपसे ही आज हम लोग जानल जाये कि जौन तुलसीदास जी का रचना संसार रहल उनमें कौने प्रकार से लोक मंगल का भावना निहित रहल। अरुण जी नमस्कार।
3: जी नमस्कार।
2: ये बतावे कि तुलसीदास जी का जौन साहित्य रचना बा उनमें कैसे लोक मंगल भावना निहित रहल। लेकिन सबसे पहले आप गोस्वामी तुलसीदास जी का परिचय बता दें।
3: जी मैं बताना चाहूँगा कि गोस्वामी तुलसीदास आज कह लिया जाए तो संपूर्ण विश्व में अपनी महानतम श्रेष्ठतम रचना श्री रामचरितमानस के कारण
2: जी।
3: इतने कह लीजिए कि सर्वविदित हो चुके हैं कि अब उन्हें किसी वैसे तो किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपके माध्यम से मैं बच्चों को जानकारी देना चाहूँगा कि गोस्वामी जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। वास्तव में अब यह गांव चित्रकूट जिले में अवस्थित है
2: जी।
3: और अगर हम देखें तो चित्रकूट से लगभग 30-35 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर दिशा में यमुना नदी के तट पे ये गांव है राजापुर, वहां इनका जन्म हुआ था। और ये इनके पिताजी जो थे उनका नाम आत्माराम दुबे और इनकी माता हुलसी देवी थी। हुलसी देवी वास्तव में जो उनका नाम है हमें लग रहा है कि उसी के तुकांत के आधार पे इनका नाम भी तुलसीदास रखा गया था, और ये जो है शुक्ल पक्ष के 7वें दिन यानी सप्तमी को 11 अगस्त सन 1511 ऐसा माना जाता है कि इनका जन्म हुआ था। और इनके बारे में कई सारी

0: तंतियां हैं। जैसे कि कहा जाता है कि जब गोस्वामी जी गर्भ में थे तो लगभग 12 महीने गर्भ में रहने के बाद इनका जन्म हुआ था, और इनके मुंह में सभी दांत थे, ऐसी किंवदंती है। अब
1: लोक
0: वैज्ञानिकता
1: कहावत
0: जो भी
1: ना।
0: हो, हाँ, लेकिन जो लोक मत है उसमें ये बातें आती हैं। और ऐसा ही नहीं, इनका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा था, लगभग 4-5 वर्ष के बच्चे के समान इनका स्वास्थ्य था। और जब ये इन्होंने जन्म लिया तो ये सामान्य बच्चों की तरह रोए नहीं, बल्कि इनके मुंह से राम शब्द निकला।
1: बिल्कुल।
0: तो इसी के आधार पर बचपन में इनका नाम राम बोला भी रखा गया, ऐसा माना जाता है, ऐसा बताया जाता है। जैसा कि इसका वर्णन इन्होंने स्वयं अपनी रचना विनय पत्रिका में भी किया है कि राम बोला, राम शब्द ही मेरा जो है सर्वप्रथम मेरा उच्चारण है।
1: बिल्कुल सही बात आप कहते हो, माने यही से इनके बचपन में राम बोला भी कहल जाए। अच्छा अरुण जी, हम ई जानल चाहब कि जौन कहल जाला कि तुलसीदास जी का रचना जौन रामचरित मानस बा, उनमें लोक मंगल का भावना निहित है, त लोक मंगल का पर्याय का के बता दें।
0: जी, ये तो हम ऐसे कहें कि अगर लोक हित या लोक मंगल की भावना, तो ये तो गोस्वामी जी के रचना का मूल है, रचना का प्राण है। और जहाँ तक लोक कल्याण की बात है तो उसमें केवल जनमानस की ही बात नहीं है, संसार के सभी प्राणी, पशु पक्षी, सभी जितने हैं सबके कल्याण की बात करने की बात इसमें निहित है। और अगर ये कहा जाए तो इस लिहाज से कवियों में लोकनायक की छवि, लोकनायक कवि की छवि अगर किसी की है तो वो गोस्वामी जी की है। उन्होंने उस युग में, जिस युग में गोस्वामी जी रहे हैं, जो उनका हम जीवन काल अगर देखते हैं कि उस समय मुगल शासन था अपने देश में, और समाज में उस दौरान अनेक प्रकार की विसंगतियां, बल्कि कह लीजिए कि जो लोकाचरण की भ्रष्टतम अवस्था थी, इस तरीके की चीजें उस समय व्याप्त थी, अनेक प्रकार की बुराइयां थी समाज में। समाज जो है उस युग में कई प्रकार के अत्याचारों को झेल रहा था। वहां से किसी एक ऐसे बड़े साहित्य के द्वारा, जो कि हम जानते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण होता है,
1: बिल्कुल।
0: तो समाज में चल रही उन बुराइयों को, उनकी बुराइयों के सुधार के दृष्टिगत किसी ऐसे बड़े साहित्य की आवश्यकता थी। तुलसीदास एक दिन में कोई नहीं बनने वाले हैं, ये हम माने। उस समय तत्कालीन जो सामाजिक दशा थी, उस दशाओं में, उन स्थितियों में ऐसे किसी लोक मंगलकारी साहित्य की आवश्यकता ही थी, और उसी आवश्यकता की प्रतिपूर्ति के स्वरूप हम माने तो श्री गोस्वामी जी का ये श्री रामचरितमानस जो महाकाव्य है ये आता है। और इसमें भारतीय समाज में, हम अगर भारतीय समाज को 2 भागों में बांट करके देखें, तो रामचरितमानस के आगमन से पूर्व और आगमन के पश्चात
1: अच्छा।
0: की जो सामाजिक व्यवस्था है, जो पूरा ढांचा है, जो पूरा ताना बाना है, ये बिल्कुल आमूल चूल परिवर्तन के दौर से गुजरेगा। इसमें उन्होंने लोक मंगल के लिए, लोक कल्याण के लिए जिस पात्र को, अपने आराध्य पात्र प्रभु श्री राम को गढ़ा है, और जिस बारीकी से उन्होंने गढ़ा है, जिस तरीके से राम, प्रभु राम अपने जीवन के आरंभ से लेकर के तमाम अनेक घटनाओं में, भांति भांति की घटनाओं में, अपने चरित्र में जिन जिन प्रक्रमों को अपनाते हैं, और जैसे वो बढ़ते जाते हैं आगे क्रमशः, उनके एक एक शब्द में, एक एक भाव में लोक मंगल निहित है, दिख पड़ता है। और अगर हम ये जानना चाहें तो प्रार्थना में ही उन्होंने, गोस्वामी जी ने आरंभ ही यहीं से कहा किया है कि मंगल करनी कलमल हरनी। ये राम कथा ही जो है वो केवल मंगलकारी ही है, सबके मंगल के लिए है,
1: बिल्कुल।
0: उसमें किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं है। जैसा कि उन्होंने लिखा है कि रामचरित राकेश कर सरिस सुखद सब काहू, और सज्जन कुमुद चकोर चित हित बिसेखि बड़ लाहू। तो राम, प्रभु राम का जो चरित्र है, जो आदर्श है, उसे वास्तव में उन्होंने ऐसे माना भी जाता है, और ये सत्य भी है कि उद्धरण तो उठाया गया है मूलतः रामायण से, परंतु उसके बाद भी लोकहित के मुद्दे पर उस चरित्र के अनेक विशेषताओं को उभार कर सामने लाने का पूरा श्रेय वो शिल्प, उस इस महान शिल्पकार गोस्वामी जी को ही जाता है।
1: बिल्कुल सही बात आप कहत हुआ। कहल भी गल बा कि कीरत भनित भूत भल सोई, सुर सर सम सबकर हित होई।

0: तो हम अरुण जी आपसे आज जानल चाहब कि अपनी जौन गोस्वामी तुलसीदास जी रन तो इनके साहित्य में जौन लोक मंगल का भावना रहल थोड़ा सा एक स्पष्ट कह दें, पर प्रकाश डाल दें।
1: जी, जैसा कि अभी चर्चा में बात हो रही थी कि उनकी जो प्रमुख रचना है, प्रमुख कृति है,
0: जी
1: श्री रामचरितमानस, वास्तव में ये गोस्वामी जी की प्रौढ़ कृति है।
0: जी
1: ये शिखर है, ये उत्तुंगता है, और वहाँ पे इस रचना में उन्होंने लोक कल्याण की चेतना को एक एक चौपाई में, मानस की प्रत्येक चौपाई में, हम जहाँ कहीं भी देखेंगे तो बिल्कुल हम उसमें पाते हैं। जैसे कि समाज की स्थिति कैसी हो, राजा कैसा हो, और प्रजा के क्या दायित्व और कर्तव्य हों, और उसमें भी अगर पारिवारिक हम पृष्ठभूमि की बात करें तो परिवार में भाई से भाई का संबंध कैसा हो, पुत्र कैसे हों, आदर्श पुत्र के रूप में हम अगर राम, श्री राम का चरित्र देखें तो वो कैसा होना
0: बिल्कुल,
1: चाहिए,
0: शिष्य कैसा
1: शिष्य
0: हो।
1: कैसा हो, माता कैसी हो। कई उदाहरण हैं, बताते समय मेरे रोए खड़े हो रहे हैं। प्रभु श्री राम के वन गमन के समय उनकी अपनी माँ कौशल्या का बर्ताव देखिए आप। पितृ आज्ञा को मानने के लिए उनका प्राण से प्रिय पुत्र वन जा रहा है, और वहां भी माता कौशल्या उन्हें रोक नहीं रही है अपने अधिकार से, वह उसे कर्तव्य पथ पर जाने के लिए आगे कह रही है।
0: बिल्कुल।
1: तो ये जितने भी उदाहरण हैं, हम अगर उन्हें देखें तो हम ये महसूस करेंगे कि वास्तव में गोस्वामी जी के इस पूरे मानस में गढ़े हुए जितने चरित्र हैं और उन चरित्रों से निकली एक एक बातें, उनकी एक एक भूमिका, उन सारी भूमिकाओं में हम पाएंगे कि वास्तव में केवल और केवल लोक हित ही छिपा है। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, राज्य के लिए उन्होंने क्या कहा, वर्तमान उस समय की जो स्थितियां रही होंगी, राजा कैसा रहा होगा, इसका भी छिटपुट मिलता है प्रभाव। जैसे इस चौपाई को अगर हम देखें कि नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचहिं नट मरकट की नाई,
0: बिल्कुल।
1: अर्थात कि समाज में उस समय की जो दशा रही होगी, उसमें जो कलिकाल की दशा है, कि उसमें केवल अपनी ही भार्या के वशीभूत होकर के व्यक्ति सारे आचरण भूल करके क्या क्या बर्ताव कर रहा है, और वहां से उत्थान पर ले जाना है इस समाज को, प्रभु श्री राम के चरित्र के जैसा बनाना है एक एक व्यक्ति को, ये टारगेट लेकर के चले हैं वो।
0: बिल्कुल सही बात आप कहत हुआ। यही बदे कहल भी गयल कि एक साहित्यकार कलन की सुर सुर तुलसी सस केशव उद्गम दास, अब के कवि
1: कल का
0: खद्योत
1: द्योत
0: सम
1: है।
0: जहाँ तहाँ करत प्रकाश। त वास्तव में तुलसीदास जी सदैव हम लोगन के मानस पटल पर अमर रही हैं, और आज आप तुलसीदास जी के बारे में बतौलें। तुलसीदास जी के साहित्य में लोक मंगल का भावना कौने प्रकार से निहित बा एके बतौलें, एकरे बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी, धन्यवाद।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

0: उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अनुमन्य सुविधाओं हेतु कृषि विभाग से संपर्क करें। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: अचलो भैया,
2: घरेलू भैया,
1: देखा कितना बढ़िया हम लोगों के तुलसी की रचनाओं के लोक मंगल की भावना के बारे में जौन अरुण कुमार तिवारी भैया जौन सहायक का अध्यापक रहलन और मुनय भैया देखा एकदम फरिया फरिया के बात उनसे कैलन जानकारी सुनल गई और देखा हम लोगों के जैसे कि हिंदी हमरे पहचान बाना
2: बिल्कुल
1: वही तरीके से देखा हम लोग गाँव गिराव में रहीला और खेती बाड़ी करीला किसान हम लोग तो ओमे हम लोगन के भी आपन पहचान बनावब जरूरी हो
2: बहुत जरूरी बा। देखो कहल जा रहा ना कि देखो संवाद स्थापित करे बदे आपन क्षेत्रीय भाषा खासो से हिंदी भाषा तो जानल बहुत जरूरी बा। वैसे ही देखा खेती में माटी माई भी जनबा अपने किसान से

0: दिन बाद संवाद करे लेन, कहे लेन भैया देखा हमरे हमार माटी का जो जांच बा वो जरूर करावा, और जांच के हिसाब से जौन भी बीज उपयुक्त हो वो बीज को इस्तेमाल करके अपन फसल अपनावा।
1: तो यही से अपन पहचान बनावे खातिर ना हम लोगन के संरक्षित खेती एक आधुनिक कृषि तकनीक बनावे के बा। और वही तरीके से अपन गृह वाटिका के बात जब आवला तो देखा गृह वाटिका में भी पोषण भी बा, आय भी बा।
0: बिल्कुल सही कहत हुआ। और जाहिर सी बात देखा हर सब कहल जाला कि कैसे अपने आय के बढ़ावल जाए, आर्थिक शक्ति थोड़ा सा रखल जाए, तो ऐसे में देखा गृह वाटिका कैसे पोषण भी बा और कैसे आय भी बा, ये विषय पर इंद्रशेखर सिंह मौर्य जिनके प्रगतिशील किसान हुए उनसे अपन भोला भैया का बात बात के हो रहा बा, तो हम तो कहते कि बिना देर के पहले सुनल जाए और गुनल जाए।
1: हाँ
2: श्रोताओं, अगर खेती किसानी करने के लिए जज्बा हो तो व्यक्ति 12 महीना खेती करके अच्छा उत्पादन कर सकता है और उससे आय में अच्छी वृद्धि भी कर सकता है। आज सोनभद्र जनपद अंतर्गत घोरावल ब्लॉक के बिसुंदरी में इंद्रासन मौर्या भैया के खेत के मेढ़ पर हैं और यहाँ देख रहे हैं कि बहुत भांत भांत के जोन बाकी फसल लगा हुआ है। नर्सरी बहुत बृहद रूप में टमाटर के किए हैं और क्या क्या है ये तो सब हम गिन नहीं पा रहे हैं। इंद्रासन मौर्य भैया से ही जानेंगे चूँकि इनके खेत के मेढ़ पर हैं और बहुत बड़ा कुआँ है। इंद्रासन मौर्य भैया आपके बहुत बहुत स्वागत बा, इतना बढ़िया जोन बाकी आप खेती के लिए हों।
3: जी
2: तो ये का का लगोले हों देखते हैं कि जोन बाकी पिलर जा रहे हैं।
3: देखें
2: हाँ
3: पपीता भी लगल है। मतलब कि खेती का मेन मकसद हमारे का है, एक तरह से एके गृह वाटिका, अच्छी गृह वाटिका कह सकन, जौने में कि बड़ा वाला जामुन जौन 10 जामुन 1 किलो होए,
2: बिल्कुल तो
3: जामुन भी लगल बा,
2: बहुत चौड़ा चौड़ा पत्ती है
3: हाँ,
2: ओकर।
3: और लीची भी लगल बा देखते हैं,
2: जी जी जी
3: और आम भी लगल है, आम में लंगड़ा है, दशहरी है और एक बड़ा वाला आम है,
2: ये क्या
3: ये फालसा है।
2: फलसा?
3: ये आयुर्वेद के सिद्धांत के अनुसार फालसा भी आदमी के लिए बहुत ही जरूरी है, ये वजह से फालसा 2 पेड़ लगा दे है कि कम से कम अन्य लोगन के ना दे सके तो अपने खाए बार हो जाए, तो 2 पेड़ फालसा लगल है।
2: अर्जुन भी देखते हैं फल रहा बा
3: अर्जुन
2: आपके।
3: भी
2: और ये
3: बा,
2: का है जो आप कहते हैं कि शुगर के?
3: शुगर के लिए शुगर का वो पौधा है, और आप आंवला हमारे देखे 6 पेड़ आंवला लगा हुआ है
2: बिल्कुल बिल्कुल।
3: और ललका रोहिणा लगा हुआ है।
2: अच्छा,
3: तो
2: ललका रोहिणा का काम है?
3: वो ललका रोहिणा जो होता है ना, उसका एक क्या है कि जैसे आजकल पीरियड, जैसे औरतों का महामारी आता है, पीरियड आता है, या खून की कमी होता है, या कोई भी पेट में प्रॉब्लम होता है, उसके लिए रोहिणा का पत्ता ज़्यादा कारगर होता है। लेकिन आजकल जंगल पहाड़ों में मिलता अगर कहीं है तो लोग उसकी छालें छोड़ा लेते हैं, लेकिन छाल से दुगना तगड़ा पत्ता काम करता है। तो उस पत्ते को उबाल करके उसमें थोड़ा सा मिश्री ना करके चाय नियर अगर पिया जाए तो आदमी के में जैसे औरत है ना, तो उनको पीरियड जैसी समस्याएं, जो कालापन हो जाना या फिर समस्या जो आती है, ये पूरी तरह से ठीक हो जाता
2: ये पाइप का है गोला गोला करके आप
3: है।
2: घेर ले हैं?
3: अरे भैया एकर मेन मकसद का रहा कि आज का वैज्ञानिक लोग तो बार बार कहना बारिश बहुत कम हुई, लेकिन हम तो बार बार यह ध्यान देली कि बारिश बहुत अधिक हुई।
2: हाँ
3: यही निगाह में वैज्ञानिक इधर कहते हैं बारिश कम हुई, इधर हम कहते हैं बारिश ज्यादा हुई हमारे सिद्धांत से। इसी वजह से इस वर्ष हमारा लगभग 10 बीघा मिर्चा लगल, पूरा मिर्चा हर साल जमीन पर लगावत रहली, लेकिन असो पूरा मेड़ा बनवा के लगवली,
2: क्या
3: और
2: बात,
3: मतलब मेड़ा बनवले का नतीजा का कि इतना बारिश होने के पौधे पर कोई असर
2: कोई
3: नहीं
2: असर
3: हुआ।
2: ना हो।
3: लगभग लगभग मिर्च का फसल इस वर्ष 60% आज के डेट तक 60% मिर्चा खत्म हो चुकल है। और ये जो आप गोला गोला का बात कहना हम एकर हम तैयारी जैसे कि टमाटर के बीज हम ना देली, अगर झकड़ी हो गल छोटा पौधा रहा वही स्थिति में का हुई कि पानी मारिए झटका से पौधा खत्म हो जाए, अगर बार बार पानी ऊपर पड़त रही तो मैं गलन सड़न तैयार हो जाए ना। ये फंगस के बचे के पाके जौन हम पॉलिथीन का व्यवस्था रख ले ही, आ ये जौन हाँ 20 फीट के जौन पाइप हुआ है दोनों लोग खूटा गाड़ के उसमें पहना के ऊपर से मतलब गोला घुमा दिले ही, तो मतलब बरसाती भी फटी हमारे ना, जब भी चाह तुरंत ओढ़ा देव और तुरंत ढक देव। तो ये वजह से मैं लगभग 45-50 पत्ता हमारे टमाटर का नर्सरी जौन है, लंबे पैमाने पर खेती करे का, तो लंबे पैमाने पर जब खेती करे के भैया तो व्यवस्था देखे
2: तो
3: बनाओ
2: नर्सरी
3: पड़
2: तो बहुत काफी के लिए हो ना आप?
3: काफी रहिया भैया काफी है, तो काफी खेत भी लगाना बा हमें,
2: इतना में कितना लग जाए लगभग?
3: इतना में लगभग 10 बीघा के आसपास लगेगा।
2: 10 बीघा
3: जी
2: हाँ। तो एक नर्सरी करे में का ध्यान देवल टमाटर के?
3: देखे नर्सरी में बहुत ध्यान तो नहीं देना बा, लेकिन देना इस चीज का बा कि पानी का,
2: हाँ
3: मतलब जब भी बीज नामे तो बहुत भुरभुरा में भी नामे, बहुत कड़ा में भी।

0: नाम है।
1: अच्छा
0: और हमार नावे का सिस्टम अलग होला, जैसे खेत के जोत देली, बिया छीट देली आ हल्का हल्का बालू नियर मट्टी फेंक देली, बस छोड़ देली ओके लमेरा समझ के। ये से कि जेवनी बीज के जितना ही सेवा करके आप लगई हैं उतना खराब होला।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तो एक इसी तरह से ना देली, एको अंगरुआ ना लगन, ना कोई भी दिक्कत रहल। आज पौधा है आपके पास लगभग बीज नर्सरी से लेके आज 28 दिन का पौधा ही है।
1: कौन प्रजाति के हा?
0: ये टमाटर इस वर्ष अर्ली प्रजाति में लगा हुआ है, खास करके किसान भैया लोगों के संपूर्णा के नाम से जाना ना
1: अच्छा,
0: जी।
1: ये गलन कम होला?
0: नहीं गलन ना होला, एक साइज और क्वालिटी और मेंटेन हमेशा रहला शुरू से आखिरी तक। जवन है बाजार में भी लोडिंग खातिर कैरेट में भरे खातिर सुविधा रहला। दूसरी चीज इनमें पकाव जवन है एक समान होला,
1: अच्छा,
0: आ वजन भी होला, टाइट भी होला, पक गई पर 10 दिन तक तो पड़ल रहे तो कोई दिक्कत ना है। आ इनमें एक खासियत और है कि ये शुरू से लेके आखिरी तक जो है साइज मेंटेन रहला।
1: अच्छा, एके अच्छा फलत लगे, एके बदे का कुछ ध्यान दें हम लोग, कैसे लगाएं एके? अब तो हम यहाँ से ले जाए बिया आप, तो एके
0: देखे
1: लगाएं हम का ध्यान दें, एके खाद का दें?
0: देखे लगावे खातिर सबसे बड़ा में ध्यान देने वाली बात यह है कि टमाटर में जौन है पहले जहाँ लगावें वहाँ नमी कम रहे। कोशिश करें कि पौधा इस समय ऊंचा जगह पर ही लगावें,
1: हाँ,
0: आ ऊंचा जगह रही तब नहीं तो बारिश हमेशा होता तो पौधा खत्म हो जाए
1: गल जाए सब।
0: जी।
1: बिल्कुल बिल्कुल, तो ये मैं और
0: आ
1: क्या देख रहे
0: दूसरी
1: हैं
0: चीज
1: पड़े?
0: है लगावे के समय पहले बावस्टीन का घोल बना के या तो गोद के लगा दें या तो भरपूर अगर व्यवस्था बात है पौधा पर नहवा के लगा दें, लेकिन बावस्टीन का नहवाई जरूरी बा। ऐसे खास खास करके इस समय जो टेम्परेचर और बारिश जो लगातार होता है, आज ये 10 दिन का दिन हो गल सूर्य नारायण का दर्शन नहीं भेल, तो ये हालात में बीज के बचाई व लगाई बहुत मुश्किल की स्थिति बा।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: आप देखत हो खेत में अभी भी सीड़ा लगल बा, पानी एकदम बचकत बा, उसमें टमाटर के खेती करे के बा, तो ये हालात में टमाटर लगावल नहीं जा सकत। अगर किसान भैया लोग टमाटर लगाओ के विचार भी बनावत हुई है तो जब तक मौसम साफ न हो तब तक टमाटर ना लगावें, एक ध्यान दें
1: ये जो आप छाया है के बनौले रहन, अभी
0: जी
1: तो हालांकि खोल देले हूँ,
0: जी
1: लेकिन छाया बनावे के पीछे का आयकर रहस्य रहल?
0: आपके बतौली है ना कि मतलब छाया का रीजन का रहल कि इनमें सबसे बड़ा जौन पानी का झटका, छोट पौधा रही झटका लगी तो पौधा जवन है अंगरुआ रोग लग जाई सड़ जाई। अगर हम पौधा लिमिट मात्रा में रखे के है तो हमें जवन है पौधा के मतलब ढक के रखे कोई पॉलिथीन से सफ़ेद पन्नी से अगर हम ढक देते ही तो सूर्य का किरण नीचे दुगुना हो जाला, और जब सूर्य का किरण नीचे दुगुना हो जाला तो पौधा तेजी से ना बढ़ला धीमा हो जाला। अगर यही स्थिति अगर बनल रहल तो पौधा कल जौन है बरसाती से फिर पौधा के ढक देवल जी
1: खेती से लेकर बागवानी तक आप बहुत किले हवन, वही
0: जी
1: में औषधि पौधन के बहुत रोपण किले हवन,
0: हाँ।
1: एकर पीछे का उद्देश्य है? मतलब कि और किसान भाई लोग कैसे के कर सकें?
0: देखें जिंदगी के लाइफ में एक चीज हम जरूर कहल चाहब कि खेती तो किसान भैया लोग करते हुए, लेकिन सबसे बड़ा चीज है गृह वाटिका। गृह वाटिका बनाई बहुत जरूरी है, अगर गृह वाटिका बना लिया तो हर एक आवश्यकता का पूर्ति जो है ना हमारे पास हो जाए। जैसे आप देखें आम बतौली सहजन बन बतौली
1: हाँ
0: देखें सहजन भी लगल है, हींग का पौधा लगल है, एक विदेशी फल 2-3 ठे लगल हुआ।
1: अच्छा अच्छा
0: तो
1: अच्छा
0: मतलब लगावे के हर एक चीज लगा दिले है कि हम इस सोच के लगवले है कि हमारा आवे वाली पीढ़ी जवन है अगर खाई ओके तो कही कि दद्दा रहना
1: हाँ,
0: पापा रहना लगवले हुआ तो आज हम
1: बिल्कुल।
0: खात है,
1: अब बहुत
0: पहचाने
1: बहुत तो पौधा के पहचाने के भी वो हो
0: के
1: जाते।
0: ज्यादा दिक्कत ना रही, जवन पौधा सोचिए तो खाए के मिल
1: हाँ, इस तरीके के जौन बाकी खेती किसानी के माध्यम से बहुत कुछ कर सकलन,
0: जी।
1: तो और का कुछ कहीं है चल चलावत लोगन के?
0: चला चलावत यह हम कहल चाहब खेती कितना हो लंबे पैमाने पर करें लेकिन 2 बिस्सा 4 बिस्सा 5 बिस्सा में हर एक पौधा लगा के गृह वाटिका का जरूर रूप दें। एक ही किसान हर तरह से ऑर्गेनिक करे का प्रयास करें, अगर हम सबके ऑर्गेनिक ना खिया सकती ही तो कम से कम शुद्ध अपने तो ऑर्गेनिक खा सकीला।
1: बिल्कुल
0: इस
1: बिल्कुल
0: सोच अगर हर एक इंसान रखी तो शायद घर घर ऑर्गेनिक खाए का या घर घर ऑर्गेनिक मन में जिज्ञासा हुई तो ऑर्गेनिक खेती करे के विचार बनने लगी।
1: बिल्कुल, तो श्रोताओं देखो कितना बढ़िया बात बत कही हो रही थी, और सबसे महत्वपूर्ण कि इतना बढ़िया खेती किसानी करे के अनुभव भी है इंद्रासन मौर्य भैया के। आप सोनभद्र जनपद अंतर्गत घोरावल के बसुंधरी गांव से हवन, और आपके खेत के मेढ़ पर आज जौन बाकी पहुँचे के मौका
0: जी
1: मिलल, इतना अच्छा जानकारी और इतना बढ़िया खेती किसानी करे खातिर आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बहुत बहुत धन्यवाद भैया भगेलू भैया। एक चीज देखा।

0: पूरे बात का निचोड़ यह रहल कि कैसे अपने खेती का लागत कम करल जाए, उत्पादन अच्छा और ज्यादा करल जाए और गुणवत्ता युक्त करल जाए, और गुणवत्ता इतना अच्छा रहे कि बाजार जाए तो ओकर भाव अच्छा मिले। तो आज कहीं का बाजार भाव लगल बा कहाँ थे?
1: भैया देखा, आज हमारे हाथ है दुधी मंडी के टटका बाजार भाव
0: अच्छा
1: मिलल
0: अच्छा
1: बा, जौन की बसंत कुशवाहा भैया भेजले हवन और
0: हाँ।
1: कुंतल में बा।
0: तो बिना देर के लिए बांच दे फिर।
1: देखा आलू बा 1100 से 1200 रुपये कुंतल,
0: अच्छा
1: और प्याज 4200 से 4500, टमाटर 2500 से 2600, और बोड़ा 1500 से 2000, कोहड़ा 1200 से 1500, अरुई 1600 से 1800, बंडा 2200 से 2500, और लंबा बैगन 1800 से 2000, गोल बैगन जोन 2500 से 3000। ओकरे साथे देखा परवल बा 2500 से 3200, लौकी 1600 से 2000, करेला 3000 से 3200, भिंडी 1200 से 1500, नेनुआ 2000 से 2200, और कुनरू 1600 से 1800, तरोई 2500 से 2800, और मूली देखा 3000 से 3200 बा, हरियर मरचा 3000 से 3200, लहसुन 15000 से 17000, धनिया 12000 से 15000, हरा धनिया हो, और पालक देखा 3000 से 3200 बा, और अदरक 11000 से 13000, सूरन 4500 से 5000, चौराई साग 1600 से 2000, और खेक्सा देखा ये हाइब्रिड वाला बा, 5000 से 5500,
0: अच्छा
1: और खीरा 2500 से 2800, मकई 1000 से 1200, और गाजर 3000 से 3200, शिमला मिर्च 4500 से 5000, चुकंदर 2500 से 3000, और करौंदा 3000 से 3500, कच्चा केला 1500 से 1600, फूल गोभी 5000 से 5500,
0: सैकड़ा हुई।
1: नहीं नहीं कुंतल बा
0: अच्छा
1: भैया,
0: कुंतल है। हाँ
1: और पत्ता गोभी 2800 से 3000 रुपया कुंतल, और नींबू देखा 150 से 170 रुपया सैकड़ा।
0: प्रति सैकड़ा। तो ई तो रहल दुधी मंडी के बाजार भाव बसंत भैया के, साथे साथ इंद्रासन सिंह मोहर भैया के, और मास्टर साहब अरुण कुमार भैया के भी धन्यवाद दिहल जरूरी बा। तो धन्यवाद कैसे करावत हो यू बता दें आप।
1: भैया देखा धन्यवाद के क्रम में तो हम लल्लू भारती उनकर संगतिया भैया के एक किसानी गीत से करावल चाहत
0: तो
1: है,
0: तनिको न हो देर हो
1: एगो
0: जाएगो
1: मन
0: मन
1: फेर।
0: फेर।

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: महिलो भैया,
3: हाँ चलो भैया,
2: अभी हम संदेश सुनत रह लीजिए और संदेश सुनने से पहले जिन बार लल्लू भारती और संघाती लोगों का एगो किसानी गीत के माध्यम से मन फेर भी कर, लेकिन देखा परंपरा विवाह और कहल जाला ना कि समय जन बार कभी रुकत नहीं, और पंचायती भी देखा थे कि अब अपने समेटे वाले समय पे आ चुकल बा, लेकिन देखा कालो अपन पंचायती बैठी तो काल पंचायती में का हुई ओकरे बारे में बता दे।
3: तो भैया देखा काल पंचायती में हुई कि आपातकाल में जीवन के आधार प्राथमिक उपचार विषय पर जो डॉक्टर सुमन जायसवाल जो चिकित्सा अधिकारी सोनभद्र के बात बातचीत बा, और उनसे बातचीत कैले हवन अपन
2: जलेबी
3: भौजी। हाँ हाँ,
2: तो देखा भैया जलेबी भौजी का और अपन डॉक्टर साहिबा का बातचीत आकर के सुनल जाए, लेकिन जाहिर सी बात बा कि आजकल बरसात का जो मौसम चलत बा उमेन घर के महिलाएं हो चाहे अपन बचवा लोग हो चाहे हम लोग खुद हो उमेन साफ सफाई का ध्यान रखल बहुत जरूरी बा। कहे देखा बरखा बुनी के दिन में होला ना कि गैया भी देखा छिपेलिन आड़ खोजेलिन, तो अपन जन बा जन भी उनकर गोबर बा या मूत्र बा ऊ सब जन बा फैले से भी थोड़ा सा, हालांकि हमान के बदल नुकसान नहीं, लेकिन फिर भी जैसे कूड़ा कचड़ा बा तो ऊकरी वजह से गैया गोरू भी बड़ा नुकसान होला उनके।
3: और भैया देखा जोन भी हम लोग चारा दही ला ना ठूठ बचल रहेला ऊ देखा इधर उधर फैलला तो ओमे देखा मच्छर बैठ जाला।
2: बिल्कुल,
3: जब मच्छर बैठा रहे भैया तो देखा अपन जोन पशु चौहा हवन ऊ सब के कटिए तो वो बीमार हो जाये।
2: बिल्कुल,
3: और जब अपन ठूठ एक जगह जुटाई के भैया गोबर के साथ गोबर में रख दिया जाए तो उसे खाद ले लेवल जाए, और ओकरे साथ आज पंचायती के बेला बखत पूरा हो गए चले के
2: तो सब पंचन के राम राम, राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम जगत। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.7 पर। शाम के 6:50 हो रहे हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

हीरो 35 फिल्म में अभी आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल को, बोलते कौसर मुनीर के और संगीत दिया था साजिद वाजिद ने। आकाशवाणी ओबरा से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत FM 102.7 पर।

कार्यक्रम का अगला गीत आइए आपको सुनाते हैं ऐश किंग और अरुणिमा भट्टाचार्य की आवाजों में। फिल्म का नाम है हर्टलेस, बोल अराफत महमूद के और संगीत है गौरव दागोनकर का।

देसी बॉयज। इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे सोनू निगम और शिल्पा राव को। इरशाद कामिल के बोल थे और संगीत था प्रीतम का। इसी के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत अब समाप्त होता है।

आकाशवाणी का ये ओबरा केंद्र है एफएम 102.7 पर। शाम के 7:05 हो रहे हैं और प्रस्तुत है कार्यक्रम लोकगीत। कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे आज के कलाकार हैं लल्लू भारती और इनके साथी। आइए सुनते हैं इनके स्वर में देवी गीत।

आकाशवाणी ओबरा से इस वक्त आप सुन रहे कार्यक्रम लोकगीत। कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे आज के कलाकार हैं लल्लू भारती एवं इनके साथी। अभी आप सुन रहे थे इनके स्वर में कहरवा। अब आइए सुनते हैं निर्गुण।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोकगीत। कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे आज के कलाकार थे लल्लू भारती और इनके साथी। ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। एफएम 102.7 पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही पलों में आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
2: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
1: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
3: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बारिश और बाढ़ से खराब हुई सड़कों की तत्काल मरम्मत के दिए निर्देश, कहा आगामी त्योहारों से पहले पूरा किया जाए सारे काम। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सेवा संकल्प अभियान को लेकर स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों को परखा, कहा सेवा और जन कल्याण के संकल्प के साथ लगाए जाएंगे विशेष स्वास्थ्य शिविर। भारत ने एचपीवी टीकाकरण अभियान में 80 लाख टीकों का आंकड़ा किया पार, उत्तर प्रदेश ने हासिल किया वैक्सीनेशन का निर्धारित लक्ष्य। प्रदेश भर में कल किया जाएगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, सुलह समझौते के माध्यम से होगा लंबित मामलों का निस्तारण। और प्रदेश के कई जिलों में बारिश का सिलसिला जारी, मौसम विभाग ने आगामी 5 दिनों में राज्य के पूर्वी और पश्चिमी जनपदों में जताया वर्षा का अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक में बारिश और बाढ़ से खराब हुई सड़कों की तत्काल मरम्मत करने के निर्देश दिए हैं। श्री योगी ने काम में तेजी के साथ गुणवत्ता का भी पूरा ध्यान रखने को कहा है। पेश है एक रिपोर्ट।
4: मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक में कहा कि आगामी पर्व त्योहारों में बड़ी संख्या में लोग राज्य के विभिन्न जनपदों में यात्रा करेंगे, ऐसे में पर्वों से पहले आवश्यक मरम्मत और नवीनीकरण का काम पूरा कर लिया जाए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि गड्ढा मुक्ति का काम केवल पैच वर्क तक सीमित न रहे, जहां सड़क तत्काल खराब स्थिति में है वहां उसे अभी चलने योग्य बनाया जाए और बरसात समाप्त होने के बाद जरूरत के अनुसार स्थायी नवीनीकरण कराया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षण संस्थानों, अस्पतालों, मुख्य बाजारों, सरकारी कार्यालयों और ऐसे अन्य स्थानों जहां आम जन का आवागमन ज्यादा रहता है, वहां की सड़कों को प्राथमिकता दी जाए। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
3: उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने आज लखनऊ में स्वास्थ्य विभाग की ओर से सेवा संकल्प अभियान के तहत होने वाली गतिविधियों की समीक्षा की। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान में सेवा, स्वास्थ्य और जन कल्याण को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया है। इस विशेष अभियान के अंतर्गत 17 सितंबर को स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदेश भर में रक्तदान शिविर आयोजित किए जाएंगे। वहीं 25 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाएंगे, जिनमें आमजन को विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया जाएगा।
5: जो सेवा संकल्प अभियान है, इसको हम सब धरातल पर उतारेंगे। केंद्र और प्रदेश की स्वास्थ्य विभाग की जो उपलब्धियां हैं, उनको हम जन जन तक पहुंचाएंगे। और इसके अलावा सबसे बड़ा एक मुहिम हम चलाएंगे कि प्रदेश में हेल्थ कैंप्स के माध्यम से यदि कोई भी व्यक्ति उपचार लेना चाहता है तो वो आए, वहाँ पर सभी प्रकार की जांचें होंगी, सभी प्रकार की चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं। यदि किसी को अन्य टर्शरी केयर की आवश्यकता है या कोई बड़ा ऑपरेशन है तो हमारे हेल्थ कैंप में जांच करा करके वो बड़े अस्पताल में उनको रिफर करके हम चिकित्सा सुविधा सभी प्रकार की उपलब्ध कराएंगे।
3: भारत ने ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV टीकाकरण के 80 लाख टीकों का महत्वपूर्ण आंकड़ा पार कर लिया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक उत्तर प्रदेश समेत गुजरात, मध्य प्रदेश और मिजोरम ने अपने निर्धारित लक्ष्यों का 100% कवरेज हासिल कर लिया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 22 लाख किशोरियों को टीका लगाया जा चुका है। इस अभियान का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2026 में किया था। अभियान के तहत 14 वर्ष की लड़कियों को माता पिता की सहमति से सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में स्वैच्छिक और निःशुल्क एकल खुराक HPV टीकाकरण प्रदान किया जाता है। प्रदेश भर में कल राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसका उद्देश्य आम लोगों को लंबित मामलों का निस्तारण करना है। लोक अदालत में सुलह समझौते के माध्यम से मामलों का समाधान किया जाएगा। इसके तहत मोटर वाहन, पारिवारिक, राजस्व समेत विभिन्न प्रकार के मामलों का निस्तारण किया जा सकेगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के सचिव और सिविल जज कुंवर मित्रेश सिंह कुशवाहा ने राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में लोगों से शामिल होने की अपील की है।
6: राष्ट्रीय लोक अदालत जो 12 सितंबर को आयोजित की जा रही है, मेरा आम जन से अपील है कि वे अधिक से अधिक संख्या में अपने मामलों का निस्तारण कराएं, जिसमें वाहन से चलानों के संबंध में ज्यादा आम जन को असुविधाएं होती हैं, उस पर फोकस करते हुए वाहनों के चलानों को निस्तारित कराएं, छोटे सम्मी मामलों को, पारिवारिक मैटर्स को, सम मामलों को, मोटर एक्सीडेंट के मामलों को, आप अधिक से अधिक मामलों में इसको निस्तारित कराना सुनिश्चित करने।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के क्रम में आज वाराणसी में EVM की फर्स्ट लेवल चेकिंग को लेकर कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में भारत निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त मनीष गर्ग के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिड़वा भी उपस्थित रहे। इस कार्यशाला में पूर्वी उत्तर प्रदेश के 21 जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी और FLC सुपरवाइजर शामिल हुए। कार्यशाला में अधिकारियों को EVM की जाँच से लेकर मॉक पोल और FLC की पूरी प्रक्रिया का प्रशिक्षण दिया गया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिड़वा ने बताया कि EVM की फर्स्ट लेवल चेकिंग आगामी चुनाव की तैयारियों का पहला महत्वपूर्ण चरण है।
7: यहाँ से जाने के बाद ये अधिकारी फर्स्ट लेवल चेकिंग कराएंगे FLC, और फर्स्ट लेवल चेकिंग का अर्थ है कि ये जो मशीनें हैं इनको हम इलेक्शन में इनका प्रयोग करने से पहले एक एक मशीन को, एक एक यूनिट को, चाहे वो कंट्रोल यूनिट हो, बैलेट यूनिट हो, VVPAT, उसको चेक करके सुनिश्चित करते हैं कि वो वर्किंग कंडीशन में है, किसी प्रकार की कोई उसमें कमी नहीं है। और इसमें राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को जिला निर्वाचन अधिकारी लिखित में सूचना देकर आमंत्रित करते हैं ताकि वो स्वयं उपस्थित रह सकें।
3: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल लखनऊ में नेशनल बुक ट्रस्ट की ओर से आयोजित होने वाले गोमती पुस्तक महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। आज लखनऊ में एक संवाददाता सम्मेलन में राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के निदेशक युवराज मलिक ने बताया कि ये मेला लखनऊ विश्वविद्यालय में 20 सितंबर तक चलेगा। उन्होंने बताया कि पुस्तक मेले में 250 से अधिक स्टॉल लगाए जाएंगे, जिनमें 120 से अधिक प्रकाशक अपनी किताबों को प्रदर्शित करेंगे।
8: पूरा इवेंट टिकट फ्री है, सो कोई भी व्यक्ति आकर किसी भी कार्यक्रम और किसी भी गतिविधि में पार्टिसिपेट कर सकता है। 250 से ज्यादा

0: पब्लिशर्स, यहाँ बुक स्टॉल्स लगे हुए हैं। वंदे मातरम का 150 वर्ष को लेकर एक यहाँ स्पेशल प्रदर्शनी भी लगाई गई है। इन सब के अलावा आप देखेंगे तो हर रोज बच्चों के कॉम्पिटिशन्स हैं, हर रोज कल्चरल एक्टिविटीज हैं, बहुत सारे राइटर्स, स्कॉलर्स, मोटिवेशनल स्पीकर से मिलने का, रूबरू होने का अलग मौका है। तो अपने आप में एक ये कम्प्लीट पैकेज है जिसमें आप इसका आकर लाभ ले सकते।
1: चित्रकूट में भदई अमावस्या पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। देश के विभिन्न हिस्सों से आए श्रद्धालु पवित्र मंदाकिनी नदी में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और कामतगिरी की परिक्रमा कर रहे हैं। रामघाट समेत प्रमुख तीर्थ स्थलों पर बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुगम दर्शन के लिए प्रशासन की ओर से व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। भारी बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण राज्य के 25 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को बचाव और राहत कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं। जिला प्रशासन बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखते हुए बचाव अभियान, भोजन वितरण, राहत शिविर, चिकित्सा सेवाओं और आवश्यक राहत सामग्री की व्यवस्था कर रहा है। बाढ़ के दौरान बीमारियों के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग को भी पूरी तरह सक्रिय रखा गया है। उधर फरुखाबाद में नरौना बांध से पानी छोड़े जाने से गंगा और रामगंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मौसम विभाग ने आगामी 5 दिनों में राज्य के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान जताया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बारिश और बाढ़ से खराब हुई सड़कों की तत्काल मरम्मत के दिए निर्देश। का आगामी त्योहारों से पहले पूरा किया जाए नवीनीकरण का काम। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सेवा संकल्प अभियान को लेकर स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों को परखा। कहा, सेवा और जन कल्याण के संकल्प के साथ लगाए जाएंगे विशेष स्वास्थ्य शिविर। भारत ने HPV टीकाकरण अभियान में 80 लाख टीकों का आंकड़ा किया पार। उत्तर प्रदेश ने हासिल किया वैक्सीनेशन का निर्धारित लक्ष्य। प्रदेश भर में कल किया जाएगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। सुलह समझौते के माध्यम से होगा लंबित मामलों का निस्तारण। और प्रदेश के कई जिलों में बारिश का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने आगामी 5 दिनों में राज्य के पूर्वी और पश्चिमी जनपदों में जताया वर्षा का अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: महात्मा गांधी के अनुसार युद्ध भूमि से भागने से अच्छा है हम लड़खड़ाएं, गिर जाएं, लेकिन फिर से शक्ति बटोर कर खड़े हो जाएं।
3: FM 102.7 पर ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। शाम के 7:31 हो रहे हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सबरस।

यस बॉस कार्यक्रम का पहला गीत इस फिल्म से उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में। शब्द रचना जावेद अख्तर के हैं और संगीत यह जतिन पंडित ने।

कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म चाहत से अनुराधा पौडवाल की आवाज में। जमीर काजमी के बोल हैं और संगीत है श्याम सुरेंद्र का।

0: मुस्कान। इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण को। इस गीत को लिखा था समीर ने और संगीत दिया था निखिल ने।
1: नमस्कार, यदि आप रेडियो प्रस्तुति और एंकरिंग में रुचि रखते हैं और अपनी आवाज के माध्यम से श्रोताओं के बीच अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, तो आकाशवाणी ओबरा आपको दे रहा है एक सुनहरा मौका।
0: आकाशवाणी ओबरा द्वारा युववाणी कार्यक्रम के लिए असाइनमेंट अर्थात समनुदेशती आधार पर कंपेयर एवं अंतरवार्ताकार का पैनल तैयार किया जा रहा है। इसके लिए ओबरा परिक्षेत्र में निवास करने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।
1: अभ्यर्थियों का चयन स्वर परीक्षा यानी ऑडिशन और स्क्रीनिंग समिति के संस्तुति के आधार पर किया जाएगा और सफल अभ्यर्थियों का नाम पैनल में शामिल किया जाएगा।
0: ध्यान रहे, यह स्थायी और नियमित रोजगार नहीं है। आकाशवाणी ओबरा अपनी कार्यक्रमगत आवश्यकता के अनुसार ही पैनल में शामिल अभ्यर्थियों को समय समय पर कार्य हेतु आमंत्रित करेगा। प्रत्येक असाइनमेंट के लिए प्रसार भारती के नियमानुसार मानदेय देय होगा।
1: आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी की आयु 28 अगस्त 2026 को 18 वर्ष से कम और 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय अथवा महाविद्यालय से इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
0: आवेदन शुल्क ₹118 निर्धारित है। शुल्क ऑनलाइन अथवा नेट बैंकिंग के माध्यम से PBBC ऑफ इंडिया प्रसार भारती आकाशवाणी वाराणसी के खाते में देय होगा।
1: आवेदन पत्र के साथ शुल्क जमा करने की रसीद संलग्न करना भी अनिवार्य होगा।
0: इच्छुक अभ्यर्थी सोमवार से शुक्रवार प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक किसी

0: कार्य दिवस में आकाशवाणी ओबरा कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं और पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन 28 सितंबर 2026 शाम 5 बजे तक कार्यालय में जमा कर सकते हैं।
1: और यदि आप व्यक्तिगत रूप से आवेदन जमा करने में असमर्थ हैं, तो आवेदन पत्र डाक द्वारा भी भेज सकते हैं। पता इस प्रकार लिखें: स्वर परीक्षा युववाणी, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी ओबरा, जिला सोनभद्र, पिन कोड नंबर है 231219।
0: तो जुड़िए आकाशवाणी ओबरा से,
1: दीजिए अपनी आवाज को नई पहचान। गाइए, गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात।
2: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
3: हेलो,
1: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
2: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
1: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
2: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
1: ओनली ऑन AIR ओबरा।

कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनाते हैं केके की आवाज में ये गीत। फिल्म का नाम है जन्नत। सईद कादरी के बोल हैं और संगीत दिया है प्रीतम ने।

जन्नत इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे केके को। सईद कादरी के बोल थे और संगीत दिया था प्रीतम ने। आकाशवाणी ओबरा से इस वक्त आप सुन रहे कार्यक्रम सबरस।

कुछ कुछ होता है। इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे उदित नारायण, अलका याग्निक और कविता कृष्णमूर्ति को। समीर के बोल थे और संगीत दिया था जतिन ललित ने। और इसी गीत के साथ कार्यक्रम सबरस अब समाप्त होता है।

FM 102.7 पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बज रहे हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं चंदन दास को, शब्द रचना अजीम मलिक की है।

0: गाइए गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात।
1: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
2: हेलो,
0: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
1: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
0: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
1: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
0: ओनली ऑन AIR ओबरा।

हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.7 पर। रात्रि के 8:15 हो रहे हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, आइए इस फिल्म में सुनते हैं आशा भोसले और अभिजीत को। शब्द रचना आनंद बख्शी के हैं और संगीत है जतिन ललित का।

दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे अभिजीत और आशा भोसले को। इस गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत दिया था जतिन ललित ने। कार्यक्रम का अगला गीत आइए आपको सुनवाते हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में। फिल्म का नाम है क्या कहना। मजरू सुल्तानपुरी के लिखे इस गीत को संगीत दिया है राजेश रोशन ने।

कार्यक्रम का अगला गीत जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उसे लिखा है जावेद अख्तर ने और संगीत दिया है जतिन ललित ने। चलते चलते आइए इस फिल्म में सुनते हैं अभिजीत और अलका याग्निक को।

चलते चलते इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे अभिजीत और अलका याग्निक को। इस गीत को लिखा था जावेद अख्तर ने और संगीत दिया था जतिन ललित ने। और इसी के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत अब समाप्त होता है।

हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.7 पर। रात्रि के 8:30 हो रहे हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत।

FM 102.7 पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ओबरा का प्रसारण। कार्यक्रम है सुगम संगीत और रात्रि के 8:34 हो रहे हैं। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति आइए सुनवाते हैं आपको सोनू निगम की आवाज में। शब्द रचना नुसरत बद्र के हैं।

शब्द रचना नुसरत बद्र के थे और आप सुन रहे थे सोनू निगम को। कार्यक्रम में ये एक बार फिर से नुसरत बद्र की इस रचना को आपको सुनवाते हैं। आवाज है अभिजीत की।

0: शब्द रचना नुसरत बद्र के थे और अभी आप सुन रहे थे अभिजीत को, और इसी के साथ कार्यक्रम सुगम संगीत अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.7 पर। अब से कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा के साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों की प्रगति पर चर्चा हुई। श्री मोदी ने फिर कहा, संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता। प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति और संयुक्त राष्ट्र महासचिव के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा, ब्रिक्स की आर्थिक शक्ति बाकी दुनिया की तुलना में लगभग दोगुनी गति से बढ़ी है। ईरान समर्थित हाउसी विद्रोहियों ने लाल सागर के निकट बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य में स्थित यमन के महत्वपूर्ण मयून द्वीप पर कब्जा किया। और चीन में भारतीय जूनियर पुरुष टीम ने मलेशिया को हराकर एशिया कप हॉकी के फाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज शाम नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष और कौशल सहित कई क्षेत्रों में सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र में जारी संघर्ष सहित आपसी हित के प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। श्री मोदी ने फिर कहा कि संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता है और भारत शांति प्रयासों में सहयोग करने के लिए तत्पर है। दोनों नेताओं ने रूस की अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक प्रदर्शनी इनोप्रोम इंडिया का स्वागत किया। भारत में पहली बार आयोजित ये प्रदर्शनी व्यापार तथा औद्योगिक संबंधों को और अधिक बढ़ाने में इसके महत्व को दर्शाती है। दोनों नेताओं ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और प्रतिभागियों से बातचीत की। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को 24वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रूस आने का निमंत्रण दिया। श्री मोदी ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से कहा है कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। श्री मोदी ने नई दिल्ली में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजिशकियन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में हुए हाल के घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। बैठक के दौरान श्री मोदी ने क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने, आवाजाही और व्यापार की स्वतंत्रता की रक्षा करने और नाविकों की सुरक्षा और कल्याण के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स देश वैश्विक नवाचार और समाधान के महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में उभर रहे हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में उन्होंने ये बात कही।
2: आज ब्रिक्स के देश विश्व की 50% पॉपुलेशन

0: 40% जीडीपी और 25% से अधिक ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। इतना ही नहीं, इन वर्षों में जहां ग्लोबल जीडीपी करीब 2.5 गुना हुई है, वहीं ब्रिक्स देशों की कंबाइंड जीडीपी करीब 4.5 गुना हुई है। यानी ब्रिक्स की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ दुनिया की तुलना में करीब 2 गुनी रफ्तार से बढ़ी है। ब्रिक्स देश ग्लोबल इनोवेशन और सॉल्यूशंस के लिए महत्वपूर्ण सेंटर्स भी बन रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत आज विकास और स्थिरता के लिए भरोसे का पर्याय है।
0: हम रोड्स, रेलवे, पोर्ट और एयरपोर्ट्स का तेजी से विस्तार कर रहे हैं। साथ ही शिप बिल्डिंग, सेमीकंडक्टर, क्वांटम, क्रिटिकल मिनरल्स और बायोटेक जैसे स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों में नई क्षमताएं तैयार कर रहे हैं। इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विथ इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड, 2 लाख के अधिक स्टार्टअप और 120 से अधिक यूनिकॉर्न्स के साथ भारत आज ग्लोबल सॉल्यूशंस का हब बन रहा है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत आवाजाही की स्वतंत्रता और नाविकों की सुरक्षा का दृढ़ समर्थक है।
0: ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेंथ सिक्योर हो, सप्लाई रूट्स ओपन हो और सी फेरर्स सेफ हो, और इसलिए भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी फेरर्स की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है।
1: इस सत्र को ब्रिक्स सदस्य देशों के कई राष्ट्राध्यक्षों ने भी संबोधित किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का 40% से अधिक हिस्सा ब्रिक्स देशों से आ रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: एवरी ग्रेट जर्नी बिगिंस विद पीपल कमिंग टुगेदर टू लिसन, टू लर्न, टू इमेजिन व्हाट्स पॉसिबल। This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ कल नई दिल्ली के भारत मंडप में होगा। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन और अबू धाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान सहित कई ब्रिक्स नेताओं की मेजबानी करेंगे। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि सम्मेलन में विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक और सार्थक चर्चा होगी और इसका उद्देश्य विश्व कल्याण होगा। भारत की अध्यक्षता में सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। सम्मेलन का शुभारंभ ब्रिक्स सदस्य देशों के लिए वैश्विक संस्थाओं को अधिक समावेशी बनाना और बहुपक्षवाद को मजबूत करने के विषय पर एक सत्र के साथ होगा। सदस्य देशों के नेता भारत मंडपम में भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का अवलोकन भी करेंगे। वे संयुक्त वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रात्रि भोज का आयोजन करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के दौरान कई ब्रिक्स नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता ऐसे समय में हो रही है जब दुनिया में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, आर्थिक चुनौतियां, तकनीकी बदलाव और भू राजनीतिक अनिश्चितता का सामना कर रही है। जलवायु परिवर्तन और संसाधनों पर बढ़ता दबाव स्थिति को और जटिल बना रहे हैं। इन आपस में जुड़े हुए वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए ऐसी सहभागिता आवश्यक है जो समावेशी, व्यवहारिक और विभिन्न राष्ट्रीय परिस्थितियों के प्रति संवेदनशील हो। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का प्रयास सदस्य देशों के बीच सहमति कायम करना और साथ ही मौजूदा व्यवस्थाओं की प्रभावशीलता को मजबूत करना है। भारत का लक्ष्य ब्रिक्स को एक अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए एक रचनात्मक शक्ति के रूप

0: में सुदृढ़ करना है। सुपर्णा के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
1: भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का शुभारंभ आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ। इसका उद्देश्य ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के साथ भारत के अत्याधुनिक तकनीकी नवाचारों को प्रदर्शित करना है। दो दिन की प्रदर्शनी में भारत के 37 डीप टेक स्टार्टअप और उद्यम शामिल हैं। इस बीच दिल्ली पुलिस ने बताया है कि ब्रिक्स सम्मेलन के कारण कल रात 8 बजे से लेकर 11 बजे तक दिल्ली के मुख्य रास्तों पर यातायात परिवर्तित और नियंत्रित किया गया है। वहीं दिल्ली मेट्रो सम्मेलन के कारण रविवार को सभी लाइनों पर सेवाएं सुबह 6 बजे से शुरू करेगी। अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे। भाजपा ने ब्रिक्स से भारत को होने वाले लाभ पर सवाल उठाने के लिए कांग्रेस नेताओं की आलोचना की है। नई दिल्ली में आज पार्टी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत ब्रिक्स में एक मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है।
2: आज आईएमएफ ने अपनी रिपोर्ट में 7.8% ग्रोथ रेट को सही पाया है। आईएमएफ ने भारत की इकोनॉमी के रेजिलियंस की तारीफ की है। तो कांग्रेस के नेताओं को यह बताना जरूरी है कि जो आप सरकार में थे तो ब्रिक्स के मामले में भारत की आपने क्या स्थिति बना दी थी।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत को मानवीय जिम्मेदारी, सुरक्षा और जन विश्वास से समझौता किए बिना व्यापक स्तर पर तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देना चाहिए। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की युवा पीढ़ी अवसरों का इंतजार नहीं कर रही है, बल्कि नए प्लेटफॉर्म, उद्यम और समाधान तैयार कर रही है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आज बूथ स्तरीय अधिकारियों को मतदाताओं के लिए निर्वाचन आयोग का जीवंत प्रतिबिंब बताया। गुजरात के अहमदाबाद में उन्होंने कहा कि भारत की चुनावी प्रक्रिया, संविधान, चुनावी कानूनों और आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार ही संचालित होती है। भाजपा की पंजाब इकाई भाजपा दा नारा नशा मुकाना सारा के नारे के साथ राज्य में नशा मुक्त पंजाब यात्राओं की शुरुआत करेगी। चार चरणों में होने वाली ये 13 दिन की यात्रा नशे के खिलाफ अभियान को जन आंदोलन का रूप देने का प्रयास करेगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 18 सितंबर को पठानकोट जिले के माधोपुर से पहली यात्रा को रवाना करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: ये आकाशवाणी है। ईरान समर्थित हौसी विद्रोहियों ने लाल सागर के निकट बाब अल मंदेब जलबरू मध्यम में स्थित यमन के महत्वपूर्ण मयून द्वीप पर कब्जा कर लिया है। इससे सऊदी अरब का तेल निर्यात प्रभावित हो सकता है। सऊदी अरब ने जवाबी कार्रवाई करते हुए हौसी के कब्जे वाले प्रमुख बंदरगाह शहर मोखा के हवाई अड्डे पर हवाई हमले किए। उधर ईरान सरकार ने सऊदी अरब और हौसी विद्रोहियों के बीच बातचीत फिर से शुरू करने का आह्वान किया है। यूरोपीय आयोग ने आज भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते एफटीए पर हस्ताक्षर और इसे लागू करने के लिए यूरोपीय परिषद के समक्ष औपचारिक प्रस्ताव पेश किया। इस समझौते को अब तक का सबसे बड़ा व्यापार समझौता बताया जा रहा है। यूरोपीय परिषद की मंजूरी मिलने पर यह भारत और यूरोपीय संघ दोनों के लिए अब तक का सबसे बड़ा व्यापार समझौता होगा। प्रख्यात तमिल वक्ता सोलोमन पापैया का आज तमिलनाडु के मदुरई में निधन हो गया। वे 90 वर्ष के थे। श्री पापैया अपनी हास्यपूर्ण शैली और विशिष्ट मदुरई तमिल के लिए प्रसिद्ध थे। उन्हें 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। भारत ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। चीन में पहले सेमीफाइनल में भारत ने मलेशिया को 3-1 से हराया। कप्तान अनमोल एक्का ने 2 और सुखविंदर ने 1 गोल किया। खिताबी मुकाबले में भारत का सामना दक्षिण कोरिया से होगा। भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम कल सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया से खेलेगी। मौसम विभाग ने कल तटीय आंध्र प्रदेश में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भी तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली में कल कई स्थानों पर बिजली चमकने के साथ

हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.7 पर। रात्रि के 9:15 हो रहे हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।

0: उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अनुमन्य सुविधाओं हेतु कृषि विभाग से संपर्क करें। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: कार्यक्रम का अगला गीत आइए आपको सुनाते हैं एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज में। फिल्म का नाम है गर्दिश। जावेद अख्तर के बोल हैं और संगीत दिया है आरडी बर्मन ने।

गर्दिश इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे एसपी बाला सुब्रमण्यम को, जावेद अख्तर के बोल थे और संगीत था आरडी बर्मन का। कार्यक्रम का अगला गीत आइए आपको सुनवाते हैं अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज की आवाज में। फिल्म का नाम है अपमान की आग। शब्द रचना अनवर सागर के हैं और संगीत है नदीम श्रवण का।

अपमान की आग इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज को, और इस गीत को लिखा था अनवर सागर ने और संगीत था नदीम श्रवण का। और इसी गीत के साथ कार्यक्रम भूले बिसरे गीत अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.7 पर। अब से कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे करंट अफेयर्स।

हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.7 पर और रात्रि के 10 बज रहे हैं। श्रोताओं, संगीत की दुनिया में कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जिसमें न मुलाकात की जरूरत होती है और न पहचान की, बस एक पसंदीदा गीत और बीच की दूरी बस मिट जाती है। और इसी भावना के साथ हम हाजिर हैं आपके ईमेल आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम म्यूजिक गैलरी में, और मैं हूं कार्यक्रम में आपके साथ रानी राजश्री। अगले एक घंटे तक आपकी ईमेल से मिली फरमाइशी गीतों के साथ हम साथ होंगे, और आप भी अगर अपने पसंद के गीत इस कार्यक्रम में शामिल करना चाहते हैं और अपने विचारों को हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, या फिर किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं अपने पसंदीदा गीतों को, तो अपना पूरा नाम, पता और अपने पसंद के गीत के बारे में बताते हुए हमें मेल करें इस आईडी पर akashvaniobra@gmail.com, यानी कि akashvaniobra@gmail.com। तो आइए अब शुरू करते हैं गीतों के इस खूबसूरत कारवां को, सुनते हैं फरमाइशी गीतों का ये कार्यक्रम। और कार्यक्रम में जो पहली फरमाइश हम शामिल करने जा रहे हैं वो आया है टोरोवाल नवाशहर पंजाब से, हमें मेल किया है गगनदीप थांदी जी ने, और इनके साथ साथ इस गीत को सुनना चाहते हैं तृप्ता कुमारी थांदी, डॉक्टर प्रियंका थांदी, डॉक्टर प्रशांत थांदी, डॉक्टर प्रियम थांदी, बेबी वामिका और वाणी थांदी। और आप सभी के लिए आपके रेडियो सेट पर फिल्म नदिया के पार का ये गीत जसपाल सिंह और हेमलता की आवाज में।

कार्यक्रम में अगले गीत के लिए जो फरमाइश आई है ईमेल के माध्यम से, वो हमें भेजा है बक्सर बिहार से सरफुद्दीन अंसारी ने, और इनके साथ साथ सुनना चाहते हैं फातिमा खातून अंसारी और सुमित रमेश साहू, डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा और दानिश अंसारी, गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयानंद आर्य और परमानंद आर्य, और सारिमपुर बक्सर से राज एस डी अंसारी, आसमा खातून अंसारी और इकबाल मस्तान। और साथ ही साथ सुनना चाहते हैं जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी ऋतिक और बलवीर सिंह। और साथ ही साथ सुनना चाहते हैं जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून। तो आप सभी को हम सुनवाते हैं फिल्म जुनून से अनुराधा पौडवाल और विपिन सचदेवा की आवाज में ये गीत।

आकाशवाणी ओबरा से इस वक्त आप सुन रहे हैं ईमेल पर आधारित फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम म्यूजिक गैलरी। और कार्यक्रम में अब जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, इसके लिए मेल किया है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, ठाकुर कैथल और डॉक्टर अमनदीप ने। और साथ ही कालका से शुभ चंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। और आप सभी की पसंद पर आपको सुनाते हैं घर फिल्म का ये गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने।

श्रोताओं, सुरों का यह खूबसूरत सफर जारी है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम म्यूजिक गैलरी केवल आकाशवाणी ओबरा FM 102.7 पर। आपकी ईमेल से सजी यह संगीत महफिल आपका ही इंतजार कर रही है, तो अपनी फरमाइश भेजना न भूलिए इस आईडी पर akashvaniobra@gmail.com यानी कि akashvaniobra@gmail.com पर। आप हमारे साथ अपने विचारों को साझा कर सकते हैं, अपने पसंदीदा गीतों को सुन सकते हैं और साथ ही साथ अपने विचारों, अपने गीतों को किसी को डेडिकेट भी कर सकते हैं। तो हमें इस ईमेल आईडी पर मेल करें और इस कार्यक्रम को आप सुन सकते हैं सोमवार और शुक्रवार को रात्रि 10 बजे से। कार्यक्रम में अगले गीत की जो फरमाइश आई है, जिसके लिए हमें मेल किया है कीर्तनपुरी गोस्वामी ने नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से, और इनके साथ इस गीत को सुनना चाहा है लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी। और इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है, माई रेडियो माई लाइफ। वाकई जो लोग रेडियो से जुड़े रहते हैं वो एक जीवन का अहम हिस्सा भी बन जाता है। तो आपने सुनना चाहा है एक फूल दो माली इस फिल्म का गीत, जिसे गाया है आशा भोसले ने। तो चलिए आपकी पसंद का ये गीत हम आपको सुनवाते हैं।

और अब जो कार्यक्रम में हम ईमेल शामिल करने जा रहे हैं वो आया है दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से, और हमें मेल किया है हीरामणि वर्मा जी ने, और इनके साथ इस गीत को सुनना चाहते हैं पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा। तो आप सभी की पसंद पर फिल्म बॉर्डर का ये गीत।

0: गाइए गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात।
1: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
2: हेलो,
0: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
1: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
0: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
1: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
0: ओनली ऑन AIR ओबरा।

कार्यक्रम के इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं और शामिल करते हैं फिल्म फना के इस गीत को, जिसे सुनना चाहा है मोहम्मद यासीन अंजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफ्रा नवाज और बेबी चाहत। तो चलिए आप सभी को आपके पसंद का ये गीत हम सुनवाते हैं।

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन भीग जाएगा।

अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।

श्रोताओं, सुरों का यह खूबसूरत सफर जारी है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम म्यूजिक गैलरी केवल आकाशवाणी ओबरा FM 102.7 पर। आपकी ईमेल से सजी यह संगीत महफिल आपका ही इंतजार कर रही है, तो अपनी फरमाइश भेजना न भूलिए इस आईडी पर akashvaniobra@gmail.com यानी कि akashvaniobra@gmail.com पर। आप हमारे साथ अपने विचारों को साझा कर सकते हैं, अपने पसंदीदा गीतों को सुन सकते हैं और साथ ही साथ अपने विचारों, अपने गीतों को किसी को डेडिकेट भी कर सकते हैं। तो हमें इस ईमेल आईडी पर मेल करें और इस कार्यक्रम को आप सुन सकते हैं सोमवार और शुक्रवार को रात्रि 10 बजे से। कार्यक्रम में अगली जो फरमाइश के लिए हमें जो ईमेल आया है वो हमें भेजा है दिनेश वर्मा ने रिंगनी छत्तीसगढ़ से, और इनके साथ इस गीत को सुनना चाहा है करुणा वर्मा ने। तो चलिए आपकी पसंद पर मुकेश की आवाज में फिल्म कभी कभी का ये गीत आपके रेडियो सेट पर।

श्रोताओं, सुरों का यह खूबसूरत सफर जारी है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम म्यूजिक गैलरी केवल आकाशवाणी ओबरा FM 102.7 पर। आपकी ईमेल से सजी यह संगीत महफिल आपका ही इंतजार कर रही है, तो अपनी फरमाइश भेजना न भूलिए इस आईडी पर, akashvaniobra@gmail.com यानी कि 1

aashvanobra@gmail.com पर। आप हमारे साथ अपने विचारों को साझा कर सकते हैं, अपने पसंदीदा गीतों को सुन सकते हैं और साथ ही साथ अपने विचारों, अपने गीतों को किसी को डेडिकेट भी कर सकते हैं। तो हमें इस ईमेल आईडी पर मेल करें और इस कार्यक्रम को आप सुन सकते हैं सोमवार और शुक्रवार को रात्रि 10 बजे से। कार्यक्रम में अब जो अगला ईमेल हम शामिल करने जा रहे हैं वो आया है शोभापुर मेरठ कैंट से और हमें मेल किया है दिग्दर्शन गौर और कविता गौर जी ने और साथ ही साथ इस गीत को सुनना चाहते हैं इनके मित्रगण दिव्यांशु यादव, संजय ढींगिया, अनिल जैन, राधा नामदेव और दर्शन भाई। तो चलिए आपको सुनवाते हैं फिल्म संगम का ये गीत मुकेश की आवाज में।

आकाशवाणी ओपरा से इस वक्त आप सुन रहे हैं ईमेल आधारित फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम म्यूजिक गैलरी, और कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो साथी रानी राजश्री। कार्यक्रम का अगला ईमेल जो हम शामिल करने जा रहे हैं वो आया है ओबरा सुमन नगर से, जिसे भेजा है रंजना वर्मा ने, और इसी गीत के लिए फरमाइश आई है चौपन रोड ओबरा से, जिसे हमें लिखा है रवि, सुमन, तृप्ति और अभिषेक और साथी शिवन्या ने। तो चलिए आप सभी को हम सुनवाते हैं ये गीत।

ईमेल के माध्यम से जो अगली फरमाइश आई है वो आई है तिलगुड़वा सोनभद्र से। हमें मेल भेजा है हर्षदीप सिंह ने और उनके साथ साथ इस गीत को सुनना चाहा है ऋचा, सृजा, सृजन, मोना, सोनी और अंकित। तो आप सभी की फरमाइश पर फिल्म साजन का ये गीत एसपी बाला सुब्रमण्यम और अलका याग्निक की आवाजों में।

0: श्रोताओं, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपके मन पसंद गीतों ने आपके दिल को छुआ होगा और आपकी भावनाओं को नई अभिव्यक्ति दी होगी। यदि आप भी अपने प्रियजनों के लिए कोई पसंदीदा गीत डेडिकेट करना चाहते हो या फिर अपनी यादों से जुड़ा कोई गीत हमारे साथ साझा करना चाहते हो तो हमें मेल करें। हमारा ईमेल आईडी है akashvanioba@gmail.com। आपका हर ईमेल हमारे लिए अनमोल है और आपकी फरमाइश हमारे इस संगीत सफर को और भी आत्मीय बनाती है। अपनी फरमाइश हमें इस ईमेल पते पर भेजिए। हो सकता है अगली बार आपके नाम और आपकी पसंद का गीत इस मंच के माध्यम से आप सुन सकते हैं। तब तक के लिए अनुमति दीजिए अपनी रेडियो साथी रानी राजश्री को। नमस्कार। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे ईमेल के माध्यम से आपकी फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम म्यूजिक गैलरी। FM 102.7 पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही पलों में यानी कि रात्रि के 11 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे हिंदी समाचार।
1: श्रोताओं, आइए अब से कुछ ही पलों में सुनते हैं समाचार, पहले हिंदी और फिर अंग्रेजी में।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विनय सक्सेना।

0: व्यापार तथा औद्योगिक संबंधों को और अधिक बढ़ाने में इसके महत्व को दर्शाती है। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को 24वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रूस आने का निमंत्रण दिया। श्री मोदी ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में हुए हाल के घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देश वैश्विक नवाचार और समाधान के महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में उभर रहे हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में उन्होंने ये बात कही।
1: आज ब्रिक्स के देश विश्व की 50% पॉपुलेशन, 40% जीडीपी और 25% से अधिक ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। इतना ही नहीं, इन वर्षों में जहां ग्लोबल जीडीपी करीब 2.5 गुना हुई है, वहीं ब्रिक्स देशों की कंबाइंड जीडीपी करीब 4.5 गुना हुई है। यानी ब्रिक्स की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ दुनिया की तुलना में करीब 2 गुनी रफ्तार से बढ़ी है। ब्रिक्स देश ग्लोबल इनोवेशन और सॉल्यूशंस के लिए महत्वपूर्ण सेंटर्स भी बन रहे हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत आवाजाही की स्वतंत्रता और नाविकों की सुरक्षा का समर्थक है।
1: ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेंथ सिक्योर हो, सप्लाई रूट्स ओपन हो और सी फेरर्स सेफ हो, और इसलिए भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी फेरर्स की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है।
0: इस सत्र को ब्रिक्स सदस्य देशों के कई राष्ट्राध्यक्षों ने भी संबोधित किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का 40% से अधिक हिस्सा ब्रिक्स देशों से आ रहा है। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन और अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान सहित कई ब्रिक्स नेताओं की मेजबानी करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत को मानवीय जिम्मेदारी, सुरक्षा और जनविश्वास से समझौता किए बिना व्यापक स्तर पर तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देना चाहिए। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की युवा पीढ़ी अवसरों का इंतजार नहीं कर रही है, बल्कि नए प्लेटफॉर्म, उद्यम और समाधान तैयार कर रही है। भारत ने ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV टीकाकरण के 80 लाख टीकों का महत्वपूर्ण आंकड़ा पार कर लिया है। यह निवारक स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करने और HPV संक्रमण और HPV से जुड़े कैंसर से सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। भारत ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप के फाइनल में जगह बना ली है। चीन में पहले सेमीफाइनल में भारत ने मलेशिया को 3-1 से हराया। मौसम विभाग ने कल तटीय आंध्र प्रदेश में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भी कल तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली में कल कई स्थानों पर बिजली चमकने के साथ बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

एफएम 102.7 पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11:05 हो रहे हैं। संपन्न होती है हमारी आज की सभा। कल प्रातः 5:50 पर अपने कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।